0: regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
1: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
2: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
1: That magic removal ho. Love and relationship issues ho. Get trusted solutions with 100% privacy.
2: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
3: Samasya ka pakka samadhan.
2: Astrologer Ishwar. Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
4: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At ShopCompareInsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
2: Visit ShopCompareInsure.com to get started. Call 469-789-360. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
5: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
6: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
5: कैसे?
6: पेज 3 ईटरी?
5: No, not another restaurant again.
6: Dude, it's page 3. Start with the bar, signature cocktails, classic pours, and the food crafted to suit every craving, every appetite.
5: मतलब great food, great drinks, and great company. यानी कि मैं
7: Page 3 Eatery. Eat, sip, gossip, repeat.
8: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
9: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
8: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
9: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
8: सच में? सब संभालेंगे?
9: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
1: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन partner.
10: Nation ka fun station, Fun Asia Radio.

नेशन के फन स्टेशन फनिशर रेडियो पर दोस्तों आपका ब्रेक के बाद स्वागत है। दोस्तों, यू आर लिसनिंग टू द फनिशिया नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग नॉन स्टॉप बॉलीवुड एंटरटेनमेंट हियर ऑन 104.9 एफएम फन एशिया रेडियो एंड आल्सो ऑन 104.1 एफएम रेडियो कैरावान। मोर वैरायटी है, मोर चॉइसेस है, मोर फन भी है, ओनली अंडर वन नेटवर्क विच इज फनिशियास नेटवर्क। और दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट और आपके इस सुरीले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा। एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ। जुड़े रहते हैं आप भी हमारे साथ हमारी फोन लाइंस के जरिए 9722355555 के जरिए। आज के शो में मैं आपका करवा रही हूं कार्डियो। जी हां, जिन्होंने अभी अभी चुनन किया है वो सवाल करेंगे कि भाई अपूर्वा जी, ये कार्डियो सेशन क्या होता है? तो कार्डियो सेशन ये होता है दोस्तों, एक ही मूवी का स्लो पेस गाना और उसी मूवी का फास्ट पेस गाना। जी हाँ, जब हम स्लो पेस गाना सुनते हैं हमारी दिल की धड़कनें बिल्कुल स्लो एकदम मध्यम मध्यम चलती है, बट जैसे ही हम फास्ट पेस गाना सुनने ये जाते हैं तो हमारी दिल की धड़कनें तेज हो जाती है। तो स्लो फास्ट ऐसा सिलसिला चलता रहेगा, इसी से होता है हमारा कार्डियो। तो एक तीर से दो शिकार, ये जो हमारा सेगमेंट है वो बहुत मजेदार है, बहुत चहिता है और लोगों ने बहुत पसंद भी किया है। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल दैट लव, कीप दैट कमिंग। अगर आपका भी कोई फेवरेट स्लो पेस्ट गाना और फास्ट पेस्ट गाना किसी मूवी का फेवरेट है, गिव मी अ कॉल। 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। विद दैट, लेकर चलती हूँ आपको इस मूवी के फास्ट पेस्ट गाने की तरफ। ब्रेक पे जाने से पहले हमने स्टूडेंट ऑफ द ईयर का स्लो पेस्ट गाना सुना, तो चलिए बारी है फास्ट पेस्ट गाने की।

एंड ऑफ द ईयर से सुन रहे थे दोस्तों आप ये फास्ट बेस्ड गाना, आई एम श्योर आप सभी को पसंद आया होगा। अगले रिक्वेस्टेड गाने की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों, बट इससे पहले आपको बता दूं दैट दिस पार्ट ऑफ आवर शो इज ब्रॉट टू यू बाय एजी फिनटेक्स, व्हिच इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द यूएस। दे ऑफर इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज विद अनटैप्ड पोटेंशियल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसेस। दे आर ट्रस्टेड, एफिशिएंट एंड गेट यू रेडी फॉर द फ्यूचर। यू कैन कॉल देम, द नंबर टू कॉल इज 4699429888, और यू कैन विजिट देयर वेबसाइट व्हिच इज agfintax.com। अगले गाने दोस्तों शिवानी ने रिक्वेस्ट किए हैं, मिशन कश्मीर मूवी से सुनना चाहती है वो एक स्लो पेस्ड गाना और एक फास्ट पेस्ड गाना। एंजॉय दिस ट्रैक्स।

0: क्या कर रहे
1: हैं? नहीं तो मुझे बुलाया था?
0: नहीं नहीं, आपकी तबीयत तो ठीक है, मैंने कब बुलाया आपको?
2: मिशन कश्मीर मूवी से शिवानी के रिक्वेस्ट पर दोस्तों सुन रहे थे आप ये फास्ट पेस्ट और स्लो पेस्ट गाने। चलिए भाई अभी थोड़ी मेरी पसंद का स्लो पेस्ट और फास्ट पेस्ट गाना सुन लेते हैं। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट मूवी। द मूवी इज रॉकी और रानी की प्रेम कहानी। ये रहा स्लो पेस्ट गाना।
3: तू लव करती है ना मेरे से? बस लव है तो सब है।

0: गिला का कुत्तों का होता है,
1: शेरों का जिगरा होता है।
2: तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें तुम्हें

0: How much does your doctor spend time with you? 5 minutes, 10 minutes? At Passion Health Primary Care, every appointment is scheduled for 30 minutes because truly understanding your health takes time. Because at Passion Health, you are not just a patient, you are family. For you, for your family, and for the health of our community, Passion Health Primary Care it is. They are now hiring experienced primary care doctors, endocrinologists, pediatricians.
1: Suno, shaadi ke liye jewelry bhi dekhni hai.
2: Haan, dekh lenge.
1: तो फिर इंडिया की टिकट कब करवाएं?
2: अरे तुम्हें ज्वेलरी देखनी है या रिश्तेदारों को?
3: One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. वही timeless craftsmanship, वही unmatched elegance और वही stunning bridal collections. Now on Main Street in Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
4: बेटा, 95% आए?
5: हाँ मम्मी.
4: Good. अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए.
6: मेरा?
4: हाँ. प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड.
6: वो
7: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज. विजिट agfintechs.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
12: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
13: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
14: Party is on everyone's mind at the moment in Dallas, cause the hottest destination to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and

0: to party with your tribe is in town. Mirage Lounge, a premium lounge offering hookahs, bites, crafted cocktails and live music and DJ nights. And guess what? A happy hour from 11 a.m. to 5 p.m. Monday to Thursday with hookahs at $15.99 and shots at $4.99 each. Plus, ladies' night and college nights bhi.
1: Visit Mirage Lounge at McKinney Ranch Parkway, cause miracles happen in Mirage.
2: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय करूंगी।
3: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
4: वेट, इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा।

मोर म्यूजिक मोर मस्ती और मोर मैजिक के साथ दोस्तों आपको फिर से एक बार वेलकम करती हूँ। दोस्तों आप सुन रहे हैं मुझे यानी कि आपकी हुसर आपके इस सुरीले सफर की साथी आपकी अपनी अपूर्वा को और ये है आपका अपना शो जिसका नाम है ये शाम मस्तानी। एवरी संडे की शाम 6 से 8 रहता है आपका और मेरा साथ। स्टूडियो के घड़ी में हो चुके हैं 7:35। बस कुछ चंद मिनटों का सफर बचा है दोस्तों आपका और मेरा, सो लेट्स मेक द मोस्ट ऑफ इट। और इस चंद घंटों के नहीं मिनटों के सफर में आपके लिए लेकर आने वाली हूँ अमेजिंग से गिव अवे। सो दोस्तों आपको करना क्या है, मैं यहाँ पर कुछ धुन आपके लिए बजाने वाली हूँ। जी हाँ, धुन पहचान कर आपको गाना सुन पहचाना है, धुन सुनकर गाना पहचाना है। जी हाँ, ऐसा हम सेगमेंट खेलने वाले हैं। बट पहले आपको गिव अवे किस बात का है ये बता देती हूँ। दैट हियर इज योर चांस टू विन एनी डोसा ऑफ योर चॉइस प्लस वन फिल्टर कॉफी। साउंड्स यमी। अगेन, हियर इज योर चांस टू विन एनी डोसा ऑफ योर चॉइस प्लस वन फिल्टर कॉफी एट सैंस इडली वेजिटेरियन रेस्टोरेंट एंड इंडियन फूड। इट इज 100% प्योर वेजिटेरियन विच इज मेड विथ फ्रेश ऑथेंटिक फ्लेवर्स। क्रिस्पी डोसास, फ्लफी इडलीज, कम्फर्टिंग साउथ इंडियन फेवरेट्स और साथ में शहर की बेस्ट फिल्टर कॉफी। फैमिली डिनर्स टू केटरिंग सर्विसेज विद जैन फ्रेंडली ऑप्शन विच इज लोकेटेड एट द हाईवे ऑफ 121 एंड कस्टर जंक्शन। तो दोस्तों आपको करना क्या है, मैं यहाँ पर आपके लिए एक धुन बजवाने वाली हूँ और वो धुन बजने के बाद आपको गाना कौन सा है वो पहचाना है। जल्दी से जल्दी हमारा जो नंबर है वो अपने स्पीड डायल पे रख दीजिए। 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। मैं सैन इडली रेस्टोरेंट की तरफ से दो विनर्स को ये गिव अवे देने वाली हूँ। तो पहली धुन सुनकर जो भी मुझे पहले कॉल करेगा वो एक मेरा विनर बन जाएगा और दूसरी धुन सुनकर जो मुझे दूसरी बार कॉल करेगा वो मेरा दूसरा विनर बन जाएगा फॉर द सैन इडली रेस्टोरेंट गिव अवे के लिए। तो चलिए पहली धुन आप सभी को सुनवा देती हूँ। 9722355555 है स्टूडियो का नंबर और ये रही आपकी पहली धुन। नाइन सेवन टू टू थ्री फाइव फाइव फाइव फाइव फाइव इज द नंबर टू कॉल द स्टूडियो।

ऑलराइट दोस्तों, जो मैंने पहली धुन बजाई थी आप सबके लिए, उसका मुझे विनर मिल गया है। बालाजी ने सबसे पहले कॉल करके बता दिया है कि वो धुन थी चमक छल्लो गाने की। अभी बारी है दूसरी धुन सुनने की, और ये दूसरी धुन के लिए भी गिव अवे सेम है। सैन इडली रेस्टोरेंट की तरफ से आपको 1 डोसा ऑफ योर चॉइस प्लस 1 फिल्टर कॉफी जीतने का मौका है, अगर आपने मेरे इस धुन को सही सही पहचाना और मुझे फट से बताया कि ये कौन सा गाना है और कौन से गाने की धुन है जो यहाँ पर प्ले हो रही है। स्टूडियो का नंबर 9723555555, जो मुझे सही सही जवाब देगा वो सैन इडली रेस्टोरेंट की तरफ से 1 डोसा ऑफ योर चॉइस एंड प्लस 1 फिल्टर कॉफी जीत पाएगा। तो जल्दी से जल्दी ये धुन सुनिए।

ऑलराइट दोस्तों, जब तक हैजां मूवी से सुन रहे थे आप ये बहुत ही अमेजिंग सा गाना। अभी सैनडली रेस्टोरेंट की तरफ से जो जो गिव अवे आपको देने थे वो तो खत्म हो चुके हैं, बट दिल छोटा मत कीजिएगा, मायूस मत हो जाइएगा। आपके लिए और अच्छे से ये गिव अवे लेकर आई हूँ। आपको बता देती हूँ, द डैलस बॉलीवुड फैंस, योर प्ले लिस्ट इज अबाउट टू कम अलाइव। जी हाँ, इसका मतलब क्या है बता देती हूँ आपको, दैट विशाल एंड शेखर द जियो बिहाइंड सम ऑफ बॉलीवुड बिगेस्ट सुपर हिट आर bringing the super hit tour to Dallas on Sunday, July 12th at the Curtis Culver Center Garden. Tickets are on sale and they are now at kashpatilproductions.com. जी हाँ, आप kashpatilproductions.com पे जाकर tickets खरीद सकते हैं। Use Phoenicia code to get a 30% discount. और अभी अगर आपने फिर से मेरी यहाँ पर बजाई गई हुई धुन अगर सही सही पहचानी तो आप जीत सकते हैं विशाल एंड शेखर का एक टिकट। जी हाँ, एक टिकट आपको गिव अवे दे रही हूं मैं अगर आपने मेरी इस धुन को सही सही पहचाना। नंबर जो हमारा है 9722355555, अपने स्पीड डायल पर रख दीजिए और जैसे ही मैं ये धुन बजाती हूं आपको बताना है कि ये गाना कौन सा है। 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। सही जवाब देने वाले को मिल जाएगा विशाल एंड शेखर का कॉन्सर्ट का एक टिकट बिल्कुल फ्री। गौर से धुन सुनिए और मुझे बताइए कि ये कौन सा गाना है।

ऑल राइट दोस्तों, तो ये थी धुन और इसी के साथ मैं बढ़ती हूँ गाने की तरफ। 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। आपको मुझे बताना है कि कौन सा गाना है। ये सही जवाब देने वाले को मिल सकता है विशाल एंड शेखर कॉन्सर्ट का एक टिकट बिल्कुल फ्री।

सुन रहे थे दोस्तों आप ये गाना टेकन फ्रॉम द मूवी रावण। और जी हाँ, और एक टिकट जीतने का मौका आपको मिल सकता है जो कि विशाल एंड शेखर का लाइव कॉन्सर्ट होने वाला है नेक्स्ट संडे, विच इज गोइंग टू बी ऑन 12th of July एट द कर्टिस कलवेल सेंटर गार्लैंड। जी हाँ, आपने अगर मेरे इस नेक्स्ट धुन को पहचाना सही सही और मुझे बताया कि कौन सा गाना है, तो आप जीत सकते हैं विशाल एंड शेखर की कॉन्सर्ट का एक गिव अवे टिकट बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। गौर से ये धुन सुनिए और जल्दी से जल्दी मुझे कॉल कीजिए, स्टूडियो का नंबर 9723555555। और ये रही आपकी वाली धुन। स्टूडियो का नंबर 9723555555। तब तक के लिए आप सुनिए ये वाला गाना।

All right. दोस्तों, इसी के साथ स्टूडियो की कड़ी में हो चुका है 7:55. यही कहूंगी, वक्त हो गया है मेरे जाने का. बहुत बहुत शुक्रिया आज की शाम साथ निभाने का. वेल, दोस्तों, आपके साथ से ये बहुत ही खूबसूरत, सुरीला और सुहाना होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. और ये फन एशिया रेडियो का स्टूडियो मेरी हैप्पी प्लेस है. यहाँ पर आकर मैं जितनी हैप्पी हैप्पी होती हूँ, उतना ही हैप्पी हैप्पी आपको बनाने की मेरी इच्छा आकांक्षा और मनोकामना रहती है. With that, live fully, love passionately and laugh loudly. लेती हूँ आप सबसे विदा इसी थॉट के साथ और करती हूँ नेक्स्ट संडे सेम टाइम सेम शो सेम चैनल ऑन 104.9 FM पर मिलने का वादा. दिस इज योर होस्ट आरजे पूर्वा साइनिंग ऑफ फॉर टुनाइट. हैव अ ग्रेट नाइट अहेड डैलस एंड हैव अ ब्यूटीफुल मंडे मॉर्निंग एंड द रेस्ट ऑफ द वीक अहेड. बाय बाय एंड गुड नाइट.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं। बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर। होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स। कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर टू डेकेड्स। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
3: आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट के बिना अधूरी लगती है, तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस, एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
4: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
5: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
3: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
6: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
3: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
6: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
7: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
8: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
9: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
10: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply. The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
11: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
12: Hi, this is Ranveer Shori and you're listening to me on Fun Asia Radio.

वेलकम एवरीबॉडी, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी संडे। ये वाला संडे ज्यादा स्पेशल है क्योंकि हमें 3 पूरे दिन मिले छुट्टी के। अ वेरी अमेजिंग लॉन्ग वीकेंड। बहुत कातिल गर्मी थी यार, बट आई होप यू गॉट सम टाइम टू एंजॉय विद योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड लव वंस, एंड अ वेरी हैप्पी हैप्पी 4th of July वीकेंड टू एवरीबॉडी। हमारी जन्मभूमि इज भारत ऑफ कोर्स, बट हमारी कर्मभूमि इज अमेरिका, एंड वी शुड इक्वली celebrate this, right? Because we call America as our home. We have our family here. We have our kids here. So, of course, this country is as much special as our motherland. Ladies and gentlemen, welcome back. This is the Sunday Pop Station with RJ Prem. आपको तो नंबर पता ही है हमारे स्टूडियो का, पर मैं फिर से बता देता हूँ टू ऑल द न्यू लिसनर्स, 972-235-5555 इज द स्टूडियो का नंबर, 972-235-5555 इज द स्टूडियो का नंबर। लेट अस नो योर जैम। 8 से लेकर 9 बजे तक हम बजाते हैं पॉप सॉन्ग्स, दैट इज फ्रॉम द एल्बम्स एंड नॉट फ्रॉम द मूवी। सो एनी पॉप सॉन्ग्स, मोस्टली हम हिंदी बजाते हैं, बट मुझे काफ़ी सारे रिक्वेस्ट गुजराती की भी आए, मराठी की भी आए, सम फोक म्यूजिक एज वेल, बट मेक श्योर इट्स फ्रॉम द पॉप जॉनर, एंड वी विल प्ले दैम राइट हियर ऑन द एयरवेव्स ऑफ फनेशिया।

बॉम्बे वाइकिंग्स से लिया गया ये गाना है छोड़ दो आचल, सच एन आइकॉनिक वर्सेस सॉन्ग्स बाय बॉम्बे वाइकिंग्स यार, बैक टू बैक उन्होंने सुपर हिट्स दिए थे इन द अर्ली 2000s एंड आई होप ही कम्स बैक अगेन यार, बिकॉज वी रियली एंजॉयड द चैनल वी एंड द एमटीवी एरा. लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक, दिस इज अ संडे पॉप स्टेशन विद आरजे प्रेम. I hope you're having a beautiful late Sunday evening with your friends, family and loved ones. Next gana hume recommend kiya hai Rajesh ne, Nachne Ka Shauk by Raftaar.

क्या बात है यार, हिंदी लो हिंदी रैप म्यूजिक का अभी सीन सेट हो चुका है लेडीज एंड जेंटलमैन, विद ऑफ कोर्स रफ्तार एंड देर आर सो मेनी इमर्जिंग आर्टिस्ट देर आर पॉपिंग अप दीज डेज। आई थिंक आफ्टर गली बॉय, राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, गली बॉय ने थोड़ा सा शोकेस कर दिया कि हमारे पास भी अमेजिंग रैप आर्टिस्ट है। एंड कहाँ कहाँ से आ रहे हैं यार, मुंबई में कैसे कैसे एरिया से आ रहे हैं, फ्रॉम वेरी हम्बल बैकग्राउंड पीपल आर ब्रिंगिंग सो मच टैलेंट on to the world. Ladies and gentlemen, welcome back. I do want to mention about this segment is brought to you by My Team Equity. It's led by CPS Sudhir Pai, helps individuals and families build smarter financial strategies through portfolio management, real estate opportunities, and alternative investments. Whether you're planning for long-term wealth, retirement, or growing your investments, My Time Equity offers personalized solutions designed around your goals. Visit mytimeequity.com or call 469-702-1272 today. नेक्स्ट गाना बहुत ही इंटरेस्टिंग है लेडीज एंड जेंटलमैन, नजर नजर के एक सॉन्ग करके एक सॉन्ग है। इट्स बीन अ वाइल सिंस दिस सॉन्ग वाज रिलीज्ड, ऑलमोस्ट 2 or 3 decades, एंड हमें श्रीरंग ने रेकमेंड किया है ये गाना। दिस विल ब्रिंग बैक दोज अमेजिंग नॉस्टैल्जिक मेमोरीज। हैव अ लिसन लेडीज एंड जेंटलमैन।

यार आई यूजुअली गेट ऑल द सॉन्ग्स रिकमेंडेशंस ऑन ऑफ कोर्स आर स्टूडियो लाइन. कुछ लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करते हैं, काफी लोग मुझे करते हैं वहां पे फॉलो. अगर आप नहीं करते हो तो वहां पे भी आप कर सकते हैं मुझे, क्योंकि DMs आर ओपन. इफ यू कांट पिक अप द फोन, इफ यू कैन नॉट स्टे ऑन होल्ड, ऑब्वियसली यू कैन जस्ट जिंग अस द मैसेज, द सॉन्ग. एंड इफ यू आर रिकमेंडिंग दिस सॉन्ग टू समबडी स्पेशल, इफ यू वांट टू गिव अ शाउट आउट, यू कैन ऑलवेज डू दैट वी आर इंस्टाग्राम. Prem Joshi podcast, PremJoshi podcast, and you can follow us there on Instagram, Facebook, wherever you find us, you can do that. But yeah, long story short, usually मुझे song recommendations आते, but मुझे कभी कभार कुछ गानों की वजह से ऐसे ही calls आते, यार मजा आ गया यार. One of those songs is Nazar Nazar, जो हमारे श्रीरंग ने अभी recommend किया. मुझे मोहित ने phone करके बोला, यार I am born in 1982 and I remember as teenager listening to this song and how amazed we were. Sorry yaar Mohit, main aapko age nahi kar raha hu, but this is very special yaar. All the 80s and the 90s kids out there will understand, this was the golden era of pop music, the 90s and the early 2000s. It was so fantastic. राहुल ने मुझे एक और कॉल करके बोला, हमारे दो राहुल है, एक राहुल जो हमको मुझे अभी बीच में फोन आया, उन्होंने बोला कि I bought this cassette after saving my pocket money. And then, of course, we heard this song and we used to listen to this song every single Friday when my friends used to come in. So, बहुत मजा आ रहा है यार. Thank you so much. और अगर ऐसी कोई memories आपको share करनी है on air, let me know. 972-235-5555. अभी हमको request आई है iconic song की. When we talk about pop song, this song always comes up. Oh ho ho by Sukhbir. ऐसी कोई party ही नहीं है जिसमें ये गाना ना बजे. और अगर डीजे ने ये गाना नहीं बजाया तो वो डीजे है ही नहीं, वो कुछ और ही है. सो प्रिया और राहुल मुझे सुन रहे हैं और उन्होंने मुझे रेकमेंड किया है ये डैलस वासियों के लिए सॉन्ग. आई होप यू एंजॉय दिस एज मच एज आई विल.

सच एन आइकॉनिक सॉन्ग. मैं लिटरली भांगड़ा कर रहा हूँ यार स्टूडियो में यार. थैंक गॉड यार कैमरा नहीं है रेडियो पे, नहीं तो आप मुझे देख लेते कि ये प्रेम कैसा नाचता है यार. ऑल राइट लेडीज एंड जेंटलमैन, इफ यू आर लाइक मी हु लव्स वर्ल्ड कप, अभी मैं देखो मेरा कितना डेडिकेशन है ये जॉब के लिए एज एन आरजे. इतनी बड़ी मैच चल रही है और मैं आप सभी के लिए इधर गाने बजा रहा हूँ. सो दैट्स द डेडिकेशन वी हैव एट फनीशिया. मेक्सिको वर्सेस इंग्लैंड इज गोइंग ऑन, निल निल इज द स्कोर एज ऑफ राइट नाउ. 24 मिनट्स इन, दिस इज गोइंग टू बी एक्साइटिंग. आई डू थिंक दैट इंग्लैंड विल मूव फॉरवर्ड, बट यू नो मेक्सिको कैन गिव अ टफ फाइट, दे डू हैव सम सॉलिड प्लेयर्स. और ऑफकोर्स दोपहर को अगर आपने मैच नहीं देखा तो क्या किया यार, ब्राजील वर्सेस नॉर्वे था जहां पे हमारे अर्लिंग हालैंड went ahead and stepped up his game and took Norway to the next level. Brazil ka of course yahan pe the end ho gaya is World Cup ke liye, but of course we hope for the best because they are always going to be iconic, right? Brazil has always had superstars. They have given so much to the sport of football. I think they'll come back with a bang next time. Paraguay versus France yesterday, 1-0. Obviously, France has gone ahead. So let's hope for the best. And this time it's going to be really exciting. I'll keep you posted about Mexico versus England. But studio ka number likh lo, down, store kar lo. Kyunki hum 8:30 baje after the commercial break khelne wale ek zabardast Bollywood quiz. Ji haan. Aur ek chota sa giveaway bhi hai uske saath. So let us know. And we will play there. 972-235-5555.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपनी कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com. फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500. The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
4: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. FunAsia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jitu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy. Live safe with Duck Time.
5: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
6: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
2: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
7: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेरी।
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: कुछ भी नहीं. Ura Debt Relief will do it for us.
8: क्या मतलब?
9: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे.
9: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
8: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम.
10: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: This is Ali Zafar and you're listening to me on Fun Asia Radio.
12: Welcome back, ladies and gentlemen. This is the Sunday Pop Station with RJ Prem. I hope you're having a beautiful Sunday evening with your friends, family and loved ones. 3 days, ekdam zabardast holiday break mila aap sabhi ko, hum sabhi ko. I hope you made the best out of it. Some people went out of town.

This is the Sunday Pop Station with RJ Prem. I hope you're having a beautiful Sunday evening with your friends, family and loved ones. 3 din ekdam zabardast holiday break mila aap sabhi ko, hum sabhi ko. I hope you made the best out of it. Some people went out of town. Some people are just doing their chill. They're just chilling at home, relaxing, because you need that. You don't need to every single time plan out and go outdoor, go do this, go do that. कभी कभार थोड़ा सा सांस लेने के लिए थोड़ा टाइम मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है यार. वी नीड दैट रिलैक्सिंग टाइम एंड आई होप यू ऑल गॉट दैट. मोस्ट ऑफ यू गाइज आर ऑलरेडी रिटर्निंग बैक होम राइट नाउ आफ्टर योर डिनर्स और गेट टुगेदर्स. आप जो भी कर रहे हैं आप हमें सुन रहे हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट. सो प्लीज डू दैट. लेट अस नो योर जैम. 972-235-5555 इज द स्टूडियो का नंबर. एक दो गाने के बाद हम हमारा बॉलीवुड क्विज खेलेंगे. लेडीज एंड जेंटलमैन, पहला गाना इस सेगमेंट का हमें ऑलरेडी रिकमेंडेशन आ गई है, नाजिया हसन का Boom, boom. To all the new listeners, 8 से लेके 9 बजे तक हम हमारे पॉप सेगमेंट के गाने बजाते हैं फ्रॉम द एल्बम्स एंड नॉट फ्रॉम द मूवीज. 9 बजे से लेके 10 बजे तक हम हमारे ब्लॉकबस्टर सेगमेंट में सब आपके मूवीज के गाने बजाएंगे.

वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। अब वक्त हो चुका है हमारा वर्ल्ड फेमस बॉलीवुड क्विज खेलने का। बहुत ही इजी है ये लेडीज एंड जेंटलमैन। भाई मैं एक गाना बजाने वाला हूँ, ये बहुत ही आइकॉनिक सॉन्ग है। ऑलराइट, इट वाज यूज्ड एट मेनी वेज इन सम ऑफ द मूवीज एज वेल, बट इट्स एक्चुअली ए पॉप सॉन्ग एंड इट इज एक कल्ट क्लासिक सॉन्ग। मैं जैसे ही ये गाना बजाऊंगा आप सबको पता चल जाएगा ये कौन है। आपको सिर्फ मुझे कॉल करके ये बताना है ये बैंड का नाम क्या है। सिंपल एंड इजी। मुझे आप बैंड के मेंबर्स भी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ बैंड का नाम क्या है। ये दो जन का बैंड है ये भी मैं बता रहा हूँ आपको। सिर्फ आपको मुझे नाम बताना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ दिस बैंड, द सॉन्ग दैट आई एम गोना बी प्लेइंग। रॉक द पार्टी। 9722355555 इज द स्टूडियो का नंबर। पहले मैं ये भी बता देता हूँ आपको कि गिव अवे क्या है। चंडीगढ़ बाइट्स करके हमारे स्पॉन्सर है इस बॉलीवुड क्विज के। इफ़ यू हैवन बीन टू दिस रेस्टोरेंट आई हाईली रिकमेंड, इट्स ऑन मैकडर्मट ड्राइव इन एलन। मंडे टू फ्राइडे यू कैन एन्जॉय द स्पेशल थाली विद एक्साइटिंग न्यू डिशेज रोटेटिंग डेली फॉर लंच ओनली एंड इट्स रियली ग्रेट। इट्स अमेजिंग फूड, अमेजिंग आम्बियंस। Do try it, and the giveaway is you get $10 off on a billing of $50 on dine-in. Okay, $10 off on a bill of $50 when you dine in at Chandigarh Bites. This is the giveaway. आपको से मुझे बताना है ये बैंड का नाम क्या है जो ये मैं गाना बजाने वाला हूँ। 972-235-555, 972-235-555.

such an iconic song from the iconic band Bombay Rockers. यार मुझे ये बैंड इतना पसंद था. लेडीज एंड जेंटलमैन, पहले तो मैं बता दूं ये गिव अवे महेश ने जीत लिया है. हमको 15 कॉल्स आए लेडीज एंड जेंटलमैन इन द फर्स्ट 30 सेकंड्स ऑलरेडी. मतलब लोगों को हमारा शो कुछ ज्यादा ही पसंद है या तो फिर लोगों को चंडीगढ़ बाइट्स पसंद है. दोनों में से एक जो भी आपको पसंद है हमको चलेगा यार. वी आर ग्लैड दैट यू ऑल आर लिसनिंग टू अस, यू आर कॉलिंग अस, यू आर मेकिंग दैट एफर्ट टू पिक अप द फोन एंड कॉल अस एंड प्ले दिस Bollywood quiz. To all the other 14 people, I already spoke to three or four folks already, but to all the other folks that I couldn't pick up the phone, please naraz mat hoiye, hatash mat hoiye, dil chota na kijiye, kyunki ye hum har Sunday khelte hain. Every Sunday after the 8:30 commercial break, we play this Bollywood quiz, all because of our grand sponsors. So this week's grand sponsors, of course, Chandigarh Bites, which is based in Allen on McDermott Drive. Do visit them. It's a fantastic restaurant. Ladies and gentlemen, thank you so much, everybody. But keep your calls coming. If you're calling us to let us know a song, if you have a recommendation, if it's a great pop song, let us know. 972-235-5555 is the studio ka number. Ek choti si story bolte tao, yaar, hamare yahan Bombay mein Planet M karke hua karta tha. This was before the internet era. This is before the streaming. Now we just stream a song. पहले हम कैसेट्स और सीडीज लेते थे, तो प्लैनेट एम करके म्यूजिक स्टूडियो हुआ करता था मुंबई में एवरीवेयर. आई डोंट नो इफ इट वाज इन साउथ एंड इन नॉर्थ एज वेल, बट बॉम्बे में तो स्पेशली था ये. एंड वी यूज टू हैव दी स्टेशंस जहाँ पे आपका वॉकमैन लगा होता है, आप कोई भी सीडी डाल सकते हो उसमें, गाने सुन सकते हो और आपको लगे यार ये गाना जबरदस्त है, देन यू कैन बाय दैट सीडी और दैट कैसेट. एंड वी यूज टू ऑल हैंग आउट after the school, after our tuition classes, after college. That used to be our spot. This was, of course, after college. That used to be our spot. This was, of course, the pre-2003-2004, jiske baad sabke haath mein phones aa gaye the. But Bombay Rockers ki CD maine Planet M se li thi. And I really remember this one. So thank you so much for bringing these amazing nostalgic memories. And agar aapke paas bhi koi aisi memory ho, to let us know, yaar. बातें करेंगे, एंजॉय करेंगे. 972-235-5555. कलियों का चमन बाय हैरी आनंद हैज बीन सजेस्टेड बाय रंजीत. यस योर सॉन्ग.

0: ऑल राइट, वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। वैसे मैंने सभी को बोल दिया है कि हमारे अभी सेगमेंट चल रहा है वो है पॉप सेगमेंट लेडीज एंड जेंटलमैन, जहाँ पे हम गाने बजाते फ्रॉम द एल्बम्स फ्रॉम नॉट फ्रॉम द मूवीज। बट हमारे एक बहुत ही लॉयल लिसनर है सफ़ी ने, उन्होंने बोला है आप प्लीज़ ये गाना बजा दीजिए, तो हम सफ़ी के लिए गाना बजाने वाले हैं। एक बार हम हमारे रूल्स थोड़े ट्विस्ट कर रहे हैं जस्ट फॉर सफ़ी। सो हियर्स योर सॉन्ग मैन, अपना टाइम आएगा जैसे आपने रिकमेंड किया था, फ्रॉम गली बॉय।
1: आर्टिस्ट हुए आज तक सबके सब भूखे फक्कड़, बीट चुरा के फिर उसी भूख की कहानी बना के बोले फिर जाके कुछ उगाड़े। बस ये तो तेरे अंदर की सच्ची कहानी, तेरे अंदर का लाभ फटके बाहर आंदे। अपना

All right, welcome back, ladies and gentlemen. This is the Sunday Pop Station with RJ Prem. I hope you're having a beautiful late Sunday evening with your friends, family, and loved ones. Extended weekend. Happy 4th of July to all the new listeners who have just tuned in. Abhi hamari baat hui thi Hetal se, who has recommended me one of my personal favorite song. And of course, I feel like jabhi bhi hum ye hamara segment bajate hai, pop segment, उसमें ये गाना कोई सजेस्ट ना करे तो मैं खुद ही बजा देता हूँ यार. सो हेतल ने मुझे कर दिया है रेकमेंड द सॉन्ग विच इज़ वन ऑफ, आई थिंक इट्स वन ऑफ दोज एवरग्रीन सॉन्ग्स, राइट? ओ सनम बाय लकी अली. ये एल्बम का नाम है सुनो, एंड दिस वेंट वायरल बिफोर देयर वाज सच थिंग कॉल्ड एज वायरल. बिफोर ये स्ट्रीमिंग की दुनिया चालू हुई, उसके पहले ये एल्बम आया था जिसने धूम मचा दी थी. ऑन द रेडियो, ऑन द टीवी, एवरीवेयर दिस सॉन्ग यूज्ड टू बी प्लेड, एंड दैट वाज Lucky Ali's O Sanam. Here we go.

पता नहीं क्यों अंजाम जानते हुए भी मैं हर बार आकाश से मिलने पहुंच जाती हूँ, शायद दिल के हाथों मजबूर होके। एक महीने पहले इसी रेस्टोरेंट में मेरी आकाश से मुलाकात हुई थी। यकीन नहीं होता इतने से वक्त में वो मेरे इतने करीब आ गया है।

यार ये मेरा नोकिया 6600 का प्लेलिस्ट हुआ करता था। और अगर आप लोग को नोकिया 6600 पता नहीं है तो मैं क्या बोलूँ यार। लेडीज एंड जेंटलमैन, इट वॉज द मोस्ट आइकॉनिक मोबाइल फोन्स एवर क्रिएटेड, एवर मैन्युफैक्चर्ड। मेरे हिसाब से दैट वॉज द बेस्ट एवर डिज़ाइन। यार लुक इट अप यार, नोकिया 6600। टू ऑल द न्यू यंग लिसनर्स जो सिर्फ आईफोन्स और सैमसंग के फोल्ड फोन्स देख के बड़े हुए हैं, यार मैं क्या बताऊँ, दोज वर द डेज मैन। सोनी एरिक्सन, नोकिया 6600 एंड सो मेनी वेरियंट्स ऑफ नोकिया फोन्स वो सो आइकॉनिक। ऑलराइट, आई विल गो इनटू दैट नॉस्टैल्जिक ड्राइव वंस अगेन। 972-235-5555 इज द स्टूडियो का नंबर। दो तीन और गाने ले पाएंगे बिफोर वी कॉल इट अ नाइट। आई डू वॉन्ट मैंशन अबाउट PMJ ज्वेल्स, डैलस द वेट इज ओवर। द PMJ ज्वेल्स इज नाउ कमिंग टू फ्रिस्को, ब्रिंगिंग ओवर 60 ईयर्स ऑफ ज्वेलरी एक्सलेंस एंड टाइमलेस इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप। एक्सप्लोर स्टनिंग गोल्ड, डायमंड एंड ब्राइडल कलेक्शन फॉर एवरी सेलिब्रेशन एंड माइल स्टोन। Proudly associated with Mahesh Babu and Sitara Ghatamani, PMJ is a name trusted by generations. I hope I didn't butcher the last name, ladies and gentlemen. Visit PMJ Jewels Frisco on Main Street and discover jewelry that tells your story.

0: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
1: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
0: Kya matlab?
1: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
0: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
1: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
0: Ab to karna hi padega, madam.
2: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
3: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
4: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
5: पक्का कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था
6: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था
5: थोड़ा तेरी गाड़ी डेट पे कम वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है
7: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
8: इन प्लेनो
7: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स मेंटेनेंस रिपेयर्स ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ कंपटीटर कोर्ट मैच भी कॉल 4692983870 पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
9: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा
10: अजी सुनते हो सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे
11: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे
10: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा
11: हेलो तुम डैलस में हो यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो
10: सच में सब संभाल लेंगे
11: अरे सब कुछ वेडिंग हो हाउस वार्मिंग ग्रेजुएशन यू नेम इट दे डिलीवर वेन्यू फोटोग्राफी हॉस्पिटैलिटी सब कुछ एक ही जगह सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड Basera Grand only.
3: Call Hari Basera on 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

0: संगीत प्रेमियों को जगजीत सिंह का नमस्कार। दोस्तों, मैं आपसे मुखातिब हूँ इस वक्त फन एशिया रेडियो की तरफ से।
1: Let the music take control and dance the night away with Club Fanasia.
2: I love it.
1: The ultimate celebration of music and rhythm.

0: on your airwaves.
1: Turn it up.
0: Brought to you by Club Fanasia.

0: Asia.
1: I love it.
0: The ultimate celebration of music and rhythm.
2: नमस्ते बहन और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत यही।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट कभी तीखा सा किक कभी मीठा सा सुकून
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन द फ्लेवर लाउंज
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स द फ्लेवर लाउंज हर बाई सुपर हिट

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ, प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।

0: are capable of anything.
1: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग,

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM
1: Yeah, it's coming up.

0: कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।

म्यूजिक MG, तुझे बीच सड़क में रोक के दूंगा मौके देखने के मेरे शो के। इट्स ओके, तेरे पीछे पड़ा हूँ लाखों।

अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।

0: काफी हो।
1: मुझसे तो लड़ ले बेटा, दुनिया से कैसे लड़ोगे?
2: आप ही दुनिया हो
0: मेरे लिए, तुम काफी हो।
3: Variety is the spice of our station. 104.9 FM.

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
1: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।
2: Attempt to go regional and better than our

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
3: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
2: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
3: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्लैंड वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
1: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।
1: हमारे साथ मेवाड़ चलेंगे पद्मावती, हमारी पत्नी बनकर।

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
0: नहीं।
1: बुककीपिंग अपडेटेड है?
0: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
0: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
2: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रांग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुककीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, योर ग्रोथ आवर स्ट्रेटजी। AG Fintax लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: help me.
1: Kaash,
0: please help me.
1: Tu meri aankhein bhar de.
2: Aise kaise gayab ho gaye?
3: Pata nahi sir.
2: Recordings lined up hai, shows organized kiye hue hai. कौन करेगा ये सब? पता लगाओ कि कहाँ गए ये दोनों.
3: जी सर, पता लगा रहा हूँ.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

104.9 FM turns up the heat in Dallas.

0: Playing the best tunes in
1: Oh God, one more.

0: नाच शुरू करें?
1: Tracks that put you on the right track.

stuff.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फनेशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।

0: उठता धुआं तो कैसे छुपाए
1: सुधी ये शेर ला गमा गमा को वरला अपने अपनी मुंडी कर दे என்ன விட்டுருங்க
0: அக்கியா கரே ஜி ஹஜூரி

0: बेटा 95% आए?
1: हाँ मम्मी।
0: गुड, अब चलिए पापा आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
2: मेरा?
0: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
2: वो
3: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज। विजिट agfintechs.com, कॉल 972-618-8555। एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांधी।
4: दिस इज उदय चोपड़ा एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।

104.9 FM Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Pure Fact, they see.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: Portugal and Spain today, 2 p.m. right here in Dallas. And maybe Ronaldo, who's now 41 years old, it may be his last World Cup appearance. And, of course, we do have both these countries, Portugal and Spain. They are European neighbors and they know each other very well. Big crowds are expected and roads are going to be closed. Belgium and USA, 7 p.m. in Seattle with the suspension lifted. We'll talk more about that coming up in the course of our program right here on the airwaves of the Fun Asia Network. I do have world news coming up for you every hour on the half hour, and we'll have some stories from the annals of history that happened on today's date, which is the 6th of July. Ladies and gentlemen, thank you very much for making me a part of your morning and making Fun Asia Network a part of your daily lives. Thank you for letting me into your cars, driving you to your destination as we get going with our program this morning. If there is a song on your mind, I'll be happy to take your calls. 972-235-5555. All requests, dedications, if there is some kind of a celebration today, I'd love to dedicate a song for the concerned person from you. And of course, any comments, feedback, suggestions, anything you'd like to talk about this lovely Monday morning as we head towards 96 very hot degrees, and looks like we might just touch 100 sometime later this week. You'll be prepared for that, but we'll keep you updated right here on the airwaves of the Fun Asia Network.
1: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
3: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
4: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
5: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
6: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
5: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
0: और सुनाओ, हाउस हंटिंग कैसी चल रही है?
7: क्या बताऊं, इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग।
0: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट। ही इज एन एक्सपीरियंस रियल्टर हु प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सर्विस प्लस कैशबैक एट क्लोजिंग। अजय रिव्यूज ईच हाउस थरली एंड शेयर्स ऑल द प्रोज एंड कॉन्स एंड निगोशिएट्स द बेस्ट प्राइस एंड बिल्डर इंसेंटिव्स। जस्ट विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई पीपल आर रेविंग अबाउट हिम।
8: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम जुलाई 3rd टू 5th तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम Garland, where every bite is a celebration.
9: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
10: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts facts and circumstances. Call 214-378-8880. Matro Law Offices PC. Right advice, right defense.
11: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
12: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
13: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
14: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे?
16: इंडिया में? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में? सब संभालेंगे?
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
10: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. वैनेसा इवेंट्स, योर सेलिब्रेशन partner.

0: कभी मैं तुझे कुछ नंबर्स एसएमएस कर रहा हूँ, पता लगा है किनके हैं और उन्हें 24 घंटे मॉनिटर करवा।
1: अरे शिवम, यहाँ पर वैसे ही 100 काम है, ये नंबर्स ढूंढना इतना जरूरी है?
0: सवाल पूछे बिना तुझसे कोई काम होगा?
1: ओके, ओके, चल ठीक है, प्लीज।

0: On today's date, in 1957, Althea Gibson claims the women's singles title at Wimbledon and becomes the first African-American to win a championship at London's All England Lawn Tennis and Croquet Club. Paul McCartney met John Lennon for the first time on today's date in 1957 at a church event in Liverpool, England, where the latter's band was performing and the duo would later form the Beatles, one of the most influential bands in history. These two Liverpool music-minded teenagers for the first time met in this church auditorium. Me like she did. Starting one of the most fruitful musical partnerships in history, and 7 years later, they, along with George Harrison and Ringo Starr, would become worldwide phenomena known as the Beatles. Nyasaland broke from British rule and became the independent country of Malawi within the Commonwealth of Nations on today's date in 1964. And 5 weeks after its secession from Nigeria, the breakaway Republic of Biafra is attacked by Nigerian government forces on today's date in 1967.
1: Louis Armstrong and the Duke. Let's hear it for them.
0: Louis Armstrong died on today's date in 1971 in New York, the leading trumpeter and one of the most influential artists in jazz history. And the first women were inducted into the U.S. Naval Academy on today's date in 1976. Ranveer Singh was born on today's date in 1985 in Bombay. The Indian actor, known for his work in Bollywood, noted especially for his on-screen versatility and his spirited, energetic off-screen persona. And over the years, he's garnered acclaim as a style icon for his very fearless and eccentric fashion choices. Happy birthday to Ranveer Singh today. Jagjeevan Ram died on today's date in 1986 in New Delhi, the Indian politician, government official and long-time leading spokesman for the Dalits. Served in the Lok Sabha for more than 40 years. David Karp, the American web developer, was born on today's date in 1986. Founded the microblogging site Tumblr. And Forrest Gump opened in theaters on today's date in 1994.
2: Hey, dummy!
3: Are you calling me? अरे डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
4: मामू, देखो क्या हो गया।
5: ओ, क्या हो गया?
4: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
5: ओए, जर्मन का कमाल है।
4: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
5: ओ, नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623, कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
6: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
7: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
8: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
9: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
10: वेट, इतना सब और प्राइस?
9: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन। समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
11: मैं
4: Ladies and gentlemen, you're not ready for this. Frisco mein itna pyar milne ke baad, Panchtara is now open at a new location in Allen. Wahi swaad, wahi junoon aur wahi zabardast management aur customer service. Famous garma garam parhathe, roz taazi bani mithaiya aur full service bar waiting just for you. Enjoy fine dining experience aur Punjabi buffet every day. Catering service is also available to make your every celebration memorable. Panchtara now in Frisco and Allen. Mention Apna Punjab and get exclusive discount on your first visit.
2: Documents ya parcel bhejni hai?
11: हाँ.
2: घर रिलोकेट करनी है?
11: हाँ.
2: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
11: हाँ भाई हाँ.
2: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
12: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
13: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का.
14: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
15: विजिट psychicramnath.com. कॉल 4693474401. प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध.
16: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी.
17: और सुनाओ, हाउस हंटिंग कैसी चल रही है?
18: क्या बताऊं, इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
17: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. ही इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर हु प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सर्विस प्लस कैशबैक एट क्लोजिंग. अजय रिव्यूज ईच हाउस थरली एंड शेयर्स ऑल द प्रोस एंड कॉन्स एंड नेगोशिएट्स द बेस्ट प्राइस एंड बिल्डर इंसेंटिव्स. जस्ट विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई पीपल आर रेविंग अबाउट.
19: सुनो, कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने हैं, और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
20: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
19: कहाँ?
21: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
15: फूडिस्तान इन ऑबरी. एवरीथिंग देसी. One place, one vibe.

0: Neha Kakkar sang that track with her brother, Tony Kakkar, and I do hope you enjoyed it. I will have the world news coming up for you, and we'll do that in the 9:30 segment. I have another giveaway for you, and that's coming up also. As we move on with our program, we will have plenty of information as well as entertainment. I have lots of songs lined up, but if there's one on your mind that by listening to which you think you will be able to take on the day, well, I do have that lined up for you as soon as you call me. 972-235-5555 is the number here in the studios as we head towards 96 very hot degrees today, and looks like we might just be touching 100 a little bit later this week. We'll keep you updated right here on the airwaves of the Fun Asia Network for you 24 hours a day with 5 radio stations under the network of Fun Asia Radio.
1: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है,
2: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे,
3: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
4: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
2: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
5: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
6: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
5: Kya matlab?
6: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
5: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
6: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
5: Ab to karna hi padega, madam.
7: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
8: Aaja meri gaadi mein baith ja.
9: Baith jao. पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था.
10: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था.
9: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है.
11: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
12: इन प्लेनो.
11: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
8: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
13: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
14: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
13: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
14: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
13: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
14: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स.
13: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338. दैट्स 817-786-3338.
15: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
16: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
17: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
18: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
17: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
19: हेलो टेक्सास परिवार, वेयर डू यू गो व्हेन बैंक सेज नो? आर यू सेल्फ एम्प्लॉयड? And are you struggling with your qualification? Yes, we have loan options for you. So call KJ Kamna Co at 214-845-4189. Kyunki aapka bharosa hi meri pehchan hai. NMLS 926641.
20: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
21: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
20: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
21: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट.
22: Hi, this is Deepika Padukone and you're listening to Fun Asia Radio.

0: Sports Academy, powered by Arjun Archery Academy, conveniently located on Quiet Road in Frisco. Visit friscoprecisionsports.com or call 469-333-1099.
1: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
2: Is shahar ko hua kya? Kahin pe anvishwas ka kala saaya? Kahin pe kala jadu? Dhuaan dhuaan. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता, जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
3: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा, लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
4: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401. Plano, McKinney, Irving और Garland में उपलब्ध।
5: Astrology readings for guidance only and results may vary.
6: I've been researching retirement planning.
7: Oh really? Where?
6: Google, YouTube, a guy on TikTok.
7: Or you could just talk to WealthTactic.
6: What's the difference?
7: They create a real retirement strategy, not just investments, but a plan for when your income stops.
4: WealthTactic, because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
9: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
9: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
4: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
11: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
12: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
11: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
12: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
11: ये क्या होता?
12: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
10: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
4: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
13: Hi, this is Saif Ali Khan. You are listening to Fun Asia Radio.
14: Hi, my name is Sumaira Jamani and I am from Sanada Inc. Today, I'm here to update you about the auto insurance premium. The auto insurance premiums are getting higher day by day. There are several factors that are impacting the higher cost of the insurance, which includes the higher inflation, cost of material, cost of all kind of labor. So that is impacting the price. Me and my team, we are available here to assist you and see if you can save some money, get better coverages along with the affordable prices. You can contact me or my team at 972-863-7772. We communicate in different languages. That includes English, Urdu, Hindi, Gujarati, Punjabi. Please do contact us and we would love to assist you. Thank you.

0: पटक पटक लौंडों के दिल पटक पटक सांसें जाए अटक अटक आता माजी सटक सटक बम तेरा गुदे खाए कमर पे तेरी बटरफ्लाई बॉडी तेरी मक्खन जैसे खाने में बस तू बटर खाए बीबी किकेट किकेट काटू तेरी टिकेट टिकेट खेलता नहीं क्रिकेट विकेट पर ले लूं तेरी विकेट विकेट
1: बड़ो लो।

0: सा ढंग तेरा मुझसे चोरी चोरी बातें करे अंग अंग तेरा तेरे लिए कुछ भी कर लूंगा तेरी मैं हर लूंगा कोई भी पीड़ा पागल हुआ तेरे पीछे जैसे दिमाग में कीड़ा लगे मीठी जैसे शकर शकर आजा चला ले चक्कर चक्कर बाकी के लौंडे पकड़ पकड़ I am the baddest motherfucker.
1: Yeah. Hard to be.

0: We are heading towards 96 degrees. And for those of you headed to Arlington for the match today, you'll please stay cool and stay safe as you watch maybe for the last time Ronaldo, who's now 41 years old, playing Portugal against Spain, round of 16, 2 p.m. at the Dallas Stadium today. Big crowds are expected. You'll please be careful and enjoy the match. I'll be back tomorrow. Me Too coming on next.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: सुनो, शादी के लिए ज्वेलरी भी देखनी है।
4: हाँ, देख लेंगे।
3: तो फिर इंडिया की टिकट कब करवाएं?
4: अरे, तुम्हें ज्वेलरी देखनी है या रिश्तेदारों को?
5: One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. वही timeless craftsmanship, वही unmatched elegance और वही stunning bridal collections. Now on Main Street in Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
6: Are you tired of the same arguments, reactions, and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents, and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques, and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
7: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
8: Calculating route. Rerouting.
7: Are ye kya? Mujhe mere
8: essentials, authentic Indian products, aur ghar ki har zarurat. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
7: Achha, to seedha wahi le chalo.
9: India Bazaar at 5152 Quadrant Way, Fort Worth. Switch the route.
8: Your new destination has arrived.
10: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
11: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
10: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
11: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
12: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support or har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
13: Suno, kal bahut kaam hai. Pehle grocery, fir pooja ka saman, gifts bhi kharidne aur in sab kuch ke baad mein कुकिंग नहीं करने वाली, कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
14: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो
13: कहाँ?
15: फूडिस्तान इन ऑबरी, फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोवेस्ट प्राइस मैच गारंटी. एंड इनसाइड फूडिस्तान, एंजॉय द प्रीमियम इंडियन कुजीन एट डी वाइब, एन अपस्केल रेस्टोरेंट फॉर द परफेक्ट फैमिली डिनर.
12: फूडिस्तान इन ऑबरी, एवरीथिंग देसी, वन प्लेस वन वाइब.
16: समझ नहीं आ रही, टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
17: इट्स लॉसन.
16: किससे बात करूँ, सारी जानकारी कौन देगा?
17: इट्स लॉसन.
16: डैडी, व्हाट इज द लॉ?
18: इट्स लॉसन ट्रैवल्स फॉर ऑल योर ट्रैवल नीड्स. गिव देम अ कॉल टुडे, 214-631-2458. द ट्रैवल एक्सपर्ट्स, लॉसन ट्रैवल.
19: प्लीज डोंट से योर यूजुअल प्लेस अगेन. आई एम टायर्ड ऑफ द सेम फूड.
2: एक्सक्यूज मी, इट्स कॉल्ड बीइंग लॉयल.
19: इट्स कॉल्ड बीइंग प्रेडिक्टेबल.
2: ओके देन, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
19: And what's so special at Neon Cactus?
2: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
19: Not bad.
2: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
19: Okay, this I didn't expect from you.
2: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
3: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
4: लिया.
3: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
4: नहीं आया.
3: मुझे भी नहीं आया.
2: आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. Whether it's home, auto, health or business, every policy is customized around you. Hotels, motels, gas stations and small businesses, they help protect what you worked hard for. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
9: Visit www.sanadainc.com today.
17: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.
20: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio.

फ्रॉम द ट्रेजर चेस्ट ऑफ म्यूजिक, ये जो अजय अतुल का गाना था, बैक टू बैक अजय अतुल सॉन्ग्स दैट यू हर्ड. सो मैंने सोचा कि लेट्स फिनिश दिस ट्रिलॉजी ऑफ अजय अतुल सॉन्ग्स विद दिस नेक्स्ट वन दैट आई एम गोइंग टू प्ले. एंड टॉकिंग अबाउट ट्रेजर चेस्ट, तो बात की करनी चाहिए मुझे इस वक्त क्लासिक गोल्ड डिजाइंस और स्पार्कलिंग डायमंड्स और इंट्रिकेट कुंदन डिजाइंस और स्टनिंग पुल की कलेक्शन जो श्री कृष्णा के पास है. द इंडस्ट्री लेजेंड श्री कृष्णा ज्वेलर्स हैज बीन द epitome of the finest and most exclusive jewelry for decades. Aur ye 1967 mein establish hua tha, and its vision and adaptive nature of their business has made them where they are today. Massive success that they are, and it is our sheer honor to have them in this town of Frisco. So ladies and gentlemen, inke naye location ko zarur check out kare, 13145 Suite 220 Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, ladies and gentlemen, jo aapke zehen mein hona chahiye if you want to celebrate your day in a little more special way. This is Gapshap Gali with me too.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com. The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
3: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
4: Pritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
5: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
4: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
5: वेट, व्हाट?
2: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
6: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
2: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
7: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Sanao Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
8: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
9: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
10: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
9: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
2: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
11: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
12: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
13: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
14: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
13: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
15: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
16: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में? सब संभाल लेंगे।
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
17: Tracks that put you on the right track.

और अगर आपको चाहिए कुछ राइट एडवाइसेस एज फार एज बाइंग होम इज कंसर्न, रीफाइनेंसिंग इज कंसर्न, ऑल सॉर्ट्स ऑफ लोन्स दैट यू माइट बी सीकिंग, बी इट यू नो फर्स्ट टाइम होम बायर्स लोन्स, सेल्फ एम्प्लॉयड लोन्स विथ नो टैक्स रिटर्न्स, कैश आउट मोर्टगेज रीफाइनेंस या एडजस्टेबल रेट मोर्टगेज FHA लोन, और इज इट कमर्शियल लोन फॉर ऑल ऑफ यू, या अगर बैड क्रेडिट लोन्स के बारे में भी जानना हो, आपके लिए एक नाम है जो करीब करीब अब 30 साल से आपकी सर्विस में रहे हैं, ड्रीम होम मॉर्गेज से मिस्टर हुसैन पंजवानी एंड हिज टीम. दे आर इनक्रेडिबल. द नंबर ऑफ इयर्स दैट दे हैव बीन एक्टिव एंड हाउ इज व्हाट डिफाइंस देम रियली. लाइसेंस्ड इन ऑल 50 स्टेट्स लेडीज एंड जेंटलमैन. It is Dream Home Mortgage that you need to get in touch with. 972-245-5626 is the number to call. DreamHomeMortgage.com inki website hai. Let's get you another Lucky Ali number right here. Ye hai Gapshap Gali with me too, aur thodi der mein weather update bhi aap logon ke saath share karenge.

It is पोर्टुगल वर्सेस स्पेन टुडे इन डैलस स्टेडियम. और डैलस स्टेडियम के अंदर ऐसी ही गर्मी इस कारण ही बढ़ गई कि रोनाल्डो को वी विल सी इन एक्शन. लेकिन इसके अलावा इफ यू आर रियली हेडिंग आउट टू डैलस स्टेडियम फॉर द वर्ल्ड कप, बी श्योर टू ब्रिंग एक्स्ट्रा वाटर इफ यू विल बी आउटसाइड, एंड इट विल बी रियली हॉट. इट विल फील लाइक द ट्रिपल डिजिट्स. ऑल्दो 90s में हमारे कुछ टेम्परेचर रहेगा, लेकिन यस, ए मगी स्टार्ट टू द डे एंड द temperatures in the morning were in the 70s. You can expect a mix of sunshine and clouds. That's what I can see for all of us. Kuch isolated storms ke chances bhi hain dopahar mein. And the risk of this isolated storm stays east of the DFW area. So yes, this is what I want you all to remember, ki aaj ka kuch isolated severe storm jo hai, आज का नहीं, एक्चुअली आज जो चांसेस हैं वो लिमिटेड रहेंगे, लेकिन कल द रिस्क ऑफ एन आइसोलेटेड सिवियर स्टॉर्म केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग डैमेजिंग विंड्स इंक्लूड्स द DFW मेट्रोप्लेक्स, और कुछ ज़्यादा रेन चांसेस हमारे कल के लिए. दैट्स व्हाट आई कैन सी इन द फोरकास्ट. एंड लुकिंग अहेड टू द रेस्ट ऑफ द वीक, DFW विल बी ड्राई आउट बाय लेट्स सी मिड वीक. So Wednesday you can expect ki aasman khul jayega, ye jo cloudy skies aap dekh rahe ho ye khul jayega, and the heat will peak into going into Thursday. 100 first triple digit this week that we'll see is on Thursday officially, kyunki heat index वैसे भी हमारे triple digits mein hai, but that day it is going to feel even more hot. So be very conscious about drinking lots and lots of water. Right now the temperature here is 86 degrees, today's high in around 97, and that is what is in the forecast as far as temperatures is concerned tomorrow as well. Once again, thank you for tuning into Fun Asia Radio 104.9 FM. ये है गपशप गली विथ मी टू, एंड दिस पार्ट ऑफ माई शो इज ब्रॉट टू यू बाय ड्रीम होम मॉर्गेज.

0: हर तारा। अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
1: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
2: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
3: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
2: कैसे?
3: पेज 3 ईटरी?
2: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
3: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
2: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
0: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
4: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
0: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता।

0: एंड ग्रेट कंपनी यानी कि मैं
1: पेज 3 ईटरी ईट सिप गॉसिप रिपीट।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
3: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? उमर ख्वाजा।
4: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
5: फिल्मों का मजा एक्शन ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
6: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
5: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
6: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपरहिट।

0: मैं ये करा कि अगर आप मुझे अगर बताते हो लाल सिंह चड्ढा वॉज अ रीमेक ऑफ विच फिल्म, आई विल राइट नाउ राइट अवे गिव यू पंचतारा रेस्टोरेंट की तरफ से एक फ्री आलू कुलचा या छोले भटूरे. दिस इज द इजिएस्ट क्वेश्चन दैट आई हैव एवर आस्क फॉर ए गिव अवे. एंड आई थॉट मंडे है, चलो स्ट्रेस है, इसलिए थोड़ा आपकी थोड़ी जो लाइफ है ना थोड़ी आसान रखते हैं. सो यस, लाल सिंह चड्ढा वॉज बेस्ड ऑन विच हॉलीवुड फिल्म, इफ यू कैन टेल मी राइट अवे यू गेट दैट पंचतारा रेस्टोरेंट की तरफ से गिव अवे. यू आर लाइव ऑन एयर, ऑल द लाइन्स आर ब्लिंकिंग हियर. लेकिन पहले जो जिन्होंने जवाब दे दिया सही सही उनको मिल जाएगा पंचतारा की तरफ से. यू आर लाइव ऑन एयर.
1: यस हेलो, सो द आंसर इज आई बिलीव इज फॉरेस्ट गंप.
0: It is absolutely correct, and I had no doubts that people will be able to answer this one very quickly. And you were quick enough to get this giveaway. And what's your name?
1: It's Monica.
0: Monica, I'm going to put you on hold here, and I'll take all your information for this amazing place that you're getting this giveaway from. It is called Panchtara Restaurant. They have two locations in Allen and Frisco, and what you have won for yourself is just amazing. आलू कुलचा या फिर छोले भटूरे, इट डिपेंड्स ऑन विच डे यू गो देयर दैट यू कैन रिडीम वन ऑफ द टू प्राइजेस. सो प्लीज होल्ड द लाइन फॉर मी एंड कंग्रेचुलेशंस टू यू.
1: थैंक यू.
0: And you know what? Why did I bring a Forrest Gump here? I'll tell you exactly the reason as well. But let's not forget to wish Aamir Khan. He has finally married his longtime partner, a salon entrepreneur, Gauri Sprat. And that happened yesterday, ladies and gentlemen. Ek intimate sa Bandra mein, unke Bandra ke ghar mein, unke residence mein, in Mumbai, close friends ne attend kiya, family ne attend kiya, unke bachcho ne attend kiya. And Reena Dutta, his first wife, and Kiran Rao, his second wife, were also present there. His ex-wives were also present there. So yes, that's the good news in Khan family there. Or jo dusri good news ye hai ki bhai Aamir Khan ne ye jo Forrest Gump banayi thi ye film, it was actually a remake of, proper remake of Forrest Gump. Didn't work at the box office, worked really hard. 8 to 10 years lag gaye the Forrest Gump ka जो है राइट्स पाने में, एंड उसके बाद फिर तैयारी और शूटिंग और वो सब करने में पूरे 14 साल लग गए थे लाल सिंह चड्ढा को एक्चुअली बनने में. एंड इट वाज ऑब्वियसली दैट काइंड ऑफ एफर्ट दैट इट आस्क फॉर, क्योंकि जिस तरह की आइकॉनिक मूवी फॉरेस्ट गंप है, टॉम हैंक्स फॉरेस्ट गंप, उसको तो भाई बहुत शिद्दत से बनाना ज़रूरी था. फिर वो चले ना चले वो अपनी एक अलग कहानी है. बट वाई डिड आई ब्रिंग दिस थिंग, बिकॉज आज ही के दिन रिलीज हुई थी फॉरेस्ट गंप इन द ईयर 1994. तो बनता है ना, बिकॉज दिस इज द सेगमेंट दिस डे इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा. तो चलिए एक और ऐसी फिल्म पे, भले ही लाल सिंह चड्ढा नहीं चली हो, लेकिन ये जो अगली फिल्म है ये जबरदस्त चली थी. एंड इट स्टार्स सलमान खान एंड अनुष्का शर्मा. इट इज सुल्तान, लेडीज एंड जेंटलमैन. अली अब्बास जफर एट द हेल्म ऑफ डायरेक्टिंग इट.

0: 6 जुलाई यानी कि आज ही के दिन 2012 में ये फिल्म रिलीज हुई थी, विच वॉज लूजली बेस्ड ऑन द 1975 वेरी बिग हिट फिल्म गोलमाल, और वो ऋषिकेश मुखर्जी की थी, तो ये रोहित शेट्टी की थी, और वो रोहित शेट्टी एलिमेंट आपको इसमें नजर भी आता है. यू आर ट्यून इन टू फाइनेंशियल रेडियो 104.9 FM. मिलते हैं ब्रेक के बाद.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
2: Official tax and finance partner, AG FinTax.
1: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: In association with Passion Health Primary Care.
3: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन.
4: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, 10 दिन, अगले ट्यूसडे.
5: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
6: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
4: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
7: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, Makini, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
8: Mamu, देखो क्या हो गया.
9: ओ, क्या हो गया?
8: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है.
9: ओए, जर्मन का कमाल है.
8: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है.
9: ओ, नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन. मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार. तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623. कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार.
10: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस.
11: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship and access to top-rated products like annuities, term life, whole life and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
7: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
12: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं. क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता. जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का.
13: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा. लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव.
14: विजिट psychicramnath.com. कॉल 469-347-4401. प्लेनो, मैकिनी, इरविंग और गार्लिन में उपलब्ध.
15: Astrology readings of our guidance only and results may vary.
14: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
16: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
17: Hi, this is Konkana Sen Sharma and you're listening to me on Fun Asia Radio.
18: Tracks that put you on the right track.

मोनिकाज रिक्वेस्ट दैट आई वाज प्लेइंग हियर. और ये फिल्म जो कि रीमेक थी फॉरेस्ट गम की, एंड फॉरेस्ट गम दैट रिलीज ऑन दिस डे इन द ईयर 1994. टॉम हैंक्स ने कमाल की वो एक्टिंग की थी जो आज तक मेरे ख्याल से कोई दोबारा रेप्लिकेट नहीं कर सकता, नॉट इवन आमिर खान. एंड दैट इज वाई लाल सिंह चड्ढा फेल्ड एट द बॉक्स ऑफिस डिस्पाइट ऑल द एफर्ट्स ऑफ 14 ईयर्स दैट वेंट इन टू मेकिंग दिस मूवी लाल सिंह चड्ढा. और फॉरेस्ट गम के बारे में कभी और किसी दिन कुछ और बातें करेंगे, बिकॉज केम टू नो अबाउट दिस इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट फॉरेस्ट गम कि जो वो रनिंग वाले जितने भी सीन्स थे ना, इट नीडेड फॉर टॉम हैंक्स टू यू नो पेस अलॉन्ग ब्यूटिफुली स्विफ्टली. एक वो स्विफ्टनेस चाहिए था जो उनमें नहीं था, एंड दैट्स वाई जिम हैंक्स एक्चुअली हिज ब्रदर स्टेप्ड इन टू डू वॉट वॉज नीडफुल ऑफ द कैरेक्टर. सो येस, दिस लिटिल ट्रिविया फॉर ऑल ऑफ यू राइट नाउ, स्लिपिंग इन टू Anil's request, or maybe not, you know, let's get a song that is a bit shorter for all of us to enjoy that other song in its entirety in a little bit. Chale is gaane par. This is Gapshap Gali with Me Too.

And ladies and gentlemen, you need to know that, you know, you are tuned into Funasia Radio 104.9 FM और गपशप गली with me too में इस वक्त हमारी कुछ बातचीत शुरू होती है, कुछ ऐसी चीज जिससे आप भी रिलेट कर सकें और मैं भी रिलेट कर सकूं, because to bring up a topic, I should be able to connect to it as well. And if you connect to the topic, do remember to give me a call at 972-235-5555. I'll be all keen to hear back from all of you. इस गाने के बाद कुछ एक मुद्दा उठाते हैं, क्या कहते हैं आप? Once again, number in the studio 972-235-5555. Going straight into Anil's request here.

जिंदगी अगर दो पल की है तो इस दो पल में वो जो पल हैं वो आप किस पे बिताना पसंद करोगे? बस इसी से रिलेटेड कुछ सवाल मैं आपसे करने वाली हूँ. इन जस्ट अ बिट लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वॉन्ट टू मेक श्योर दैट यू ऑल आर ऑन द सेम पेज एज इन द नंबर इन द स्टूडियो 972-235-5555. दिस पार्ट ऑफ माई शो इज़ ब्रॉट टू यू बाई ए जी फिनटैक्स, वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द US. और ये जो फाइनेंशियल सर्विस ऑफर करते हैं इंडिविजुअल्स के लिए और साथ में बिजनेसिस के लिए, ये आपके लिए बहुत यूजफुल साबित हो सकता है. ट्रस्ट मी, गेट इन टच विद देम. टैक्स प्लानिंग हो, टैक्स फाइलिंग एंड कंप्लायंस की बात हो, जो भी आप जानना चाहते हैं, डायनामिक बुक कीपिंग की बात हो, वेल्थ मैनेजमेंट की बात हो, एनीथिंग टू डू विद फाइनेंसेस एंड योर एनी सर्विस दैट यू आर सीकिंग अंडर दैट अम्ब्रेला, आप जरूर इनके साथ कनेक्ट करें. दे यूज देयर डेकेड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक टैक्स प्लानिंग एंड बुक कीपिंग एक्सपीरियंस कि वो स्मॉल बिजनेसेस और इंडिविजुअल्स दोनों की मदद बहुत आराम से और बहुत तगड़ी कर सकते हैं. एंड यू कैन सेव हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स really, and that's Mr. Anil Grandhi and his team dedicated to helping you. And the number to call is 469-942-9888. agfintax.com inki website hai. अच्छा, मैं अपने शो पे ना एक सोशल डिलेमा की बात करना चाहती हूँ एंड आप लोगों से इसका जवाब भी थोड़ा सा पाना चाहती हूँ कि कभी आपने ये चीज़ फेस किया है तो ज़रूर बताइएगा, ठीक है? कि आप इमेजिन करो कि आप ऑफिस के कैफेटेरिया में घुसते हो या दोस्तों के साथ जो हैंग आउट स्पॉट है या घर पे किसी भी डिस्कशन में आप एंटर करते हो, लोग बिल्कुल शिद्दत से कुछ डिस्कस कर रहे हैं किसी टॉपिक पे और आपको पता चलता है कि उस टॉपिक के बारे में आपको बिल्कुल नहीं पता. एंड इट इज़ वन ऑफ दोज टॉपिक्स जो कि आजकल बहुत ट्रेंड कर रहा है. कैन बी ए कॉम्प्लेक्स न्यू टेक ट्रेंड, या तो फिर कोई न्यू स्टोरी जो बहुत बड़ी चल रही है फिलहाल, या कोई वायरल वेब सीरीज के बारे में बात हो रही है, दैट काइंड ऑफ थिंग. तो क्या होता है आपके साथ, क्या करते हो, क्या दिमाग में चलता है? मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या आप ज़बरदस्ती फिर यू नो सॉर्ट ऑफ गूगल पे जाके इंफॉर्मेशन बटोरने लगते हो सो दैट यू आर कम्फर्टेबल विद दैट कॉन्वर्सेशन व्हेन इट हैपेंस नेक्स्ट टाइम, कि आप कोई चिंता नहीं करते हो, आप आराम से अपनी ज़िंदगी फिर भी बताते हो, कोई डिलेमा या कुछ इस चक्कर में पड़ते ही नहीं हो? दैट्स ऑल आई वॉन्ट टू नो. कि कभी जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स टॉक अबाउट फीफा ओनली. ज़रूरी नहीं कि हर कोई फीफा में इंटरेस्टेड हो, ऑल्दो लेडीज़ एंड जेंटलमैन जो इंटरेस्टेड है उनको बता दूँ कि मेरा आखिरी सेगमेंट 12 से 12:30 के बीच इस dedicated FIFA segment. So if you don't know anything, a little bit of info if you're seeking, that can be very specially for you as well. Baki jinko FIFA mein bilkul interest nahi hai, mujhe pata hai ki unko music mein interest hai and that will anchor them in that last segment also. Lekin baat wahi pe tiki rehti hai ki maan lijiye koi bahut hi current topic hai aur usme aapko bilkul interest nahi hai, aap kaise sambhalte ho? Do you start reading, watching and all of that, or you are chilled and okay about not knowing it? Let me know. All right, this is Gapshap Gali with me,

एक टॉपिक मैंने उठाया है जिसका मुझे लगता नहीं कि मुझे अभी पूरा पूरा मैं जवाब ले पाऊंगी लोगों के साथ, लोगों से यानी कि लिसनर से यानी कि आपसे, और इसलिए विल रोल ओवर इनटू द नेक्स्ट सेगमेंट टू टॉक अबाउट दैट. लेकिन अभी जिस चीज़ के लिए मैं पैशनेटली बात करना चाहती हूँ, इट इज़ टू डू विद आवर हेल्थ, क्योंकि वो बिल्कुल सीरियसली लेना चाहिए. जस्ट लाइक एनी अदर पैशन दैट यू हैव, यू नो, हेल्थ इज वन थिंग दैट यू आर पैशनेट अबाउट, एंड एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर दे आर passionate about your health, and that is the reason वो आराम से तसल्ली से आपको देखते हैं. They give you the time that you need for your visit, doctor's visit, और इसीलिए passion health primary care ज़रूर जाएं जहाँ पर आपको same day appointment मिल जाता है, unlike many other places, you know that, right? कि कभी कभी वैसे appointment नहीं मिलता है, जब आपको ज़रूरत हो नहीं मिलता है, and that upsets you कि ज़रूरत मेरी आज की है, मुझे कल appointment अगर मिलता भी है तो उससे फ़ायदा क्या होता है मेरा, है ना. तो doctor के पास जो है appointment same day का बहुत बड़ा एक plus that comes with passion health primary care. Do remember to get in touch with them. PassionHealthPhysicians.com इनकी वेबसाइट है, और नंबर है 214-666-6259. एंड ऑल्सो टू ऑल आर लिसनर्स, अगर आप में कोई प्राइमरी केयर डॉक्टर्स हैं, एंड्रोक्रिनोलॉजिस्ट हैं, पीडियाट्रिशियंस या साइकेट्रिस्ट हैं, तो आपके लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर. एंड द ई मेल एड्रेस फॉर ऑल ऑफ यू टू सेंड योर रेज्यूमेज, इट इज PassionHealthPhysicians@gmail.com, एंड यू कैन टेक्स्ट एट 217-454-4639. This is Gupshup Gali with me too. Something that I want to ask you all, which we'll speak about again after the break. This is Gupshup Gali with me too.

दिस इज गपशप गली विथ मी टू। और गपशप गली अगर किसी शो का नाम हो तो गपशप तो होनी ही चाहिए, और इसीलिए हर रोज मैं एक टॉपिक लेकर आती हूँ, टॉपिक दैट फील्स रेलिवेंट टू मी एंड इट शुड फील रेलिवेंट टू यू, एंड इफ इट डज तो मैं चाहती हूँ कि आप मुझे ज़रूर कॉल करो। कुछ टॉपिक जो छेड़ा था पिछले सेगमेंट में, कुछ बात पूरी नहीं हो पाई तो मैंने सोचा कि करते हैं पूरी, यार लेट्स फिनिश व्हाट वी स्टार्टेड। सो व्हाट इफ यू वॉक इनटू अ रूम और आप देखते हो कि लोग एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बड़ी शिद्दत से बात कर रहे हैं, यू नो ऑल काइंड ऑफ करंट थिंग्स। हो सकता है कि टॉपिक हो कोई ट्रेंड के बारे में, कोई मूवी के बारे में, या किसी न्यूज़ इवेंट के बारे में, या कोई गेम के बारे में, यू नो, जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है और इसीलिए यू डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट। व्हाट इफ दैट रैम्पेंट टॉपिक, यू नो, जिस पे पूरी दुनिया पागल हो रही है, डजंट इंटरेस्ट यू एट ऑल? सपोज एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट क्रिप्टो करेंसी, जिसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है सीरियसली। किसी नए रियलिटी शो के बारे में बात चल रही हो, या फॉर दैट मैटर एज आई सेड फीफा के बारे में बात चल रही हो, जो आप बिल्कुल नहीं जानते एंड यू डोंट केयर अबाउट इट, विच इज फाइन, राइट? सबके अपने अपने अलग इंटरेस्ट होते हैं, जरूरी नहीं हर किसी को हर किसी चीज के पीछे दीवाना बनना पड़ेगा एट दैट टाइम, राइट? तो आप क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू जब ऐसा कुछ होता है सिचुएशन कि जहाँ भी जाते हो ये सारी टॉपिक्स हैं, इनमें से कोई एक टॉपिक पे लोग बहुत शिद्दत से बात कर रहे हैं, एंड यू नो योर पीपल कि जब भी आप जाओगे तो इन सब मामलों में बात होगी ही, तो आप क्या करते हो? क्या आप जाके गूगल पे थोड़ा सा रिसर्च मारने लगते हो ताकि यू कैन बी पार्ट ऑफ द कॉन्वर्सेशन, कि आप यू नो यू आर ओके टू नॉट टेक इंटरेस्ट इन इट एंड बी ए साइलेंट लिसनर इन दैट वन, विच कैन गेट अ लिटल बोरिंग अगर पूरा एक रूम फुल ऑफ पीपल इफ दे आर टॉकिंग अबाउट समथिंग वेरी पैशनेटली, एंड कितनी देर तक आप चुप रहोगे, सुनते रहोगे? लेकिन क्या करते हो, बेसिकली आई वॉन्ट टू नो क्या करते हो आप ऐसे सिचुएशन में कि अगर कुछ टॉपिक पे डिस्कशन हो रहा है विच डजंट इंटरेस्ट यू एट ऑल, व्हाट डू यू डू? दैट्स माई सिंपल क्वेश्चन टू यू। 972-235-5 नंबर इन द स्टूडियो।

0: कई बार एक ही होते हैं हमारे थॉट प्रोसेस और कभी कभी सुनना जरूरी होता है. तो मैंने वही टॉपिक जो छेड़ा था, गपशप गली है आफ्टर ऑल, तो गपशप की दुनिया में घुसते हैं. और मैं आपसे वही सवाल दोबारा पूछने वाली हूँ. आई हैव अंजू ऑन द एयरवेव्स ऑफ फनीशा रेडियो. आई थॉट लेट्स हैव हर ऑन एयर एंड गेट दिस थिंग सॉर्टेड वंस फॉर ऑल. कि भाई अगर एक डिस्कशन में आप हिस्सा नहीं ले पा रहे होते बिकॉज द पॉइंट ऑफ डिस्कशन डजंट इंटरेस्ट यू एट ऑल, लेकिन हो सकता है कि वो बड़ा एक इंपॉर्टेंट करंट न्यूज के बारे में हो या किसी ट्रेंड के बारे में हो, किसी मूवी के बारे में हो, कोई गेम के बारे में हो, जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है और कुछ समझ नहीं आता कि तब कैसे इस डिस्कशन का आप हिस्सा बनो. तो अंजू ने जो हमें कहा, आई थिंक आई एग्री विद हर. लेट्स हियर इट फ्रॉम यू अंजू. थैंक यू फॉर कॉलिंग.
1: यस, मेरा पॉइंट यही था कि जब आप अपने अपनों के साथ होते हो, चाहे वो दोस्त हो, परिवार हो, अगर कोई एक्साइटेड है तो आई थिंक द गुड आइडिया इज टू मैच योर एनर्जी विद देयर्स. वो एक्साइटेड हैं, हम इंटरेस्ट नहीं लिया तो इसका मतलब ये नहीं कि ले नहीं सकते, है ना?
0: बिल्कुल.
1: पहले कुछ पता नहीं था, अब सीख सकते हैं, समझ सकते हैं. तो आई ट्राई टू अंडरस्टैंड अ लिटिल बिट कि क्या चल रहा है. आ जाता है समझ में, नहीं आता, आई एडमिट कि भैया मुझे नहीं आता, तो आप थोड़ा बता दें.
0: हाँ जी.
1: तो ऐसा थोड़ा मिक्स एंड मैच करते करते
0: एक स्वीट स्पॉट ढूंढ के निकाला कि जहाँ पे किसी ने कुछ समझा दिया, कुछ ढूंढ लिया, एंड देन यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्वर्सेशन दैट इज हैपनिंग. भले आप उतने डीप डाइव भी ना करो, लेकिन दैट कॉन्वर्सेशन यू कैन बी सो पार्ट ऑफ आफ्टर दैट. या थैंक यू सो मच अंजू. आई एब्सोल्यूटली अग्री विथ यू. एंड दिस इज what I thought about when FIFA started. आज से कुछ साल पहले अगर आप मुझे FIFA के बारे में पूछते थे ना, शायद मुझे कुछ उतना इंटरेस्ट नहीं आता, क्योंकि जनरली स्पोर्ट्स में मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा कम है. लेकिन FIFA जो इतना एक ग्लोबल स्टेज पे इतना एक फायर की तरह, यू नो, यू सी इट अराउंड, दैट्स व्हेन आई डिसाइडेड टू टेक इंटरेस्ट इन इट. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली आई हैव फाउंड रियल इंटरेस्ट इन इट. एंड देयरफॉर द लास्ट सेगमेंट इज अ डेडिकेटेड FIFA सेगमेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, कि अगर आपको बहुत कुछ ना भी पता हो, थोड़ा बहुत पता चल जाएगा. एंड दैट्स इनफ टू स्टे इन द ट्रेंड ऑफ FIFA, लेडीज एंड जेंटलमैन. वंस अगेन यू आर ट्यून इन टू गपशप गली विथ मी टू. ये गाना विशाल शेखर का कॉम्पोजिशन, और इस गाने के बाद एक विशाल शेखर से रिलेटेड क्वेश्चन. आफ्टर ऑल 12th जुलाई को जो कर्टिस कलविल सेंटर में जो कॉन्सर्ट होने वाला है, उसका जो एक बड़ा गिव अवे है हमारे पास कॉन्सर्ट टिकट का, वो तो भाई ढिंडोरा पीट के ही देना पड़ेगा ना. 972-235-5555. गेट रेडी फॉर दैट.

0: Vishal Shekhar's composition there, ladies and gentlemen, and can't be more excited to tell you all ki Vishal Shekhar ka ek giveaway hai mere paas. Pichle hafte humne kiya aur is hafte bhi it is going to continue. Vishal Shekhar will be live in concert this Sunday, ladies and gentlemen, Curtis Colville Center in Garland. That's the venue for all of you. Aur jo ticket nahi jeet paate hain unke liye main pehle bata dun bhai ki cashpatelproductions.com is the website, and for all of you to also remember that Phanisha is the code that you must remember. Agar aapko 30% discount chahiye, agar nahi chahiye to mat kijiyega, that's fine, but agar chahiye to zarur Phanisha code use kijiyega. Aur filhal studio ka number use kijiye to give me that call to answer the question on Vishal Shekhar. Ab wo hai na ki kya kehte hain ki bhagwan jab deta hai kisi ko to chhappad phad ke deta hai. That is what exactly I feel for this duo, Vishal Dadlani and Shekhar Ravjiani, ki matlab sochiye aap ki music to कंपोज करती हैं, दोनों बढ़िया गाना भी गाते हैं, दोनों लिरिक्स भी लिखते हैं, यू नो दैट ट्राइफैक्टा दैट दे हैव, ये कमाल की बात है. इसीलिए तो कह रही हूँ कि भगवान जब किसी को देता है ना तो छप्पड़ फाड़ के देता है. तो ऐसा एक दोस्ती का गाना मुझे बताएं जो विशाल शेखर ने कंपोज भी किया, लिखा भी और गाया भी. इफ यू कैन टेल मी देन गिव मी अ कॉल एट 9722355555. वेल समबडी वॉज रियली कॉन्फिडेंट, इसलिए तुरंत कॉल कर दिया मुझे ऐसा लगता है. एंड आई एम सो रेडी टू टेक यू ऑन एयर एंड फाइंड आउट इफ यू हैव द राइट आंसर टू माई क्वेश्चन. जी हाँ बताइए.
1: हेलो,
0: हाई, यू आर लाइव ऑन एयर, व्हाट्स योर नेम?
1: माय नेम इज सुनील.
0: हाँ जी सुनील जी, बताइए, व्हाट डू यू थिंक द आंसर इज? वो गाना जिस जो दोस्ती का है, एक एंथम ही समझ सकते हो दोस्ती का है वो, और विशाल शेखर ने कंपोज भी किया, लिरिक्स भी लिखा और गाया भी विशाल दादलानी ने. टेल मी व्हिच सॉन्ग.
1: आई थिंक इट्स जाने क्यों फ्रॉम मूवी दोस्ताना.
0: ओ माय गुडनेस, मैंने नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी मुझे इसका जवाब मिल सकता है, बट हैट्स ऑफ टू यू. आई गेस वील सी यू एट द कॉन्सर्ट. ये टिकट
1: आपके नाम किया.
0: Thank you.
1: Thanks a lot.
0: Really appreciate. Kya fatafat jawab tha yaar. Manna padega. We have some amazing fans in Dallas jo shamil honge is concert mein. Totally looking forward to it. To aap ye gana suno, Jaane Kyu from Dostana. Main Sunil ji ko ticket dekar aati hu. Do free tickets, ladies and gentlemen.

Well, कल का राउंड ऑफ 16 एक्शन जो कल से शुरू हुआ वॉज एब्सोल्युटली सिनेमैटिक ड्रामा फॉर श्योर, पैक्ड विद मैसिव अपसेट्स एंड क्रेजी अनएक्सपेक्टेड माइलस्टोन्स. तो पहले तो नॉर्वे ने पूरे वर्ल्ड को पूरी तरह से शॉक कर दिया बाय नॉकिंग आउट ब्राजील 2-1. और अर्लिंग हालैंड जो कि स्टार हैं आज के ज़माने के इन फीफा, उन्होंने एक बार फिर प्रूव कर दिया कि वाई ही इज ए लीथल वेपन ऑन द पिच. वी कांट एग्री मोर टू दैट, राइट. मीनवाइल हिस्टोरिक एस्टेका स्टेडियम में इन मेक्सिको सिटी 10 मैन इंग्लैंड ने एक लिटरल स्टॉर्म सर्वाइव किया टू एज आउट को होस्ट मेक्सिको 3-2 एंड एट दैट वॉज एन अनबिलीवेबल मैच. बेलिंघम तो यू नो फुल सुपरस्टार मोड में थे ही, स्कोरिंग 2 लाइटनिंग फास्ट गोल्स जस्ट 98 सेकेंड्स के गैप में. इट वॉज अ नाइट ऑफ प्योर फुटबॉल मैडनेस, इसमें कोई शक नहीं है. और अब अपकमिंग जो हमारे मैचेस हैं उसमें पता चलेगा कि आगे क्या होना है. बट इट वॉज क्वाइट अ सरप्राइज एंड द स्टेडियम वॉज ऑल क्वाइट जब मेक्सिको हारी. ये अनबिलीवेबल था सीरियसली, एंड इट वॉज सो सैड टू सी दोज फेसेस, फैन फेसेस, मेक्सिको फैन फेसेस. वो क्लोजअप्स काफ़ी सारे दिखाए जा रहे थे एंड एवरीबडी हैड टियरी आईज. इट वॉज इंडीड अ वेरी सैड डे फॉर यू नो टीम मेक्सिको एंड द फैंस ऑफ टीम मेक्सिको. एंड एस्टेका अपने आप में एक लैंडमार्क जगह है. इट इज़ द ओनली स्टेडियम इन हिस्ट्री टू होस्ट 2 मेंस वर्ल्ड कप फाइनल्स. इट इज़ द एग्जैक्ट पिच वेयर पेले ने अपना 3rd वर्ल्ड कप 1970 में जीता था और मैराडोना ने स्कोर किया था वो कॉन्ट्रोवर्शियल हैंड ऑफ गॉड गोल इन 1986. एंड दैट वॉज अ बिट ऑफ अपडेट फ्रॉम येस्टरडे. आज जो गेम्स होने वाले हैं उसके बारे में बताते हैं राइट आफ्टर दिस सॉन्ग. दिस इज गपशप गली विथ मी टू एंड दिस इज ए डेडिकेटेड फीफा सेगमेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन.

राउंड ऑफ 16 का डे 2 स्पेन एंड पोर्टुगल विल बी इन लॉगरहेड्स इन आवर ओन डैलस स्टेडियम. लेडीज एंड जेंटलमैन, स्पेन एंड पोर्टुगल आप जानते ही होंगे कि भाई एक यूरोपियन लैंडमार्क को शेयर करती हैं, एंड दैट इज आइबेरियन पेनिनसुला. एंड बिकॉज दे आर नेबर्स, द फुटबॉल राइवलरी बिटवीन देम इज देयरफॉर बीइंग कॉल्ड आइबेरियन डर्बी. स्पेन और पोर्टुगल ने न सिर्फ एक बॉर्डर वो शेयर करते हैं, बल्कि उनकी हिस्ट्री ऑफ फियर्स कॉम्पिटिशन बहुत लंबी है, डेटिंग ऑल द वे बैक टू 1921. बाय द वे, वर्ल्ड कप में सरप्राइजेस तो होते रहते हैं, बट टुडेज राउंड ऑफ 16 क्लैश इज ए कोलिजन ऑफ दीज वेरी फेमिलियर फोर्स, एंड दैट्स पोर्टुगल एंड स्पेन. लेडीज एंड जेंटलमैन, 2 बजे स्टार्ट होगा एंड ये उनका हिस्टोरिक 42nd मीटिंग होगा, यानी कि ये बैटल कह सकते हैं इसे एक्चुअली. वैसे तो इस फीफा टूर्नामेंट में नीदर साइड हैज बीन फ्लॉलेस, दोनों ही अंडरडॉग्स के अगेंस्ट ओपनिंग ड्रॉज में स्टंबल उन्होंने किया है, बट मेक नो मिस्टेक्स रियली, दोनों टीम्स के पास ट्रॉफी लिफ्ट करने की पूरी पूरी पोटेंशियल है. आज के मैच के लिए स्पेन फेवरेट जरूर हो सकते हैं, बट पोर्टुगल स्टिल पोजेसेस अ डेविस्टेटिंग आर्सेनल ऑफ वेपन्स जो किसी भी वक्त गेम को बदल सकती है. सो टू जायंट्स वन स्टेडियम, एंड दैट्स डैलस स्टेडियम. लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी एक्साइटेड फॉर दिस मैच जो 2 बजे होने वाला है, एंड वी विल सी व्हाट हैपेंस ऑफ this one. And yes, Ronaldo fans, gear up to see him in action, and you do not want to miss that, because this is definitely his last World Cup that you are going to see. तो बिल्कुल शिद्दत से देखें, प्यार से देखें, डूब के देखें आज का मैच between Portugal and Spain. 7 बजे शाम को जो मैच है उसके बारे में भी विस्तार से बताएंगे right after this song. This is Gupshup Gully with me too.

0: wishing you know, Ranveer Singh a very, very happy birthday today, and our listener Pushpa Patel also a very happy birthday. That's all the time I have. This is RJ Me Too signing off.
1: अरे अरे अरे, डैलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades. कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
2: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, Shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration of Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
3: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
4: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
3: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
4: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
1: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कॉम्पिटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
5: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
1: Are you tired of the same arguments, reactions, and emotional struggles? Maybe it's time to change the pattern. Aarti Vedula, a certified and accredited coach, has helped couples, parents, and individuals break free using NLP, EFT, hypnosis, time techniques, and somatic mind-body connection. Call 269-281-1099 or visit thrivewitharti.com to book your free clarity call today. Mention Fun Asia and receive 50% off your package. Thrive with Aarti, helping you thrive from within.
6: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
7: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com, your 360 insurance solution.
8: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग। फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी। फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस। फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव।
9: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को। विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-1099.
10: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.

A very good afternoon to you, my प्यारे प्यारे listeners. आप सुन रहे हैं Fun Asia Radio 104.9 FM और मैं हूँ आरजी सिमी with your favorite show, The Afternoon Adda. स्वागत है आप सबका इस special Monday में. I mean, अब आप पूछेंगे कि Monday में क्या special है भाई? तो ये तीन दिन की छुट्टी के बाद वाला Monday है. I mean, जब long weekend के बाद वाला Monday ने में reality ने फिर से gently नहीं फुल स्पीड में नॉक किया है. लेकिन एक बात तो पक्की है कि लॉन्ग वीकेंड का सबसे अच्छा पार्ट होता है उसमें की गई वो एक दो यादें, एक दो इंटरेस्टिंग चीजें जो पूरे हफ्ते का मूड सेट कर देती हैं. तो आज का पूरा शो है उन सब लिसनर्स के नाम जिन्होंने अपने लॉन्ग वीकेंड में कुछ ना कुछ जबरदस्त किया है, इंटरेस्टिंग किया है. और हम जानना चाहते हैं आप लोगों से कि भाई लॉन्ग वीकेंड में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या की है आपने. आपको कॉल करके बताना है हमें 9722355555.

के लिए प्ले किया है और आज हम बात कर रहे हैं लॉन्ग वीकेंड के मेमोरीज, उनकी यादों के बारे में कि क्या किया इंटरेस्टिंग जबरदस्त। और हमें कॉल आया ऋषि जी का, जिन्होंने बताया कि वो अपनी फैमिली के साथ उन्होंने प्लान किया था कोलोराडो जाने का, लेकिन होटल में उनको बीच में फोन आया कि यू नो देयर इज अ फॉरेस्ट फायर एंड ही शुड अवॉइड कमिंग टू कोलोराडो। लेकिन वो जो नियर बाई वहां जहां पे थे वो अमरीलो के पास थे और वहां पे उन्होंने एक्सप्लोर किया, वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था उनके लिए। वो सजेस्ट कर है कि कैनियन जाना चाहिए ड्राइव करके, और नो इट्स रियली फन, और स्प्रे पेंटिंग भी है अगर आप किड्स वगैरह को ले जाके वहां पे आर्टिफैक्ट्स वगैरह का अच्छा कलेक्शन है वहां पे जाना चाहें तो भी जा सकते हैं। आई मीन ये जो लॉन्ग वीकेंड होता है ना, ये सिर्फ छुट्टी नहीं होती, वो बहुत लंबे टाइम की प्लानिंग के बाद एग्जीक्यूट होती है, तब जाके एक मेमोरी बनती है। कभी फैमिली के साथ हंसी, कभी दोस्तों के साथ मस्ती, कभी अकेला टाइम, और कभी बस एक कप चाय के साथ सुकून। आपका लॉन्ग वीकेंड कैसा था? आपने क्या किया? क्या आपने अपनी नींद कंप्लीट की या फिर अपनी फेवरेट डिश बनाई, किसी पुराने दोस्त को कॉल किया, उनको याद किया, घर की सफाई की, या फिर कोई फोटो या रील बनाई जो अभी तक गैलरी में पड़ी है? हमारे साथ शेयर कीजिए बाय कॉलिंग अस एट 972-235-5555।

आजकल इंटरनेट पे दो ही सॉन्ग काफी ट्रेंडिंग चल रहे हैं, एक है माशुका और एक है मस्कारा, लाइक किस मिस यार ले मस्कारा। एंड दोनों ही सॉन्ग हमने आप

आज हम बात कर रहे हैं लॉन्ग वीकेंड के बारे में कि कैसा रहा, किसने क्या इंटरेस्टिंग किया। और अभी अभी हमें कॉल आया हरमन जी का, जिन्होंने बताया कि वो अपनी फैमिली से मिलने वॉशिंगटन डीसी गए थे एंड इट वॉज 4th of July, 250th इंडिपेंडेंस डे था, तो सेलिब्रेशंस हो रही थी हर जगह, ऑल द डे लॉन्ग कुछ न कुछ हो रहा था। और जो मिडनाइट फायरवर्क्स थे जो यूजुअली 20 मिनट्स के होते हैं, वो 40 मिनट्स चला। और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें ने देखी, और क्योंकि वॉशिंगटन डीसी है भाई, कैपिटल है, तो इंटरेस्टिंग तो होगा ही। बहुत सारे लिसनर्स का कॉल आया, उन्होंने अपने अपने फायरवर्क्स एक्सपीरियंस के बारे में बताया कि यू नो ऐसा था वैसा था, इट्स वन ऑफ अ काइंड डेफिनेटली, मतलब मैंने खुद इंजॉय किया है। और आई वुड रियली रिकमेंड कि अगर अगले साल आपको चांस मिले तो ज़रूर जाइए, बहुत ही सुंदर होता है। कुछ लोग कार रिपेयर के लिए भी गए, यू नो लॉन्ग पेंडिंग आइटम लिस्ट की भाई कब जाएंगे, और फाइनली उन्हें वो लॉन्ग वीकेंड मिल ही गया। कुछ लोगों ने सुकून से चाय पी और इन्जॉय किया। और अब जब हम मंडे में आ चुके हैं और यू नो अब इसको झेलना ही है, तो कोई बात नहीं, हंसते मुस्कुराते रहिए, कोई बात नहीं, मंडे तो आता रहता है, खुशी और हंसी नहीं रुकनी चाहिए।

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: सुनो, शादी के लिए ज्वेलरी भी देखनी है।
3: हाँ, देख लेंगे।
2: तो फिर इंडिया की टिकट कब करवाएं?
3: अरे, तुम्हें ज्वेलरी देखनी है या रिश्तेदारों को?
4: वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड ज्वेलर्स विद ओवर 40 स्टोर्स इन इंडिया इज नाउ इन डैलस। PMJ Jewels, वही टाइमलेस क्राफ्ट्समैनशिप, वही अनमैच्ड एलिगेंस और वही स्टनिंग ब्राइडल कलेक्शंस, नाउ ऑन मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को। PMJ Jewels, इंडियाज फाइनेस्ट, डैलसिस न्यूएस्ट।
5: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
6: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery। ऑनेस्टली, ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
7: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
8: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
9: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
8: Kya matlab?
9: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
8: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
9: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
8: Ab to karna hi padega, madam.
10: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
11: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
12: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
13: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
14: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य। एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेस्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम। 9191 काइजरवे, सुइट 205, फ्रिस्को।
15: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया, ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
16: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
15: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
16: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
15: ये क्या होता है?
16: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
17: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
18: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 doors डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन available.
19: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
12: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
20: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30 PM onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
21: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Fun Asia Radio.

हुजूर, वैसे मैं भी हूँ आदत से मजबूर, हर मंडे टू थर्सडे अपना मुंह उठा के लेके आ जाती हूँ 12:30 से 2:30 बजे तक फॉर दिस ब्यूटीफुल शो द आफ्टरनून अड्डा। आप सुन रहे हैं फनेशर रेडियो 104.9 FM। और ये जो सॉन्ग है आदत से मजबूर, इसके जो लीड एक्टर हैं रणवीर सिंह, आज उनका बर्थडे है, तो ऑन बिहाफ ऑफ फनेशर एंड आर लिसनर्स वी आर विशिंग हिम अ वेरी हैप्पी बर्थडे। और जो नेक्स्ट गिव अवे है वो भी उनको डेडिकेट किया हुआ है। आपको मैं एक सवाल पूछूंगी, आपको जवाब देना है, देखते हैं आप रणवीर सिंह को कितना अच्छा जानते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस सवाल का जवाब देते हैं तो आपको मिलता है नियॉन कैक्टस की तरफ से $20 का गिफ्ट कार्ड, जो कि वैलिड है 30 डेज के लिए ऑन द डाइनिंग ऑप्शन। तो तैयार हो जाइए। सवाल ये है कि रणवीर सिंह और उनकी वाइफ दीपिका पादुकोण ने जिन मूवीज में काम किया है, आपको मुझे उन मूवीज के नाम बताने हैं। यू हैव टू लिस्ट 3 मूवीज जहां पे कि रणवीर सिंह और दीपिका ने साथ में काम किया है। वो उनकी शादी के पहले की भी हो सकती हैं, बाद की भी हो सकती हैं। अगर स्पेशल अपीयरेंस आपको याद है तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। आपको मुझे कॉल करना है 972-235-5555 पे।

काफी गहरे फैंस हैं रणवीर सिंह के. आई मीन आई गॉट सो मेनी कॉल्स और बहुत लोगों ने सही जवाब दिया और काफी जल्दी, मतलब एकदम जो उनकी जुबान पे था जैसे सारी मूवीज के नाम. हमने आपसे पूछा था कि वो कौन सी मूवीज हैं जहां पे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण ने साथ में काम किया है, और ऐसे कुछ मूवीज के नाम है रामलीला, पद्मावत, बाजीराव मस्तानी, 83, फाइंडिंग फैनी और सर्कस में कुछ कैमियो रोल्स थे. लेकिन सबसे पहले जो आज हमें जवाब मिला है वो कल्पना जी से मिला है. तो आज की हमारी विनर है कल्पना चावला. कॉन्ग्रेचुलेशंस. नहीं नहीं, ये वो वाली कल्पना चावला नहीं, हमारी डालस की कल्पना चावला है. आपको मिला है नियॉन कैक्टस की तरफ से $20 का गिफ्ट कार्ड. और बाकी लिसनर्स, अगर आपको गिफ्ट कार्ड नहीं मिला है तो भी कोई बात नहीं, आप ऐसे भी नियॉन कैक्टस जा सकते हैं क्योंकि उसका एक्सपीरियंस इतना अच्छा है कि मैं क्या बताऊं. यहां पे मैक्सिकन फ्यूजन काफी अच्छा मिलता है, बहुत सारे वेजिटेरियन चॉइसेस भी हैं. अगर आप वेजिटेरियन हैं तो फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज करते हैं, जब भी हलाल ऑप्शंस भी हैं, सब कुछ आपको मिलेगा बोल्ड फ्लेवर में. और वाइब की तो बात ही मत कीजिए, वाइब इज यंग, कलरफुल, मॉडर्न, फुल ऑफ एनर्जी. ये परफेक्ट प्लेस है अगर आपको हैंग आउट्स के लिए जाना है, डेट नाइट्स के लिए जाना है, या फिर आप अगला चिल प्लान बना रहे हैं. एक लॉन्ग वीकेंड खत्म हो गया, कोई बात नहीं, अगले सैटरडे संडे को अगर आप कहीं घूमना है जाना है तो आप यहां जरूर जाए. और यहाँ पे ना हैप्पी आवर्स भी होते हैं मंडे टू फ्राइडे, और आप जरूर एक बार चेक कर लें क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल डील्स चलते रहते हैं किसी स्पेशल डिश के ऊपर. तो अगर आप जाए तो आप चेक कर लें कि भाई आज का स्पेशल क्या है. फिलहाल आज के स्पेशल हमारे लिए तो रणवीर सिंह है, और फ्रॉम हिज सम ऑफ द इनिशियल मूवीज में कुछ अमेजिंग ट्रैक्स बजाने जा रही हूँ. आई होप यू लाइक इट.

अगर आप भी ऐसे ही दम दम दम मस्त ज्वेलरी ढूंढ रहे हैं तो मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड जरूर जाएं, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा फ्रॉम ब्यूटीफुल रिंग्स एंड ईयर रिंग्स लेके डैजलिंग नेकलेसेस एंड कंटेम्प्रेरी डायमंड स्टाइल्स। यहाँ आपको मिलेगा अपना परफेक्ट पीस एंगेजमेंट्स के लिए, एनिवर्सरीज के लिए, सेलिब्रेशंस के लिए, या फिर अगर आप खुद को ट्रीट करना चाहते हैं तो भी आप मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड जरूर जाएं, जो कि प्रेस्टन रोड में लोकेटेड है फ्रिस्को में। और भूलिएगा नहीं, आप इसका ऐप डाउनलोड करके भी देख सकते हैं कि क्या नए कलेक्शंस आए हैं। सो डू डाउनलोड द मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड्स मोबाइल ऐप फॉर देयर लेटेस्ट कलेक्शंस, अपडेट्स एंड मेनी मोर डिटेल्स।

देखिए भाई, हमें खुदा का पता तो नहीं पता, लेकिन अगर आप एक स्मार्ट फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी बिल्ड करना चाहते हैं, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल स्टेट अपॉर्चुनिटीज या फिर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान करना चाहते हैं, तो माय टाइम इक्विटी का पता मुझे जरूर पता है। इट्स लेड बाय सीपीए सुधीर पाई। अगर आप अपना लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लान कर रहे हैं, रिटायरमेंट ऑप्शंस देख रहे हैं या फिर अपने इन्वेस्टमेंट्स को इम्प्रूव या बूस्ट करना चाहते हैं, देन माय टाइम इक्विटी इज डेफिनेटली अ परफेक्ट स्पॉट फॉर यू। और आप इनको कंसल्ट कर सकते हैं बाय कॉलिंग देम एट 4697021272, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, विच इज mytimeequity.com।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
4: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून,
3: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन। द फ्लेवर लाउंज,
4: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
5: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
6: लिया।
5: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
6: नहीं आया।
5: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-772. That's 972-863-772.
7: Visit www.sanadainc.com today.
8: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन, थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 or visit astrologerishwar.com.
9: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
10: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
11: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
12: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
13: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
12: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
14: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
15: Aaj hi sunte ho, soch rahi thi bete ki shaadi India mein kare?
16: India mein? तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं, वो कैसे अटेंड करेंगे?
15: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
16: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
15: सच में सब संभालेंगे?
16: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट, दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
12: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
17: I'm Rahat Fateh Ali Khan and you are listening Radio Fun Asia.

आप सुन रहे हैं फनेशियर रेडियो 104.9 एफएम और मैं हूँ आरजे सिमी विद योर फेवरेट शो द आफ्टरनून अड्डा। और वक्त आ गया है एक स्पेशल सेगमेंट का। एक फोन कॉल पे हम एक स्पेशल गेस्ट को लेने वाले हैं, लेकिन इस सॉन्ग के बाद तो बने रहिए हमारे साथ।

0: You were listening to नीचे पान की दुकान ऊपर गोरी का मकान from the movie ओ रोमियो. और जैसा कि मैंने आपको इस सॉन्ग के पहले बताया कि हमारे साथ एक काफी स्पेशल गेस्ट हैं, मिस्टर अमन फ्रॉम उरा डेट रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, हु विल टेल यू अबाउट हिज प्रोग्राम्स. हाय अमन, वेलकम टू द स्टेशन.
1: जी बहुत बहुत शुक्रिया. नया मंथ शुरू हो चुका है, सहाल तो नहीं, पूरा साल आधा गुजर चुका है, तो सेवेंथ मंथ यानी कि ऑलमोस्ट हम सेकंड हाफ में प्रवेश कर चुके हैं. तो अमन और उरा की तरफ से नमस्कार. सो जुलाई की 6 तारीख है, तो इस महीने वो गलती प्लीज मत कीजिएगा जो पिछले महीने या उससे पिछले महीने या उससे पिछले महीने आपने की थी. वो क्या कि क्रेडिट कार्ड की मिनिमम पेमेंट दी थी. अगर आप आज बैठकर आराम से सोचें कि क्रेडिट कार्ड मिनिमम पेमेंट से पिछले 3 या 6 महीनों में उतरा है, हिला भी है, अगर नहीं उसका जवाब है, तो आप कॉल कीजिए उरा को. उरा आपके क्रेडिट कार्ड्स, 10 कार्ड्स हैं, 20 कार्ड हैं, 100 क्रेडिट कार्ड्स हैं, उन सब की एक पेमेंट बना देगा. आधा क्रेडिट कार्ड का कर्जा माफ हो जाएगा, यानी कि आधे से ज्यादा कर्जा अगर आपने माफ करवाना है तो उरा को कॉल कीजिए, माफ हो जाएगा, यानी आपको नहीं देना होगा. जो बाकी आधा बचेगा उसकी आसान सी किस्तें बना दी जाएंगी. और अगर इसके साथ साथ क्रेडिट कार्ड के साथ कोई पर्सनल लोन भी आपके पास है जो मिनिमम पेमेंट से आप उतारने की कोशिश कर रहे हैं, या कोई गाड़ी का लोन जो रीपोजेस हो चुकी है या टोटल हो चुकी है लेकिन लोन स्टिल आपके सर पर है, इस तरह के लोन्स को आप मिनिमम पेमेंट से सिर्फ टाइम पास कर सकते हैं, डेट उतार नहीं सकते. और आप अपने मेहनत की कमाई को हाई इंटरेस्ट के साथ उनको कमा कमा के हर महीने दे रहे हैं. यही गलत फहमी में कि चलो यार अगले महीने देखेंगे, बजट वही रहता है आपका, बिजली का, पानी का, मॉर्गेज का, ग्रोसरीज का, वो सारे खर्चे वही रहेंगे. तो अगले महीने अगर कोई लॉटरी लगने वाली है तो बहुत बढ़िया, मुझे भी बताइए, लेकिन अगर नहीं निकलने वाली है तो डेट सेटलमेंट इज द बेस्ट एंड द इजिएस्ट वे, क्योंकि ये बैंक्रप्सी नहीं है. कॉल कीजिए उरा को, हमारा टोल फ्री नंबर लीजिए 1-888-888-9914, 1-888-888-9914. या फिर आप मुझसे अगर बात करना चाहते हैं, एनी टाइम कॉल मी, हिंदी, पंजाबी, उर्दू, अंग्रेजी, व्हाट्सएप कीजिए, टेक्स्ट कीजिए, मेरा डायरेक्ट नंबर लीजिए 9167763555, 9167763555, 9167763555. हमारी वेबसाइट है www.ura.org, लेकिन नंबर ना भी लिख

0: नंबर ना भी लिख पाए हों तो फन एशिया का नंबर आपके दिल पर छपा हुआ है, कॉल कीजिए और सीधा हमारा नंबर ले लीजिए और एक अच्छे से गाने की फरमाइश भी कर लीजिए। तो कॉल कीजिए मिनिमम पेमेंट करने से पहले, ताकि आप आधे से ज्यादा कर्जा माफ करवा सकें।
1: जी हाँ दोस्तों, अपने जो कर्जों और किश्तों की जो टेंशन है ना, अब वो अमन और उरा के नाम कर दीजिए। थैंक यू सो मच
0: जी
1: अमन, इट वॉज प्लेजर हैविंग यू, हैव अ गुड डे।
0: थैंक यू।
1: और अब हम चलेंगे अगले गाने की ओर, और बहुत सारी चीजें भी बाकी हैं, कुछ गिव अवेज भी हैं, सो स्टे ट्यून्ड गाइस।

देखिए भाई, और मुश्किलों का तो मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपकी मुश्किल ये है कि आपको रेस्टोरेंट ऑप्शंस में से चूज करना है, तो मैं आपकी मदद कर सकती हूँ और सजेस्ट कर सकती हूँ कि आप पेज 3 ईटरी जरूर जाएं। यहाँ आपको मिलेगा सिजलिंग कबाब से लेके फ्लेवर फूड चार तक। और अगर अभी तक आपने पेज 3 ईटरी, जो कि लोकेटेड है एट हब 121, एक्सप्लोर नहीं किया है, तो आप सीरियसली कुछ मिस कर रहे हैं लाइफ में। आई मीन यहाँ का जो खाना होता है ना, वो एकदम परफेक्ट मिक्स होता है फ्लेवर का, वाइब भी बहुत अच्छी है, पूरी वाइब्रेंट वाइब्स है, एनर्जेटिक है, और भी बहुत ही अमेजिंग मेन्यू है इनके पास खाने के ऑप्शंस के लिए। आप यहाँ पे ब्रंच के लिए जा सकते हैं, लंच के लिए जा सकते हैं, डिनर के लिए जा सकते हैं, या फिर डेट नाइट के लिए भी जा सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी हो। और अगर आपको मेन्यू ऑप्शन, जैसे कि मैंने बताया कि काफी अमेजिंग कलेक्शन है, तो अगर आपको एक्सप्लोर

अब मैं आपको पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर के बारे में बताना चाहती हूँ, जहाँ आपको जो है डॉक्टर्स 5-10 मिनट से ज़्यादा, आई मीन पूरे के पूरे 30 मिनट्स का टाइम देते हैं वो पेशेंट्स को, क्योंकि उनका मानना है कि किसी के हेल्थ के बारे में, उनकी पूरी हिस्टोरिकल हेल्थ के बारे में जानने के लिए वक्त लगता है, ताकि ऐसा ना हो कि आप हॉस्पिटल से निकलने के बाद सोचे कि अरे डॉक्टर को ये बताना तो भूल ही गया. तो ये बिल्कुल नहीं होगा यहाँ पे, बिकॉज दे गिव लॉट ऑफ टाइम टू देयर पेशेंट. और आप अगर अपना एनुअल एनुअल चेकअप कराना चाह रहे हैं, जो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव चेकअप होता है वो कराना चाह रहे हैं, एंग्जाइटी केयर चाहिए, फाइब्रो स्कैन भी होता है यहाँ पे, अल्कोहल रिलेटेड लिवर कंसर्न्स अगर आपको हैं, विटामिन B12 डेफिशिएंसी की भी टेस्टिंग होती है, और बहुत कुछ है. एट पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर आप अपना अपॉइंटमेंट स्केड्यूल कर सकते हैं, और ऐसा करने के लिए आप कॉल कर सकते हैं 214-666-6259. आई विल रिपीट द नंबर, इट्स 214-666-6259. तो आप जरूर जाएं पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर और एक चेकअप जरूर करा ले, अगर एनुअल चेकअप कराना चाहे तो दिस इज रियली अ गुड स्पॉट फॉर यू.

0: is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है।
3: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना उससे भी मुश्किल है। एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे।
4: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख।
5: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. आज बुखार, आज डॉक्टर, आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर, आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर, प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम। Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
3: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
6: बेटा, 95% आए?
7: हाँ मम्मी।
6: गुड, अब चलिए पापा, आप अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाइए।
8: मेरा?
6: हाँ। प्रॉफिट मार्जिन, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस गोल्स, सारे अकाउंट्स अपडेटेड।
8: वो
5: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने। AG FinTax helps you understand profitability, cash flow, tax planning, business growth through bookkeeping and CFO services. Visit agfintax.com. Call 972-618-8555. AG FinTax led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
9: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
10: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship, and access to top-rated products like annuities, term life, whole life, and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
11: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
12: Documents या parcel भेजनी है?
13: हाँ.
12: घर relocate करनी है?
13: हाँ.
12: गाड़ी भी transport करना है?
13: हाँ भाई हाँ.
12: तो फिर tension क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को call कर.
14: Documents shipping, boxes shipping, complete door-to-door relocation, auto transport. सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में trusted shipping और moving services. SFL Worldwide. Our move ka perfect solution. Visit sflworldwide.com or call 1-800-691-2335.
15: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
16: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Oh, Omar Khwaja.
17: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल. कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
18: Hi, this is Priyanka Chopra and you're listening to Fun Asia Radio.

मैं भी अपने सारे लिसनर्स को यही बोलना चाहती हूँ कि स्वैग से स्वागत है आपका। मैं हूँ आरजे सिमी और आप सुन रहे हैं फाइनेंशियल रेडियो 104.9 एफएम। और जो इस गाने के पीछे जो अमेजिंग वॉइसेस हैं, जो आर्टिस्ट हैं, विशाल एंड शेखर, आपको भी मौका मिलेगा कि आप उनका भी स्वैग से स्वागत कर सकते हैं। जी हाँ, वो डालस आ रहे हैं ऑन संडे जुलाई 12th एट कर्टिस कलवेल सेंटर इन गार्लैंड। अगर आपने अभी तक टिकट्स नहीं खरीदी है तो जाइए काश पटेल productions.com पे जाइए। और अगर आपको 30% एडिशनल डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारा कोड यूज कर सकते हैं विच इज फन एशिया। और बिल्कुल तैयार हो जाइए अमेजिंग सुपरहिट टूर का फ्रॉम विशाल एंड शेखर। और अभी वक्त आ गया है हमारे दूसरे गिव अवे राउंड का, तो उसके लिए भी तैयार हो जाइए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आपको जवाब पता है तो आप मुझे कॉल करके बताइए और आप जीत सकते हैं $10 ऑफ ऑन डाइन इन ऑप्शन फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स। जी हाँ, और सवाल बहुत ईजी सा है कि मैं एक सॉन्ग बजाने जा रही हूँ और आपको बताना है कि जो इसमें चार एक्टर और दो एक्टर और दो एक्ट्रेस हैं, आपको इन चारों लोगों के नाम बताना है मुझे बट कॉलिंग मी एट 972-235-5555 पे। और मैं इंतज़ार करूँगी, बस गाना अभी बजने ही वाला है।

हमें हमें अपना जो गिव अवे राउंड है उसका विनर मिल चुका है। ये राउंड जीता है अमित ने, कॉन्ग्रेचुलेशंस अमित। और आप भी जूम बराबर जूम कर सकते हैं क्योंकि आपको मिला है चंडीगढ़ बाइट से $10 ऑफ। यहाँ आप जाएं और यहाँ की जो अमेजिंग स्पेशल थाली होती है ना उसका लुत्फ जरूर उठाएं। वैसे बाकी लिसनर्स कोई बात नहीं, अगर आप जीत नहीं पाए तो भी आप जा सकते हैं क्योंकि मंडे टू फ्राइडे इनकी डिशेज जो है रोटेट होती रहती है लंच के टाइम पे, तो आप जरूर जाएं। एट ये लोकेटेड है मैकडरमट ड्राइव इन एलन में। और अगर आपको किसी तरह की और जानकारी चाहिए रिगार्डिंग देयर ओपनिंग क्लोजिंग आवर्स या फिर मेन्यू तो आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं डिटेल्स के लिए, विच इज चंडीगढ़ बाइट्स .com।

वैसे अगर आप बिजनेस ओनर हैं और आपके पास एक कमर्शियल एनर्जी सॉल्यूशन नहीं है प्रॉपर, तो आपका बिजनेस भी डिंग डांग ना डोले, इसके लिए आप तारा कमर्शियल एनर्जी की तरफ रुख कीजिए, उनसे कंसल्ट कीजिए, क्योंकि उनके रेट्स कॉम्पिटेटिव हैं, उनकी सर्विसेज काफ़ी रिलायबल हैं और जो इनके एनर्जी प्लान्स हैं वो भी कस्टमाइज हैं। अगर आप उनको रीच आउट करना चाहते हैं तो आप उन्हें कॉल कर सकते हैं 8444-428-2808, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जाके उनसे कंसल्ट कर सकते हैं, विच इज ताराएनर्जी.com।

विद दिस हमारा शो जो है अब खत्म हो चुका है. आप सुन रहे थे मुझे यानी आरजे सिमी को, और शो था द आफ्टरनून अड्डा. और बाकी अमेजिंग सॉन्ग्स वगैरह के लिए आप बने रहिए स्टे ट्यून टू फन एशिया रेडियो. वैसे जाते जाते मैं बता दूं कि ये जो आफ्टरनून अड्डा शो था, दिस वॉज ब्रॉट टू यू बाई एजी फिनटेक्स, जो कि है वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग टैक्स फर्म इन द US. ये आपको इनोवेटिव फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं. और अगर आपको लगता है ना कभी कभी कि आपके जो एग्जिस्टिंग प्लान्स हैं आपके इंडिविजुअल्स के लिए या फिर बिजनेसेस के लिए जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है, इसमें बहुत कुछ पोटेंशियल है जो अभी तक टैप नहीं की गई है, तो आप जरूर एजी फिनटेक्स को कॉन्टैक्ट कीजिए बाई कॉलिंग देम एट 4699429888, या फिर आप उनके वेबसाइट पे भी जा सकते हैं विच इज ajfintechs.com. कल मैं आपसे दोबारा मिलूंगी एट द सेम टाइम 12:30 बजे. तब तक के लिए टेक केयर.

0: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
1: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
2: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
3: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
4: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
5: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
4: Kya matlab?
5: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
4: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
5: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
4: Ab to karna hi padega, madam.
6: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
7: Planning a graduation party, birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
8: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
9: Ritesh, kabhi socha hai? कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
10: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
9: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
10: वेट, व्हाट?
8: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
11: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
8: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
12: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
13: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
8: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
14: Now sir, or price?
8: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
15: क्या आपको बिजनेस खरीदने के लिए लोन चाहिए?
16: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
15: क्या आप फ्रेंचाइज शुरू करना चाहते हैं?
16: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
15: क्या आपको अपने बिजनेस के लिए वर्किंग कैपिटल की जरूरत है?
16: कॉल दी SBA लोन एक्सपर्ट्स।
15: कंस्ट्रक्शन हो या रेनोवेशन, बिजनेस खरीदना हो या रीफाइनेंस कराना हो, फॉर ऑल योर बिजनेस फाइनेंशियल नीड्स एट द बेस्ट इंटरेस्ट रेट एंड लोएस्ट डाउन पेमेंट, कॉल द SBA लोन एक्सपर्ट्स एट 817-786-3338, दैट्स 817-786-3338।

अगर आप किसी कार या फिर किसी ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं या फिर देयर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट, तो हम सब जानते हैं कि सच अ सिचुएशन कैन बी एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल. और ऐसी सिचुएशन में यू हैव टू डील विद द पेपर वर्क, द इंश्योरेंस कंपनीज, द लीगैलिटी, एंड ऑन टॉप ऑफ दैट योर ओन फिजिकल एंड इमोशनल मेंटल हेल्थ. सो आपको एक ऐसा अटर्नी चाहिए जो आपकी इन तमाम सिचुएशंस को डील करे, हैंडल करे, हेल्प यू फाइट द बेस्ट केस फॉर यू एंड गेट यू द बेस्ट कॉम्पनसेशन. एंड हु इज दैट अटर्नी? दैट अटर्नी इज अटर्नी उमर ख्वाजा. और कॉम्पनसेशन तो आपको बेस्ट वो दिलाएंगे, पर जो बेस्ट बात आपके लिए है वो ये कि यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग अनटिल यू विन द केस. तो आपके लिए होगा इस परेशानी की सिचुएशन में एक राहत की ये खबर है. कंप्लीट विन विन सिचुएशन है आपके लिए. यू हैव एनी क्वेश्चन, यू आर गोइंग थ्रू समथिंग लाइक दैट, समवन यू नो और यू केयर फॉर इज going through something like that, to zarur contact kijiye abhi attorney Umar Khwaja se. That number is, number note kar lijiye, 469-300-5046. 469-300-5046 number, ya phir aap unki website visit kar sakte hain, which is attorneyumar.com. अच्छा जी, इसके साथ मैं आपको बताऊं, आज हम फिल्मी फरमाइश लेते हैं. पसंद आपकी ही की चलती है, आप ही के मनपसंद रेडियो स्टेशन पे चलती है. और इस फिल्मी फरमाइश के सेगमेंट में, एक नया सेगमेंट में, आप ही की रिक्वेस्ट पे दो तीन लोगों ने मुझे कहा कि कभी आप हमारी कॉल्स लीजिए या हमें मौका दीजिए किसी को कोई पैगाम पहुंचाने का. सो कोई पैगाम आप किसी को देना चाहते हैं, कोई मैसेज देना चाहते हैं, किसी से लड़ाई हो गई है, उसको सॉरी बोलना चाहते हैं, डायरेक्ट नहीं बोलना, रेडियो के थ्रू बोलना है, आई एम ऑल इयर्स, व्हाटएवर, इफ देयर इज anything that you want to share right here on your favorite radio station with someone who you care for, ya aap kisi ko koi paigham dena chahte hain, zarur, I am all ears. Monday is totally dedicated to you. Monday ka din hota hai completely aapki nazar janak. This one is going out for you.

डंकी फिल्म से खास सफी के लिए ये गाना प्ले किया जा रहा है। आपका गाना जो है वो बहुत पुराना था, तो उसका थोड़ा सा नया वर्जन जो कि फिल्म दिल विल प्यार व्यार में गाया गया था वो मैंने आपके लिए निकाला है, ताकि थोड़ा सा 90s से आगे का लुक रहे। सो आई एम गोना प्ले दैट सॉन्ग फॉर यू, बट बिफोर दैट टू ऑल ऑफ यू जो कि H-1B वीज़ा पे हैं या F-1 पे हैं या L-1 पे हैं या फिर एनी अदर नॉन इमिग्रेंट वीज़ा, और आप प्लान कर रहे हैं, यू आर लुकिंग फॉर अ पाथ टू US परमानेंट रेजिडेंसी, तो दिस लॉ ऑफिसर्स ऑफ सीमा मेहता इज़ द राइट चॉइस फॉर यू। अटर्नी सीमा मेहता और उनकी एक्सपीरियंस टीम इमिग्रेशन लॉ में एक्सक्लूसिव स्पेशलाइज करते हैं, इंक्लूडिंग EB-5 इन्वेस्टर वीजा प्रोग्राम्स, फैमिली एंड एम्प्लॉयमेंट वीजाज, और साथ ही साथ परम लेबर सर्टिफिकेशन, इसी के साथ US सिटीजनशिप एज वेल। कोई भी आपका सवाल है इन में से किसी में भी, या एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग इमिग्रेशन लॉ, प्लीज गिव सीमा मेहता लॉ ऑफिसर्स एन ईमेल, ड्रॉप देम एन ईमेल एट दिस ईमेल आईडी, द आईडी इज info@seemamehtalawfirm.com. Once again, that ID is info, I-N-F-O, at S-E-E-M-A, Seema, M-E-H-T-A, mehtalawfirm.com. And this one now is going out to Suri Sahab.

जी हाँ, तुम भिन जाऊं कहाँ कि दुनिया में आके कुछ ना फिर चाह सनम कुछ ना फिर चाह सनम, ये खूबसूरत शायरी जी, तभी उस जमाने की खूबसूरत शायरियाँ और ये बातें, मतलब अल्फाज का चुनाव, कुछ कुछ गाने ऐसे होते हैं, या आप कह लीजिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जब लिखते हैं या जब बात करते हैं तो यूं लगता है जैसे बातों से फूल झड़ रहे हैं, आवाज़ से खुशबू आ रही है, समातों में वो बातें ऐसे टकराती हैं जैसे सच में रस घोल रही हों। और ये शायरी जो आप सुन रहे थे, ये कुछ ऐसी ही शायरी जो है थी, या ऐसा ही इसका इम्पैक्ट था या इफेक्ट था या असर था मेरी समातों पर, और आई एम श्योर आपकी समातों पर भी होगा। अच्छा जी, फरमाइशों का सिलसिला जारी है, बिकॉज ये चल रहा है फिल्मी फरमाइश, पसंद आपकी, आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे, आपकी मनपसंद आरजे के साथ। दिस नेक्स्ट वन इज गोइंग आउट फ्रॉम शिवानी टू हर हस्बैंड, शी इज डेफिनेटली मिसिंग हिम।

0: हर तारा। अरे अरे अरे, डेलस के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
1: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
2: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
1: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
2: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
0: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को। कॉल 972-666-1181। मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ।
3: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए। दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम। चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स। नॉट जस्ट दैट, फ्रॉम July 3rd to 5th, तंदूरी फ्लेम सेलिब्रेट्स रेड व्हाइट एंड स्पाइस फेस्टिवल। फ्री मॉकटेल विद एवरी एंट्री परचेस एंड किड्स अंडर 10 गेट फ्री आइसक्रीम। डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन।
4: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
5: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
0: विजिट psychicramnath.com। कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
6: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी।
7: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy, you need strength. Attorney Umar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Umar Khawaja, your legal lifeline.
0: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
8: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday, all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
9: Are you getting the best value on your life insurance or annuity needs? At shopcompareinsure.com, we help you compare options for term life, whole life, IUL and guaranteed income annuities from highly rated carriers, so you can choose coverage that fits your goals and budget. No pressure, no confusion, just smart choices.
10: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
11: Give your children the gift of spiritual grounding and cultural identity through Chinmaya Mission's Balavihar program. Families can choose from 3 convenient locations. Chinmaya Mission also offers a variety of enriching programs, including Gita chanting, shlokathon, satsangs for adults, festival celebrations, cultural activities, and language classes. Registration for Balavihar is now open. Visit cmdfw.org for complete details. Hari Om.
12: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल FunAsia 104.9 FM।

अपनी फरमाइश सुन रहे हैं आप, आपकी पसंद के गाने आपके मनपसंद रेडियो स्टेशन पे विद योर मनपसंद आरजे ऑफ कोर्स 9722355555 है स्टूडियो का नंबर। अली की रिक्वेस्ट पे सुन रहे थे आप ये गाना फिल्म लावारिस से, आ कहीं दूर चले जाएं। और इसी तरह मेरे पास आप ही की फरमाइशों के गाने लाइंड अप हैं, एक एक करके जैसे जैसे फरमाइश आ रही है उसको प्ले करने की कोशिश की जा रही है। तो अगला गाना जो मैं रिक्वेस्ट जिनकी रिक्वेस्ट पे लगाने वाली हूँ, सिंह साहब की रिक्वेस्ट पे ये गाना आपके लिए लगेगा। थोड़ा सा इसका हैपनिंग वर्जन ढूंढ के लाई हूँ। दिस इज मैसेज, जैसे आप जानते हैं ना सिर्फ आज फिल्मी फरमाइश ले रही हूँ बल्कि कोई मैसेज, कोई इमोशन आप किसी को कन्वे करना चाहते हैं, किसी को हाय बोलना चाहते हैं और किसी को जिंदगी से बाय बोलना चाहते हैं, एनीथिंग एंड एवरीथिंग यू कैन टेल मी एंड आई कैन बी दैट रिले थिंग और रिले पर्सन जो आपका मैसेज पहुंचाएगा माइक के उस पार। तो 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो। सिंह साहब कह रहे हैं गर्मी बहुत है जी, तो लेडीज डू नॉट गो, क्या धूप में निकला ना करिए।

All right, जी, that goes for everyone. मौसम है आजकल बहुत ही गर्म और धूप की शिद्दत ने किया हुआ है परेशान. तो धूप में निकलिए तो सबसे पहले तो ये कि सनस्क्रीन्स लगाना बिल्कुल मत भूलिए और हाइड्रेशन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. मेक श्योर यू कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड क्योंकि अदरवाइज स्टार्ट होता है सर के दर्द से एंड यू रियली डोंट वॉन्ट डील विद द डिहाइड्रेशन इशूज. सो ये है आपके लिए, अगर धूप में आपने निकलना ही है तो फिर इन इंतजाम के साथ निकलिए और छतरी भी रख ही लीजिए ताकि ज्यादा शिद्दत हो धूप की तो छतरी खोल के अपने आप को प्रोटेक्ट किया जा सके. आगे बढ़ रहे हैं जी और आपकी, जैसे मैं कह रही हूं, आज मंडेज आपके लिए डेडिकेटेड होता है. आपकी फरमाइश, आपके पसंद के गाने, आपका कोई मैसेज आपने किसी को देना हो. सो चित्रा जी मैसेज दे रही हैं पुष्पा को जो आज अपनी बर्थडे सेलिब्रेट करती हैं. पुष्पा पटेल, कंग्रेचुलेशंस, विशिंग यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे राइट हियर फ्रॉम द टीम ऑफ फन एचर रेडियो. मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारकबाद एंड दिस मैसेज इज गोइंग आउट टू यू फ्रॉम चित्रा जी.

अपनी सेहत का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी, और इसीलिए फोकस होता है बहुत ज़्यादा इस बात पे कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें कैसा लगता है जब वो 2 मिनट 3 मिनट भी हमें नहीं देते और बस आते हैं, दे लुक एट अस, दे यू नो जस्ट डू द बेसिक चेकअप एंड दे लीव, एंड हमें यू नो वी वॉन्ट कि कोई बैठे हमारी बात सुने, एंड वी नीड समवन हु टेक्स इंटरेस्ट इन आवर हेल्थ और बी पैशनेट अबाउट अस जस्ट एज मच एज वी आर पैशनेट अबाउट आवर हेल्थ, एंड दैट इज एग्जैक्टली वट हेल्प at or what works at Passion Health Primary Care. 30 minute ka appointment schedule kiya jata hai aapke liye because they truly understand that your health needs that kind of time and they treat you like a family. To pichle kai saalon se Passion Health Primary Care jo hai wo apni aapki family ki puri community ke liye ye kaam kar rahe hain. 30 minutes is all that it takes to complete your annual physicals, anxiety care ho, fibro scan ho, ya phir alcohol related concerns ho, liver concerns ho, vitamin B12 deficiency testing ho, ya aur bhi bahut kuch, everything is available at Passion Health. To aap schedule kar sakte hain apni appointment by calling them at this number. Number note kar lijiye, the number is 214-666-6259. 214-666-6259 उनका नंबर है. आप इस पे कॉल करके अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर आप उनको एक्चुअली यही एक नंबर है जिसपे आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. मेरा ख्याल था कि कोई और नंबर भी होगा लेकिन दिस इज द नंबर दैट यू हैव टू कॉल. 214-666-6259. यू हैव एनी क्वेश्चंस, यू वांट टू बुक योर अपॉइंटमेंट, दिस इज वेयर यू डू दैट. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर, दे आर extremely passionate about your health just as much as you are. This next number is going out to Kiran. Kiran is happy. Ji haan, Kiran, main Kiran, aap Kiran. This is going out from Kiran to Kiran. So, ye hai ji, she is extremely happy today. All her things in her checklist are getting done. She is feeling delighted. She is feeling excited. Aap bhi koi aisi feelings feel kar rahe hain, give me a call. 972-235-5555.

जी हाँ, जिंदगी से प्यार करना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज अगर अब हम ही अपनी जिंदगी से, अपनी चीजों से, अपनी सराउंडिंग से प्यार नहीं करेंगे तो हैप्पीनेस कभी भी हम तक नहीं आएगी. द फर्स्ट डोर टू हैप्पीनेस इज योर ओन सेल्फ. सो अपने लिए वो खुशी आपको खुद ढूंढनी है, कोई और आपको प्लेट पे रख के परोसेगा नहीं. हाँ, अगर जब हम अपने लिए खुशियां ढूंढते हैं तो फिर इर्द गिर्द से हमें चारों तरफ से खुशियां मिलनी शुरू हो जाती हैं. सो दैट पॉजिटिव वाइब हैज टू कम फ्रॉम यू. थैंक यू सो मच किरण फॉर रिकमेंडिंग दैट लवली सॉन्ग. आई विश यू ऑल हैप्पीनेस ऑल द वे. अच्छा जी, ये जो अगला गाना अब आपके लिए प्ले हो रहा है, दिस इज ऑन समीर्स रिक्वेस्ट, टेकन फ्रॉम द मूवी तेरे नाम. क्या शानदार फिल्म थी तेरे नाम. और उस दिन मैं गिव अवे कर रही थी आप सबके साथ और मैंने पूछा कि कौन सी ऐसी मूवी है जिसका आप सीक्वल देखना चाहते हैं, एंड द बेस्ट आंसर आई थॉट दैट केम वॉज अ सीक्वल ऑफ तेरे नाम. लेकिन वो तो खैर जब बनेगा सो बनेगा. फिलहाल दिस इज तुमसे मिलना, बातें करना अच्छा लगता है.

जी हाँ जी, और इसी को कहते हैं चेन रिएक्शन, या कह लीजिए ना, एक कड़ी से दूसरी कड़ी मिलती है और अच्छाई या पॉजिटिविटी जो है वो पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करती है। चित्रा जी ने पुष्पा पटेल के लिए मैसेज दिया, विशिंग हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे, क्योंकि पुष्पा करती हैं हमारी वन ऑफ आर लिसनर्स एट फनेशिया रेडियो, करती हैं आज अपना बर्थडे सेलिब्रेट। पुष्पा जी ने हमें कॉल बैक किया, चित्रा जी आपको थैंक यू का, ऑफकोर्स शी इज सेइंग लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू फॉर रिमेम्बरिंग द बर्थडे एंड टू फनेशिया टीम फॉर विशिंग हर अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू ऑल ऑफ यू who are celebrating your birthday today, that is on July 6th. Wishing you all a very happy birthday. And now another beautiful part is that Pushpa ji's husband is celebrating his birthday tomorrow. So here is wishing him also a very happy birthday, going out to you from your wife. This is Sajan.

0: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhipai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो ये वाला।
3: ओह हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: Aaja meri gaadi mein baith ja.
6: Baith jaun? Pakka? Kali to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
7: Wo thoda overheating tha.
6: Thoda? Teri gaadi date pe kam, workshop ke mood mein zyada lag rahi hai.
8: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
9: इन प्लेनो,
8: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870, पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
5: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
10: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
4: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense. Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
11: सुनो कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
12: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
11: कहाँ?
13: फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल मीट, पूजा एसेंशियल्स, लाइव पानी पूरी, फ्रेश गन्ने का जूस, बेकरी आइटम्स, प्लस लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी. And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
4: Foodistan in Aubrey. Everything desi. One place, one vibe.
14: Jeet unki hoti hai, jinki nazar sirf target par hoti hai. Chahe Olympic style archery ho ya 10 meters indoor precision shooting. Focus, discipline, consistency. Frisco Precision Sports Academy, one and only in North Dallas. From beginner to competitive athletes, structured coaching, expert guidance, and performance-driven training, ages 8 and above.
13: Frisco Precision Sports Academy, powered by Arjun Archery Academy, conveniently located on Quiet Road in Frisco. Visit friscoprecisionsports.com or call 469-333-1099.
14: Mention FunAsia and get 50% off on tryout session.
15: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
16: Calculating route, rerouting.
15: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है.
16: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ.
15: क्यों?
16: क्योंकि फोर्ट वर्थ, केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं. डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत. फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ.
15: अच्छा तो सीधा वही ले चलो.
10: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
16: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
17: प्लीज डोंट से योर यूजुअल प्लेस अगेन. आई एम टायर्ड ऑफ द सेम फूड.
18: एक्सक्यूज मी, इट्स कॉल्ड बीइंग लॉयल.
17: इट्स कॉल्ड बीइंग प्रेडिक्टेबल.
18: ओके देन, Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
17: And what's so special at Neon Cactus?
18: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
17: Not bad.
18: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
17: Okay, this I didn't expect from you.
18: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
19: Hey,
9: तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
19: लिया।
9: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
19: नहीं आया।
9: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे, इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनारा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस। वेदर इट्स होम, ऑटो, हेल्थ और बिजनेस, एवरी पॉलिसी इज कस्टमाइज्ड अराउंड यू। होटल्स, मोटेल्स, गैस स्टेशंस एंड स्मॉल बिजनेसेस, दे हेल्प प्रोटेक्ट व्हाट यू वर्क्ड हार्ड फॉर। नो कंफ्यूजन, नो अननेसेसरी एक्स्ट्रास। कॉल हुमेरा जुमानी एट सिनारा इंक 972-863-7772. That's 972-863-7772.
20: Visit www.sanadainc.com today.
21: Hi, this is Akshay Kumar and you're listening to Fun Asia Radio.
22: Dallas ki dhadkan 104.9 FM, Fun Asia Radio.

फिल्मी फरमाइश आपके लिए चल रही है. योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में मैं हूं किरण आपके साथ. मंडे थ्रू फ्राइडे 2:30 PM टिल 5 PM आई एम हियर विद यू. मंडेज इज कम्प्लीटली डेडिकेटेड टू यू. और अब तो मैंने नया इसमें सेगमेंट ऐड किया है और हमारे कॉलर्स आप जैसे कॉलर्स की ही रिकमेंडेशंस और इनपुट के ऊपर के एक ऐसा सेगमेंट भी डालिए जो आप फरमाइश लेती हैं, तो साथ ही साथ कुछ हमें मौका मिले अपनी कोई मैसेज रिले आउट करने का, कुछ डेडिकेट करने का किसी को, कोई किसी से नाराज हो गया है तो यहाँ फनेशिया के थ्रू उन्हें बताने का कि आप उनके लिए कितने जरूरी हैं. तो इस तरह का कोई मैसेज अगर आप करना चाहते हैं, किसी को बर्थडे विश करना चाहते हैं, सुनहरी किरण पे आप ये कर सकते हैं. मंडेज को 2:30 PM टिल अराउंड 4:15 PM मैं आपके मैसेजेस लूंगी. सो आई एम स्टिल टेकिंग दोज मैसेजेस एंड दिस नेक्स्ट नंबर इज गोइंग आउट टू मलिक साहब. मलिक साहब ये गाना डेडिकेट करना चाहते हैं मिस चार्मिंग को. सो हियर इट इज गोइंग आउट टू योर मिस चार्मिंग मिस्टर मलिक.

0: जी हाँ, कुछ लोग जिंदगी में ऐसे होते हैं जिन के लिए बंदा कहता है कयामत तक और कयामत के बाद भी आप ही क्या रह जाए। ये खूबसूरत गाना हम कर रहे थे मलिक साहब की फरमाइश पे आपके लिए प्ले। और अब अगला गाना प्ले करने से पहले जी मैं आपको बताती चलूं कि एक ज़बरदस्त कॉन्सर्ट बड़े दिनों से फनेजिया पे तमाम आरजेज आपको ये बता रहे हैं, और अगर आपने अब तक टिकट्स नहीं खरीदे तो अभी भी देर नहीं हुई, आपके पास अभी भी 5 से 6 दिन मौजूद हैं। इवेंट है विशाल एंड शेखर लाइव, लेकर आ रहे हैं द सुपर हिट टूर टू डालस, और ये है जी मौका आपके लिए 2 टिकट्स जीतने का। एक कंटेस्टेंट 2 टिकट्स जीत सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि संडे को है ये कॉन्सर्ट, जुलाई द 12th एट कर्टिस कल्चरल सेंटर इन गार्लैंड, और टिकट्स जो हैं वो सेल पर जा चुके हैं। इस वेबसाइट से आप टिकट खरीद सकते हैं। दिस इज द ओनली वेबसाइट जहां आपको ये टिकट्स अवेलेबल हैं, दैट इज kashpatelproductions.com, kashpatelproductions.com से आप टिकट्स खरीद सकते हैं। एंड व्हाइल यू आर बाइंग द टिकट्स एंड चेकिंग आउट, डू नॉट फॉरगेट टू यूज द प्रोमो कोड FUNASIA, FUNASIA प्रोमो कोड है जो आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 30% ऑफ मिलेगा आपके टोटल परचेज पे। तो जी 30% ऑफ लेने के लिए FUNASIA का प्रोमो कोड इस्तेमाल कीजिए, kashpatelproductions.com पे लॉग ऑन कीजिए। द इवेंट इज हैपनिंग ऑन संडे जुलाई द 12th एट कर्टिस कल्चरल सेंटर इन गार्लैंड। दिस इज विशाल एंड शेखर लाइव। और अब आपके लिए जो गिव अवे आया है वो सवाल मैं आपसे पूछने वाली हूं, कौन से साल में, विच ईयर विशाल एंड शेखर गेव देयर फर्स्ट सॉन्ग। फिल्म का नाम बताइए, कौन सी फिल्म में और कौन से साल ये आया था विशाल शेखर एज अ डुओ उन्होंने सबसे पहले म्यूजिक कंपोजर के तौर पे गाना दिया, ये आपको मुझे बताना है। सबसे पहले एज अ डुओ म्यूजिक कंपोजर के तौर पे विशाल शेखर ने किस फिल्म में गाना दिया था। 9722355555। And this song, in the meanwhile, is going out to Saurabh.
1: ¿Quién eres tú? ¿Dónde has estado? He removido cielo y tierra y no te encontré. Y llegas hoy, tan de repente, y das sentido a toda mi vida con tu querer.
2: Name Samcha, name Jana, yo vi tu nombre, se caja, señorita.

ऑलराइट जी, कॉन्टेस्ट का टाइम हो चुका है खत्म. विशाल शेखर का ये कॉन्सर्ट का टिकट, दो टिकट लेके आई थी एक विनर के लिए, और आपसे सवाल पूछा था वो कौन सी फिल्म थी जिसमें सबसे पहले विशाल शेखर एज अ डुओ उन्होंने अपना गाना दिया, और फिल्म का नाम था जी प्यार में कभी कभी, और साल था 1999. स्टार्स थे रिंकी खन्ना, डीनो मोरिया और संजय सूरी. तो ये हुई आपके लिए ये डिटेल. आप तमाम लोगों की फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया. फनीश इस तरह के सबसे पहले तो बहुत सारे गिव अवेज लेकर आता है. आपकी पार्टिसिपेशन इज व्हाट मैटर्स द मोस्ट. रवि, नेहा, नेहल, सागर, रिहान, ध्रुव और अभी भी फोन लाइन बस कर रही हैं, बट कॉन्टेस्ट का टाइम हो चुका है खत्म. तो मैथ के फॉर्मूले में आपकी जिस सीक्वेंस में आपका नंबर आया है इसी में मैंने डाल दिया है और विनर निकल आया है फॉर्मूले के थ्रू. आपकी नसीब, आपकी किस्मत ही आपका विन डिसाइड करती है. और आज के हमारे लकी विनर है नेहल. नेहल कॉन्ग्रेचुलेशन, जीत लिया है आपने ये गिव अवे. दो टिकट्स आपके लिए हैं. आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मैंने ले ली है. वी विल गिव यू अ कॉल बैक और वी विल सेंड यू एन ईमेल एंड दैट्स हाउ द थिंग्स विल गो ऑन फ्रॉम देयर. हमें दो दिन का टाइम दीजिए सो वी कैन गेट इन टच विद यू. आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया वंस अगेन बहुत बहुत शुक्रिया. फनीश इस तरह के बहुत सारे गिव अवेज थ्रू आउट द डे आपके लिए लेकर आता है. प्लीज स्टे ट्यून्ड एंड स्टे कनेक्टेड. वैसे आई हैव अनदर गिव अवे फॉर यू. सुनते रहिए.

जी हाँ, और अगर आप डालस में कुछ अपना नया घर खरीदना चाहते हैं या पुराना घर बेचना चाहते हैं या स्वैपिंग चाहते हैं या फिर कोई आप किसी को जानते हैं जो रीलोकेट कर रहा हो, सो नवनीता खेमका विद केलर विलियम रियल्टी इज द पर्सन दैट यू नीड टू कॉन्टैक्ट, बिकॉज शी विल गाइड यू स्टेप बाय स्टेप फॉर द वे ऑफ पर्सनलाइज सर्विस आपको देती हैं, बेस्ट कम्युनिकेशन, ऑनेस्ट कम्युनिकेशन, शी जनरली केयर्स फॉर हर क्लाइंट्स एंड शी विल डेफिनेटली कीप इट वेरी सिंपल एंड क्लीन विद यू, क्योंकि हर घर एक कहानी सुनाता है और नवनीता चाहती हैं कि आप अपनी घर की कहानी उनके साथ लिखिए. सो नवनीता खेमका को कॉन्टैक्ट कीजिए, शी इज ओनली अ फोन कॉल अवे, 347-449-4242. वंस अगेन दैट नंबर इज 347-449-4242 is that number. And this next song is going out to Anand, and it's an absolutely beautiful song jo ke dekhiye kaun si film se liya gaya tha, Jannat film se liya gaya tha, Imran Hashmi aur Sonal Chauhan pe picturized.

और अगर आपका कोई इवेंट आ रहा है जो आप प्लान कर रहे हैं, जैसे कि इट्स अ वेडिंग और अ ग्रेजुएशन या फिर हाउस वार्मिंग या कोई भी और स्पेशल ओकेजन, तो बिफोर यू स्टार्ट स्ट्रेसिंग अबाउट वेन्यू, डिकोर क्या होगा, केटरिंग कहाँ से कराएंगे, और छोटी छोटी बहुत सारी यू नो निटिग्रिटीज होती हैं जो इवेंट्स के अंदर जाती हैं, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपका ये सारा जो बर्डन है वो कहाँ आप शिफ्ट कर सकते हैं. वो है विनेसा इवेंट्स. दे मेक प्लानिंग simple by bringing everything together in one place. Venue selection se leke, beautiful decor se leke, signature events se leke, photography tak. To, you know, hospitality, delicious catering, और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, एक्सक्लूसिवली बाय द रेनाउंड बसेरा ग्रैंड. तो ये है जी, सो यू कैन अब आप उनको अपना बर्डन शिफ्ट करके यू कैन फोकस ऑन मेकिंग मेमोरीज वाइल ऑफ कोर्स दे केयर टेक केयर ऑफ द रेस्ट. और सिर्फ टेक केयर ही नहीं, बेहतरीन तरीके से टेक केयर करेंगे आपका. दिस इज विनेसा इवेंट्स फॉर यू. आपके सेलिब्रेशन पार्टनर्स हैं आपके साथ, आपकी उम्मीद से ज्यादा आपके इवेंट को खूबसूरत बनाने में आपका साथ देंगे. हरी बसेरा साहब को आप कॉल कीजिए आज ही इस नंबर पे 469-442-8770 हरी बसेरा साहब का नंबर, कनेक्टेड विद विनेसा इवेंट्स. और आपका आई होप एंड आई प्रे दैट यू हैव अ लवली इवेंट दैट यू आर प्लानिंग अहेड ऑफ टाइम.

0: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
1: In association with Passion Health Primary Care.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Suno, shaadi ke liye jewelry bhi dekhni hai.
7: Haan, dekh lenge.
6: To fir India ki ticket kab karwaye?
7: अरे तुम्हें ज्वेलरी देखनी है या रिश्तेदारों को?
8: One of the most trusted jewelers with over 40 stores in India is now in Dallas. PMJ Jewels. वही timeless craftsmanship, वही unmatched elegance और वही stunning bridal collections. Now on Main Street in Frisco. PMJ Jewels. India's finest, Dallas's newest.
9: डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है.
10: लेकिन आपके डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलना? उससे भी मुश्किल है. एक हफ्ता, दस दिन, अगले ट्यूसडे.
11: तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख.
0: पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर गिव्स यू डॉक अपॉइंटमेंट्स ऑन द सेम डे विजिट. आज बुखार, आज डॉक्टर. आज इन्फेक्शन, आज डॉक्टर. आज एनुअल चेकअप, आज डॉक्टर. प्लस 30 मिनट्स ऑफ डेडिकेटेड अपॉइंटमेंट टाइम. पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर इन इरविंग, प्लेनो, फ्रिस्को, मकिनी, ऑबरी.
10: विजिट passionhealthphysicians.com और कॉल 214-666-6259.
12: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया. ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस.
13: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी.
12: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है.
13: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी.
12: ये क्या होता?
13: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन.
14: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस. फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन. सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस.
0: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन.
15: ये तेरा घर, ये मेरा घर.
16: Buying or selling a home isn't just a transaction. It's one of life's biggest decisions and it deserves the right guidance.
17: I am Navneeta, your trusted realtor with Keller Williams Realty.
16: I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
0: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
18: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में.
19: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून.
18: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन. द फ्लेवर लाउंज,
19: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद. विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स. द फ्लेवर लाउंज, हर बाय सुपरहिट.
0: इफ यू होल्ड H1B, F1, L1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499. और ईमेल एट info@seemamehtalawfirm.com.
20: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं.
21: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है.
22: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं. जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं. तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो.
23: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी. जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
22: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
1: मामू देखो क्या हो गया।
2: ओ क्या हो गया?
1: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
2: ओए जर्मन का कमाल है,
1: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
2: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 9726906623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
3: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
4: हाय, दिस इज श्रद्धा पंडित एंड यू ट्यून्ड इन टू फन एशिया रेडियो।
24: कितने आदमी थे?
25: सरकार पूरा का पूरा डेलिस फनेशिया सुनता है।

0: जी हाँ, मेरा ख्याल है कि दोस्ती के ऊपर एक बेहतरीन गाना और के की आवाज़ और अल्फाज का चुनाव और जिस तरह से लिखा गया, जैसे हम अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि कुछ अल्फाज या कुछ शायरी या कुछ लिरिक्स ऐसे होते हैं गानों के कि वो वाकई आपके दिल के तार छेड़ जाते हैं. दिस इज़ डेफिनेटली वन ऑफ दोज. मैं दिल के तार से सीधा खाने के तारों पे आ रही हूँ क्योंकि फूडिस्तान की तरफ से आया है एक गिव अवे आपके लिए. सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊँ कि अगर आप फ्रेश देसी ग्रोसरीज खरीद रहे हैं, हलाल मीट आपको चाहिए, फ्रेश प्रोड्यूस, बेकरी आइटम्स और साथ ही साथ लाइव पानीपुरी के स्टेशन भी हैं उनके पास, ताज़ा गन्ने का जूस भी आपको मिलता है, और ये सब कुछ होता है कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी में. और इसी के साथ दे इवन हैव एन अप स्केल डाइनिंग एक्सपीरियंस फॉर यू एज वेल. और सबसे इंपॉर्टेंट बात दैट दे ऑफर यू लोएस्ट प्राइस मैच गारंटी ऑन ग्रोसरीज और फ्री डिलीवरीज ऑन ऑर्डर्स अबव $30 विद इन 5 miles. तो जी, ये तो हुआ आपके लिए कि फूडिस्तान इन ऑबरी आपके लिए क्या क्या लेके आते हैं. और अब वो लेके आए हैं आपके लिए गिव अवे. यू कैन विन अ फ्री आइटम फ्रॉम डिवाइब रेस्टोरेंट, जो कि एक अप स्केल इंडियन रेस्टोरेंट है लोकेटेड इन साइड फूडिस्तान इन ऑबरी. तो अगर आप जीतेंगे ये गिव अवे तो आपको ऑबरी वाले फूडिस्तान जाना है, बिकॉज रिवाइव रेस्टोरेंट इज लोकेटेड इनसाइड दैट, एंड देन यू विल बी एबल टू क्लेम योर फ्री आइटम. सो इस बात का ध्यान रखिएगा, और स्पेशली अगर आप पिछले एक महीने में ये गिव अवे किसी और शो पे जीत चुके हैं तो यू कैन ओनली बी अ विनर वंस अ मंथ. तो इसका भी प्लीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यू नो टू पार्टिसिपेट. और अब फूडिस्तान की तरफ से जो ये गिव अवे आया है इसके लिए हम कर रहे हैं कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण, ब्रॉट टू यू बाय फूडिस्तान इन ऑबरी. आप मुझे कॉल करके बताइए आज आप ही की पसंद के, आप ही की फरमाइशों के गाने चल रहे हैं, और साथ ही साथ नया सेगमेंट जो आपके लिए इसी में ऐड किया था, आपके दिल की बात जो आपने बतानी है किसी और को, वो डेडिकेशंस भी मैं ले रही थी और आपकी जबान बनके वो बात किसी और तक पहुंचा रही थी. कोई और मैसेज आप देना चाहते हैं, यू हैव 5 minutes टू कॉल मी एंड गिव योर मैसेज लाइव, और फिर उन कॉलर्स में से मैं पिक करने वाली हूँ आपका जो है एक मैथ फॉर्मूला में डल के नंबर पिक होगा और फिर विनर डिसाइड होगा. लेकिन आपको ये मौका दे रही हूँ अपने मैसेजेस किसी को कन्वे करने का. ट्राई टू कीप देम सिंपल एंड स्वीट, विच इज़ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू हेयर. 972-235-5555 इज़ द नंबर टू द स्टूडियो. कोई मैसेज किसी को देना चाहते हैं, ये 5 मिनट आपके पास मौका है लाइव जाने का ऑन एयर एंड गिव योर मैसेज टू समवन यू केयर फॉर. किसी से आप नाराज हैं उसको मना लीजिए, कोई आप के दिल पे दस्तक दे रहा है तो उसे बता दीजिए. फन एशिया रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. अपना नाम बताइए.
1: हाय, माय नेम इज शिवानी.
0: हाय शिवानी जी, बताइए
1: जी. और ये मेरा मैसेज इट्स फॉर माय हस्बैंड दत्ता. सो ही गॉन टू डिफरेंट स्टेट फॉर वर्क एंड आई एम रियली मिसिंग हिम एंड द गर्ल्स आर रियली मिसिंग हिम daily, so we just wanted to say that we miss you and we love you, and I know you are going for work for all of us only. It is a good thing, but it's just that you being far away, we are missing you. So ek gana hai na, tumse juda hokar mujhe door jana hai, us type ki kuch feeling aa rahi hai mujhe ki pal bhar ki judai ab phir lot aana hai.
0: Ji haan Shivani, abhi aapne gana farmaishi program mein bataya, unke liye bahut pyar karti hain tumko sanam, yahi dedicate kiya tha na aapne.
1: जी,
0: बिल्कुल. मैंने वो किया, देखिए आपने बड़ा जबरदस्त मैसेज दिया है. आई होप कि फनेशिया के तवस्त से आपके हस्बैंड ये मैसेज सुने एंड ही कॉल्स यू बैक एंड टेल्स यू हाउ मच ही मिस यू टू. सुनते रहिए हमारा शो. अगर आप विनर होंगी तो मैं आपसे कॉल बैक करने की रिक्वेस्ट करूंगी. फनेशिया रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. अपना नाम बताइए.
2: मेरा नाम यास्मीन है.
0: जी यास्मीन, बताइए. जी मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया. बताइए क्या मैसेज देना चाहती हैं.
2: अच्छा, मेरा मैसेज है, ये ह्यूस्टन में मेरे एक दोस्त है, बहुत पुराना, दो महीने से कोई कॉल ना उठाना ना मैसेज. में ये बोलती हूँ अगर वो सुन रहे हैं मुझे तो प्लीज मुझे कॉल करो और खैरियत की मुझे का वो मैसेज दो के खैरियत से आए कुछ.
0: बिल्कुल सही है जी. यास्मीन जी के फ्रेंड अगर सुन रहे हैं या कोई उनके जानने वाला सुन रहा है तो प्लीज उन्हें कहिए कि यास्मीन जी को कॉल कर लें. यास्मीन जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी फोन कॉल का. सुनते रहिए, मैं अभी विनर अनाउंस करती हूँ राइट आफ्टर दिस. दिस इज योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. सुन रहे हैं आप कॉन्वर्सेशन कॉर्नर, जो कि फूडिस्तान इन ऑबरी की तरफ से आपके लिए आया है. मौका दिया जा रहा है आपको अपने मैसेजेस को कन्वे करने का. कोई बात आप वैसे किसी से कहना चाहते हैं, सो दिस इज द टाइम फॉर यू. 9722355555 is the number to the studio.

ऑलराइट जी, फूडिस्तान की तरफ से जो गिव अवे आपके लिए आया था, फ्री आइटम फ्रॉम डिवाइब रेस्टोरेंट, और उसकी लकी विनर हैं जी शिवानी. शिवानी, अगर आप सुन रही हैं तो प्लीज गिव मी अ कॉल बैक सो दैट आई कैन गेट योर पर्सनल डिटेल्स टू सेंड टू फूडिस्तान डिवाइब रेस्टोरेंट इन ऑबरी. 9722355555 है स्टूडियो का नंबर. शिवानी, अगर आप सुन रही हैं तो प्लीज कॉल करके और मुझे अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन दे दीजिए.

और जी कॉकटेल टू के गाने तो सुपरहिट हो ही रहे हैं, फिल्म भी मतलब यू नो टू ईच देयर ओन वाली सिचुएशन है, बहुत सारे लोगों को बहुत पसंद आई, कुछ लोगों ने कुछ अच्छे पॉजिटिव रिव्यूज नहीं दिए. सो ज़रूर जाके देखिए ताकि आप अपना रिव्यू खुद इस्टेब्लिश करें और खुद डिसाइड करें कि आपको फिल्म पसंद आई है कि नहीं आई है. अच्छा अब ये जो टाइम है आपको इट इज़ टाइम नाउ टू गिव यू द वेदर अपडेट एज वेल एज द करेंसी अपडेट. तो सबसे पहले तो आपको बताएं जी कि आज जुलाई द 6th मंडे 4:20 PM इन द स्टूडियो और सिटी ऑफ मिकिनी में इस वक्त है 96 degrees. However, इट फील्स लाइक 103, हॉट एंड ह्यूमिड फॉर श्योर. लेकिन दिन में कहीं कहीं बादल से नजर आए, बट हाउ एवर द हाइज वर इन द मिड 90s, जबकि कहीं कहीं बारिश भी देखने को मिली, बट कुछ स्पॉट्स पे बिल्कुल ड्राई रहा समा. और शाम जो है वो रहेगी पार्टली क्लाउडी इन द इवनिंग, देन बिकमिंग मोस्टली क्लियर. 20% चांस ऑफ शावर्स हो सकते हैं, बट इट विल बी ह्यूमिड एंड हॉट विद लोज इन द मिड 70s. पोलन काउंट आज का रहा 3.3 विच इज लो मीडियम, जबकि आज का यूवी इंडेक्स इज 10 विच इज वेरी हाई. सो प्लीज अपना हैंडी रखिए सनस्क्रीन्स इफ यू वांट टू गो आउट विद योर अम्ब्रेला विद योर हैट्स और ऑफ कोर्स पानी अपना हैंडी रखिए हाइड्रेशन के लिए. सनराइज आज का हुआ 6:23 AM पे, जबकि आज का सनसेट होगा 8:39 PM. That was the weather forecast brought to you by Malabar Gold and Diamonds.

0: और इसी के साथ टाइम हुआ है आपको करेंसी अपडेट देने का. जी वैसे तो यूजुअली 4:30 टिल 5 PM आपको वेदर करेंसी और गोल्ड प्राइस अपडेट दी जाती है, बट मंडेज इज डिफरेंट. वन, मंडेज को लेके आती हूँ आपकी फरमाइश, आपके मनपसंद गाने, और टू, मंडेज को 4:30 PM टिल 5 PM हमारे साथ कनेक्टेड होते हैं माथुर लॉ ऑफिसर्स के मिस्टर संजय माथुर, जो कि आपके क्वेश्चंस लाइव लेते हैं रिगार्डिंग सिविल लिटिगेशन, यू नो, क्रिमिनल इंजरी, फैमिली एज वेल एज इमिग्रेशन लॉ. आपका कोई भी सवाल है, माथुर जी हमारे साथ लाइव होंगे. अटर्नी संजय माथुर विल बी लाइव हेयर विद अस फ्रॉम 4:30 PM टिल 5 PM. यू कैन गिव अस अ कॉल लाइव, ही विल बी टेकिंग योर क्वेश्चंस लाइव. और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि अगर मैं आपको होल्ड पे डालूं एंड यू कैन hear him talk or you know किसी previous सवाल का वो question दे का answer दे रहे हैं, तो आप please अपने spot को line में hold कीजिएगा. Do not drop the line if you can hear him talk on your phone, because that means you are next in line to ask your question. So hold that spot right there. And with that, it is time to give you the currency update. आज जी according to xrates.com US dollar कहाँ stand कर रहा है. Euro is trading at 0.87 with respect to $1. British pound 0.74, जबकि इंडियन रुपी 95.52 पे ट्रेड कर रहा है. कैनेडियन डॉलर इज स्टैंडिंग एट 1.42, जबकि पाकिस्तानी रुपी 278.30 पाकिस्तानी रुपीज आर ट्रेडिंग फॉर $1. नेपालीज रुपी 152.91 पे ट्रेड कर रहा है, जबकि बांग्लादेशी टका 123.27 बांग्लादेशी टकाज आर ट्रेडिंग फॉर $1.
1: She likes to drop it low, man.

0: इस साल तो कमाल हो गया, हमारा रेवेन्यू डबल हो गया।
1: सर अच्छा है, लेकिन आपने टैक्स प्लानिंग किया?
2: नहीं।
1: बुक कीपिंग अपडेटेड है?
2: नहीं।
1: कैश फ्लो फोरकास्ट बनाया?
2: वो भी नहीं।
1: तो पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।
3: रेवेन्यू देखकर खुश मत होइए। बिजनेस में तब ऑल इज वेल होगा जब हमारे नंबर्स भी स्ट्रॉन्ग हो। फॉर योर टैक्स प्लानिंग, बुक कीपिंग एंड CFO सर्विसेज, विजिट agfintax.com, कॉल 972-618-8555। AG Fintax, your growth, our strategy. AG Fintax, led by Forbes Finance Council member Anil Grandhi.
4: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
5: Zindagi ek safar hai suhana, yahan kal kya ho?
3: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM टू 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजरवे, स्वीट 205, Frisco.
1: Looking to earn extra flexible income or even build a new career? At shopcompareinsure.com, we are not just helping customers. We're growing a network of successful insurance agents. Whether you're experienced or just getting started, we provide the tools, training, mentorship and access to top-rated products like annuities, term life, whole life and IUL to help you succeed. Work flexible hours, build your own income, make a real impact.
4: Visit shopcompareinsure.com to get started. Call 469-789-3603. That's shopcompareinsure.com. Your 360 insurance solution.
6: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
7: हाँ।
6: घर रिलोकेट करनी है?
7: हाँ।
6: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
7: हाँ भाई हाँ।
6: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
8: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
9: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
3: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
10: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
11: कुछ भी नहीं। Ura Debt Relief will do it for us.
10: क्या मतलब?
11: Ura can help us save up to 50% on our total debt, and the rest we pay in easy monthly installments.
10: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. हम खुद ही मैनेज कर लेंगे।
11: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled, and they have a 100% money back guarantee. Call तो करो 888-888-9914.
10: अब तो करना ही पड़ेगा मैडम।
8: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
12: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है?
8: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू, ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी। ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग।
3: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट। यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 मैकिनी।
13: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
14: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
13: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
14: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
13: सच में सब संभाल लेंगे?
14: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
3: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.
15: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल, Phonasia 104.9 FM.

You're tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. मैं हूँ किरण आपके साथ अराउंड 5-6 मिनट मैं यहाँ मौजूद रहूंगी और देने लगी हूँ आपको ट्रैफिक की अपडेट. उससे पहले आपको बताते चलें, दिस ट्रैफिक अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय उमर ख्वाजा. अटर्नी उमर ख्वाजा इज द पर्सन दैट यू नीड टू कॉन्टैक्ट इफ देयर इज अ कार और अ ट्रक इंसिडेंट एक्सीडेंट या फिर अ स्लिप और अ फॉल एक्सीडेंट. तो जी, डू नॉट गेट स्ट्रेस्ड ओवर इंश्योरेंस कंपनीज एंड पेपर वर्क एंड लीगैलिटीज एंड निटिग्रिटीज ऑफ situation. Just take care of yourself and let attorney Umar Khwaja handle it all for you. They will fight your case. They will help you get the best compensation. And the best part is you don't have to pay anything until you win. So for a free consultation, give them a call. 469-300-5046. 469-300-5046 is the number. Or visit attorneyumar.com. attorneyumar.com. और इंसिडेंट्स के हवाले से एक कोलिजन नजर आ रहा है जी इस वक्त मुझे एट 6:35 टूवर्ड्स यूएस 75 ईस्ट बाउंड, जिसकी वजह से वन लेन इज ब्लॉक्ड एंड दैट लेन इज एन एग्जिट लेन. द इंसिडेंट हैज बीन रिपोर्टेड अबाउट 7 to 8 मिनट्स अगो, सो लॉट ऑफ बैकअप यू आर गोइंग टू सी एट दिस स्पॉट. और द सिवेरिटी ऑफ दिस इंसिडेंट इज रिपोर्टेड हाई, बट दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू वेयर योर ट्रैफिक इज कंसर्न right now on the roads of Dallas.

0: MyTime Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Ductime removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Ducktime.
3: Hey, तुमने कभी इंश्योरेंस लिया?
4: लिया।
3: कभी पॉलिसी समझ भी आया?
4: नहीं आया।
3: मुझे भी नहीं आया। आएगा भी कैसे? इंश्योरेंस चीज ही ऐसी है, इसलिए स्मार्ट लोग चूज करते हैं सिनाडा इंक एंड हुमेरा जुमानी इंश्योरेंस. Whether it's home, auto, health or business, every policy is customized around you. Hotels, motels, gas stations and small businesses, they help protect what you worked hard for. No confusion, no unnecessary extras. Call Humera Jamani at Sonata Inc. 972-863-7772. That's 972-863-7772.
2: Visit www.sanadainc.com today.
5: Ladies and gentlemen, you're not ready for this. Frisco mein itna pyar milne ke baad, Panch Tara is now open at a new location in Allen. Wahi swaad, wahi junoon aur wahi zabardast management aur customer service. Famous garma garam parhathe, roz taazi bani mithaiya aur full service bar waiting just for you. Enjoy fine dining experience aur Punjabi buffet every day. Catering service is also available to make your every celebration memorable. Panch Tara now in Frisco and Allen. Mention Apna Punjab and get exclusive discount on your first visit.
6: Beta, 95% aaye?
7: Haan, mummy.
6: Good. Ab chaliye, papa, aap apna report card dikhaiye.
8: Mera?
6: Haan. Profit margin, cash flow, tax planning, business goals, sare accounts updated.
8: वो
9: स्कूल का रिपोर्ट कार्ड साल में एक बार आता है, बट बिजनेस का रिपोर्ट कार्ड हर महीने. एजी फिनटेक्स हेल्प्स यू अंडरस्टैंड प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, टैक्स प्लानिंग, बिजनेस ग्रोथ थ्रू बुककीपिंग एंड सीएफओ सर्विसेज. विजिट agfintechs.com. कॉल 972-618-8555. एजी फिनटेक्स लेड बाय फोर्ब्स फाइनेंस काउंसिल मेंबर अनिल गांधी.
5: सेम ऑर्डर अगेन, सेम पिज्जा, सेम टेस्ट, सेम स्टोरी. टाइम टू अपग्रेड योर क्रेविंग्स, डैलस. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
10: और सुनाओ, हाउस हंटिंग कैसी चल रही है?
11: क्या बताऊं, इट्स हार्ड टू फाइंड अ रियल्टर हु ऑफर्स ग्रेट सर्विस एंड आल्सो कैशबैक एट क्लोजिंग.
10: यू नीड टू कॉल अजय प्रभु ऑफ बीम रियल एस्टेट. ही इज एन एक्सपीरियंस्ड रियल्टर हु प्रोवाइड्स एक्सेप्शनल सर्विस प्लस कैशबैक एट क्लोजिंग. अजय रिव्यूज ईच हाउस थरली एंड शेयर्स ऑल द प्रोज एंड कॉन्स एंड नेगोशिएट्स द बेस्ट प्राइस एंड बिल्डर इंसेंटिव्स. जस्ट विजिट ajayprabhu.com एंड सी व्हाई पीपल आर रेविंग अबाउट हिम.
9: आर यू सीकिंग क्लैरिटी life wondering what destiny has in store for you.
12: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer ab Dallas mein.
9: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100% privacy.
12: Thousands ki life badli unki divine guidance se. Now it's your turn.
9: Samasya ka pakka samadhan. Astrologer Ishwar.
12: Call now 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
13: Accident के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था. ना वो हेल्प कर रहे थे, ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं. आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक. फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया. उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए, मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले. हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया, सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी। उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ।
9: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR, द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा, आपका हक, उनकी जिम्मेदारी।
4: हाय, दिस इज शर्वरी, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।

इसीलिए मेरा तुमसे कुछ कह रहा है वो सुन लो ना, आज 50 पैसे का बर्थडे है, 50 पैसे मतलब 50 सेंट यार, द रैपर मिस्टर 50 सेंट इज सेलिब्रेटिंग हिज बर्थडे टुडे 6th of July 1975। 11 साल बड़ा है मेरा बड़ा भाई, इसको अपनी सेटिंग आपस में। खैर, न्यूयॉर्क सिटी में पैदा हुए थे आज ही के दिन, एंड ही इज 51 ईयर्स ऑफ एज। रैप सेंसेशन इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ द ईस्ट कोस्ट ग्रुप कॉल्ड जी यूनिट एंड वॉज रैंक्ड द 6th बेस्ट आर्टिस्ट ऑफ 2000 बाय बिलबोर्ड मैगजीन। हिज फर्स्ट हिट इन द क्लब, यू फॉर मी इन द क्लब, बार समझ गया ना, बिकेम अ सेंसेशन इन 2003। हिज गेट रिच और डाई ट्राइन एल्बम ऑल्सो वेंट 6 times प्लैटिनम। टुडे मार्क्स हिज बर्थडे, a very happy birthday to Mr. 50 paise yani ki 50 cent from the team here at Funasia and from Banda Bandas Marvin Das. This part of the show is brought to you by Garland ka number 1 restaurant punjabiyon ke liye, that is Tandoori Flame. Punjabiyon ke liye kyun bhai, sab ke liye, jisko punjabi khana acha khana hai wo jaye Tandoori Flame, located in Garland, which is right on Shiloh and George Bush, a destination for all spice lovers. Sizzling up some tandoori platters, rich curries, and of course North Indian favorites to aapko milenge with that home style punch, from smoky tandoori flavors to velvety curries and fresh hot naan. Maza aa jaye bhai, every plate feels like a celebration. Aur bhook lag rahi hai bahut zara aaj, kyunki dobara ko lunch nahi kiya bhai ne. Khair, aap nahi gaye hain to you've got to go try Tandoori Flame restaurant in Plano, located in Garland, like I said, right off of Shiloh and George Bush. For now it is doobte doobte ubhar jao. I mean, gaane ka naam hai Doobe, but they really did not sink, they just fell in love. पेट्रोल डीजल के रेट को इतना देख के घबराना नहीं आपने, ठीक है? पेट्रोल डीजल का रेट बढ़ रहा है मुझे मालूम है, बट डोंट वरी, क्योंकि अभी तो बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, पत्थर से आग निकालना बाकी है मेरे दोस्त।

डूबे डूबे डूबे। दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट टू यू बाय तंदूरी फ्लेम, जिसका मैंने आपको बता दिया है गार्लैंड में लोकेटेड है। अगर अभी तक भी आप नहीं गए हैं, गो ट्राई देयर फूड, शायलो एंड जॉर्ज बुश पे लोकेटेड है जी, एंड दे आर वंडरफुल एट व्हाट दे डू। कहते हैं जी कि ये जो सूर्य देवता है ना, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, हे सूर्य देवता, ऐसे दूर से जलाने से कुछ नहीं होगा, नीचे आओ, सीधा धाएं कर दो, कहाँ दूर से हमें तंग कर रहे हो मालिक। खैर, आपके लिए कुछ गाने और लाइंड अप हैं जी। उससे पहले मेरे पास एक गिव अवे है। अब गिव अवे क्या है? वो है जी विशाल और शेखर की टिकट। एक टिकट आप जीत सकते हैं भैया, एंड दैट विल बी एब्सोल्युटली फ्री। द शो इज दिस संडे, व्हिच इज द 12th जुलाई एट द कर्टिस कलवेल सेंटर इन गार्लैंड, एंड यू कैन विन वन टिकट टू दैट शो। अब सवाल क्या है? सवाल ये है कि आपने देखा होगा कि खाना पीना, उठना बैठना, जागना सोना, फिर आती रोजी रोटी। अब इन सब में से रोजी रोटी जो है, उसमें रोजी पहले क्यों आती है, आपने मुझे बताना है, ठीक है? यू हैव टू टेल मी व्हाई रोजी रोटी में रोटी रोजी क्यों नहीं होता, ये रोजी रोटी का क्या चक्कर है, आपने मुझे कॉल करके बताना है। जो मुझे देगा सही सा बढ़िया सा आंसर, मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग रखनी है, ठीक है ना? वो डब्बे के अंदर नहीं बैठना, बाहर निकलेंगे अपन, जैसे अपन यहाँ फॉरेन कंट्री में आया ना बड़ो, बस उसी तरह अपन को सोचना भी बाहर का है। हा? तो रोजी रोटी में रोजी पहले क्यों आती है, जो देगा क्रिएटिव जवाब बढ़िया वाला, उसको मिलेगी एक टिकट। किसकी? विशाल एंड शेखर की जनाब। फॉर नाउ इट इज मस्कारा। स्टूडियो का नंबर है, नहीं है तो ले लो 9722355555। पर मस्कारा ना बड़ा प्यारा सा गाना है, इसलिए हम इसको नहीं काटेंगे, हम काटेंगे इसको। सवाल सुन लिए हैं क्या ध्यान से? फिर से बता दें कि ये जो रोजी रोटी है, उठना बैठना है, खाना पीना है, इसमें सारे जो लास्ट वाले वर्ड है ना, वो थोड़े से डिफरेंट होते हैं। मतलब जैसे खाना पीना, पीना को बुरा माना जाता है, खाने को अच्छा, एंड उठना बैठना, सोना जागना, रोजी रोटी। व्हाई इज रोजी फर्स्ट बिफोर रोटी, टेल मी।

0: पनवाड़ी के पीछे वाली, आपके यहाँ तो पनवाड़ी नहीं है, आपको क्या करना आगे पीछे हो ना, यहाँ पे कौन है हमारे साथ, करते हैं इनसे बात। गुड वाला इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, कौन बोल रहा भाई?
1: जी, मैं पीयूष बात कर रहा हूँ। हाँ,
0: पीयूष बात कर रहे हो? तो पीयूष ही हो,
1: मैं
0: तो जब हो ही पीयूष तो पीयूष ही बात करेगा, पीयूष की तरह शर्मा थोड़ी बात करेगा कोई, यार कमाल करते हो पीयूष जी। अच्छा खैर, आप ये बताइए कि वाई इज रोजी फर्स्ट बिफोर रोटी इन रोजी रोटी?
1: बिल्कुल सिंपल है, जब तुम रोजी कमाओगे तभी रोटी आएगी, इसीलिए पहले रोजी बाद में रोटी।
0: पीयूष भैया कहते हैं रोजी कमाओगे तो रोटी खाओगे। ओके,
1: हाँ,
0: आपका जवाब हमने लॉक कर लिया है जनाब, देखते हैं कौन बढ़ेगा आगे। गुड इवनिंग फनीसिया, कौन बात कर रहा है?
2: मैं रितु बात कर रही हूँ।
0: रितु जी, रितु के रितु,
2: रितु, RITU, रितु।
0: RITU, रितु, क्या बात है रितु जी, आपकी आवाज में ही रुत आ गई रे रुत। अच्छा बताइए, ये जो रोजी रोटी है, इसमें रोजी पहले क्यों है, रोटी बाद में क्यों है?
2: रोजी तो मेरे हिसाब से पहले है, क्योंकि वो इट साउंड्स मोर लाइक अ लेडीज नेम, यू नो, सो लेडीज कम फर्स्ट।
0: तो रोटी कौन सा मेल लग रही है, रोटी नाम का आपने
2: मुझे
0: बंदा
2: नहीं
0: सुना?
2: पता, लेकिन मुझे रोजी पहले पता था, रोजी ज्यादा पसंद है।
0: नहीं, देखो रितु जी,
2: नहीं,
0: अब आप टिकट के चक्कर में ना थोड़ा घूम रही हो ऐसे करके इधर से उधर, पर बात यह है कि रोटी भी तो फीमेल है, कभी आपने पराठा, मैं कहता हूँ मेल हो सकता है ठीक है, पर रोटी तो रोटी है ना, कितनी प्यारी
2: रोटी तो
0: सी,
2: रोटी है।
0: भोली
2: हाँ,
0: सी, भोली
2: या
0: सी, फूली हो जाती,
2: लेकिन
0: फूल।
2: रोजी जो है वो हंसती हुई है ना, रोटी तो
0: और
2: रोती हुई है।
0: नहीं, पर आपको पता है रोटी को, रोटी फीमेल क्यों है, चलो बताओ, मैं एक जवाब दूंगा आपको
2: नहीं,
0: बढ़िया
2: वो
0: से।
2: नहीं पता मुझे,
0: अच्छा,
2: नहीं पता।
0: रोटी इसलिए लड़की है क्योंकि वो फूल जाती है टाइम के साथ। चलो आगे चलते हैं, कौन है मेरे साथ, देखते हैं जी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट कॉलर। गुड इवनिंग फनीश, हाउ इज दिस?
3: सलमा,
0: कौन?
3: रोजी
0: सॉरी
3: तो
0: सॉरी
3: रोटी
0: सॉरी सॉरी
3: बनाती है
0: सॉरी
3: ना।
0: सॉरी सॉरी, रुको, थोड़ा बैक, लेट्स गो टू स्टेप्स बैक। व्हाट्स योर नेम?
3: सलमा
0: सलमा, SALMA,
3: जी, SALMA,
0: वेरी नाइस सलमा, बहुत मरकल, रेडियो पे फर्स्ट टाइम मैं किसी सलमा लेडीज से बात कर रहा हूँ। सलमा जी कैसी हैं आप?
3: अच्छा, अल्लाह का शुक्र, कैसे हो आप?
0: ऊपर वाला मेहरबान, बस बचपन में दो चोटें लग गई थी सिर में, वो रहती हैं, बाकी ठीक है।
3: तो बस, तो फिर गदा पहलवान।
0: हाँ चलो, जैसे आपकी इच्छा। अब ये बताइए कि रितु जी, ये नहीं, सलमा जी, ये रोजी पहले क्यों, रोटी बाद में?
3: क्योंकि रोजी तो रोटी बनाती है ना, रोजा तो सिर्फ हड़पने में उस्ताद है।
0: रोजी कहाँ रोटी बनाती है, मेरी तो बीवी बनाती है, वो भी
3: और
0: बकालियां दे दे के बनाती है कई बारी। खैर आपकी बात मैंने नोट कर ली है सलमा जी, एंजॉय योर इवनिंग, देखते हैं अगला कौन है मेरे साथ, लेट्स गो हियर। गुड इवनिंग फाइनेंशियल रेडियो, रेडियो का वॉल्यूम कम, अपना वॉल्यूम बढ़ा लो, कौन बोल रहा
4: हेलो,
0: है?
4: आई एम टीना।
0: हाय टीना, हाउ आर यू?
4: आई एम गुड, हाउ इज बंदा बिंदास डूइंग?
0: ऑलवेज बिंदास मैन, यू नो इट।
4: यस,
0: टेल मी,
4: आई
0: टेल,
4: नो इट।
0: थैंक यू टीना, टेल मी टीना, व्हाई इज रोजी बिफोर द रोटी?
4: अरे भाई, रोजी होगी तभी तो कोई रोटी बना के खिलाएगा।
0: रोजी होगी तो ही तो कोई रोटी बना के खिलाएगा। चलो आपका भी जवाब नोट कर लिया है मैंने सलमा जी, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉल। लेट्स सी लास्ट कॉलर, गुड इवनिंग, 20 सेकंड है, फटाफट अपना नाम बताओ।
5: सोनू पराशर,
0: कौन प्राशर?
5: सोनू पारा सर।
0: सोनू भैया, सोनू भैया, सिंपल सा सवाल है, रोटी के पहले रोजी क्यों?
5: मारवन भाई, जब तक रोजी नहीं आएगी तब तो रोटी कौन बनाएगा?
0: नहीं, बड़े भाई, एक्चुअली रोजी पहले इसलिए क्योंकि रोजी कभी कभी आती है। मिलता हूँ ब्रेक के बाद।
6: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन, ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG FinTax, ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर क्वाजा, इन एसोसिएशन विद पैशन हेल्थ प्राइमरी केयर।
7: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
8: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
9: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
10: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
11: Desi flavors bhi aur Texas ke favorites bhi. Ab sab kuch milega ek hi jagah. HEB mein. Sona Masoori Rice, Nanak Paneer, Pale Ji Biscuits aur bahut kuch. Wahi authentic swaad jiske saath aap bade hue hain. Aur saath hi HEB ke exclusive Texan favorites jo aapko yahan pasand hai ab ek hi shopping trip mein zyada kaam niptaiye aur is summer zarur dekhiye HEB ke naye DFW stores mid cities Irving aur Murphy mein khul rahe hain to aaj hi apne nazdeeki HEB par jaye aur khareediye apne traditionals aur Texan favorites HEB here everything is better.
12: समझ नहीं आ रही टिकट लूँ तो कहाँ से लूँ?
13: It's Lawson.
12: किससे बात करूँ? सारी जानकारी कौन देगा?
13: It's Lawson.
12: Daddy, what is the law?
14: It's Lawson Travels for all your travel needs. Give them a call today. 214-631-2458. The travel experts. Lawson Travel.
15: सुनो कल बहुत काम है. पहले ग्रोसरी, फिर पूजा का सामान, गिफ्ट्स भी खरीदने और इन सब कुछ के बाद मैं कुकिंग नहीं करने वाली. कहीं अच्छा सा डिनर करके आएंगे.
16: और ये सब कुछ अगर एक ही जगह हो जाए तो?
15: कहाँ? फूडिस्तान इन ऑबरी. फ्रेश ग्रोसरी, हलाल meat, puja essentials, live pani puri, fresh ganne ka juice, bakery items, plus lowest price match guarantee. And inside Foodistan, enjoy the premium Indian cuisine at D-Vibe, an upscale restaurant for the perfect family dinner.
16: Foodistan in Aubrey. Everything desi. One place, one vibe.
17: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail
16: issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Matro Law Offices PC. Right advice, right defense.
18: Paid spokesperson. Principal Office, Dallas, Texas.
19: Planning a graduation party? Birthday celebration, family gathering or private event? Make your special moments even more memorable at Fun Pizza Kitchen Colony. Rent private party space for 3 hours at just $200 with customized menu options to suit your preferences. Celebrate with family and friends, create lasting memories and enjoy your special day with us. To book your event, call 989-621-7293 today. Fun Pizza Kitchen at Colony. Happy moments, happier memories.
16: Food not included at the mentioned price. Terms and conditions apply.
20: जीत उनकी होती है जिनकी नजर सिर्फ टारगेट पर होती है, चाहे ओलंपिक स्टाइल आर्चरी हो या 10 मीटर्स इंडोर प्रिसिजन शूटिंग. फोकस, डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी. फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी, वन एंड ओनली इन नॉर्थ डैलस. फ्रॉम बिगिनर टू कंपेटिटिव एथलीट्स, स्ट्रक्चर्ड कोचिंग, एक्सपर्ट गाइडेंस एंड परफॉर्मेंस ड्रिवन ट्रेनिंग एजेस 8 एंड अबव.
21: फ्रिस्को प्रिसिजन स्पोर्ट्स एकेडमी पावर्ड बाय अर्जुन आर्चरी एकेडमी, कन्वीनिएंटली लोकेटेड ऑन क्वाइट रोड इन फ्रिस्को. विजिट friscoprecisionsports.com और कॉल 469-333-10 99.
22: Mention Fun Asia and get 50% off on tryout session.
23: अगर आपकी नाइट भी तंदूरी डिलाइट्स के बिना अधूरी लगती है तो ये खबर आपके लिए. दिस समर एंजॉय 20% ऑफ ऑन ऑल एपेटाइजर्स, तंदूरी आइटम्स एंड मॉकटेल्स ओनली एट तंदूरी फ्लेम. चिकन तंदूरी, मलाई चिकन टिक्का, पनीर टिक्का, मोमो या सोया चाप, अब हर बाइट के साथ मिलेगी एक्स्ट्रा सेविंग्स. डाइन इन ओनली एट तंदूरी फ्लेम गार्डन, वेयर एवरी बाइट इज अ सेलिब्रेशन.
24: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.

0: यूएस में जो सिंगर है उसे रिहाना बोलो, बिंदास बोलो, बिंदास, बिंदास बोलो,
1: एब्सोल्युटली बिंदास बोलो यार। मतलब ऐसा शो करने वाले को और अब क्या बोलोगे, बिंदास ही बोलोगे ना। कमाल का लड़का है मुझे पता है, पर मेरे पापा का नाम माइकल है, जस्ट सो यू नो। ऐसे ना सोचना मैं कमाल का लड़का हूँ, नो आई मीन आई हैव कमाल इन मी, बट मैं लड़का माइकल का हूँ। ओके,
0: गोल को राउंड बोलो, मिलना को फाउंड बोलो, सुर को साउंड बोलो, सीमित को बाउंड बोलो, बाहर की करेंसी को डॉलर।
1: जीवन में अगर शांति चाहते हो तो हर मुद्दे पर भड़कने से अच्छा है, क्या अच्छा है देखो ओशो की तरह बताता हूँ। जीवन में अगर सुख और शांति चाहते हो, क्या चाहते हो, सुख और शांति चाहते हो जीवन में, तो क्या करना पड़ेगा। जीवन में अगर सुख और शांति चाहते हो तो मुद्दे पर भड़कने से अच्छा है, क्या अच्छा है बता रहा हूं, मुद्दे पर भड़कने से अच्छा है सामने वाले को बोलने दो, बोलने दो, जो बकवास करता है करने दो, फिर मन में बोलो पागल साल।
0: अंदर भरा है मनी को दाम बोलो, नेम को नाम बोलो, इवनिंग को शाम।
1: वेलकम बैक टू योर फन इज योर रेडियो इवनिंग ड्राइव टाइम शो, जिसका नाम है द वन एंड ओनली द बिंदास शो, ब्रॉट टू यू बाय वेरी ओन बंदा बिंदास, मारिंदास। कैसे हैं सब, सब ठीक है, अच्छा है, नहीं है तो कर देते हैं। कौन है हमारे साथ, अरे भाई इतना शोर, इतना शोर, कौन सी फैक्ट्री में काम कर रहे हो भाई। हेलो हेलो हेलो हेलो, कौन सी ये क्या कमाल का शोर भाई, दोबारा कॉल करना पड़ेगा आपको। ऐसा लग रहा था कि जैसे कुछ इस फैक्ट्री में बंदा कोई काम कर रहा है। खैर, मैंने ब्रेक पे जाने से पहले आपसे पूछा था, आप सब लोगों से पूछा था, मैंने क्या पूछा था, पूछा था सवाल, सवाल ये था, क्या था सवाल, सवाल ये था कि रोजी और रोटी में रोजी पहले क्यों आती है। बात दरअसल ये है कि मुझे भी नहीं पता, जिसने बोला हमने फॉलो कर लिया, बात इतनी सी होती है। अब आ गए हैं ये फैक्ट्री वर्कर वापस, ये फिर से चले गए, इनका फैक्ट्री का काम ठीक नहीं। खैर, तो लोगों ने बहुत सारे आंसर दिए, किसी ने बोला ये, किसी ने बोला वो, ये भाई साहब बड़े पत्ते हैं रेडियो का वॉल्यूम, रेडियो, अरे पीछे का शोर तुम्हारा, पीछे का शोर ही नहीं हट रहा यार, लड़का कौन है भाई, रेडियो रेडियो का वॉल्यूम कम, हेलो हेलो हेलो, इधर इधर अक्षय, रेडियो का वॉल्यूम तो कम कर मेरे आशुतोष, मेरे कान का पर्दा फाड़ देगा यार।
2: रेडियो का नहीं तो बच्चों का।
1: बोलो क्या चाहते हो आशुतोष।
2: कुछ नहीं, हमने कहा आपके सवाल का जवाब ट्राई करते।
1: सवाल तो दुनिया में बहुत सारे उठते हैं,
2: बहुत सारे।
1: तुम कौन से सवाल की बात कर रहे हो?
2: वही अपनी रोजी रोटी को लेकर,
1: रोजी रोटी को लेकर, रोजी और रोटी को साथ लेकर जा रहे हो, यही तो तुम्हारा पाप है। खैर
2: क्या करें?
1: बताओ बताओ क्या कहना चाहते हो।
2: अब रोजी के पैर होते तो जल्दी से आती, रोटी के होते नहीं, इसलिए नहीं आ पाती पहले।
1: पाजी देखो बात ऐसी है कि किसी ने मुझे बताया था कि रोटी खाने से ना बंदा सुस्त हो जाता है, इसलिए रोटी पहले नहीं खानी, पहले काम करो फिर रोटी खाओ। पर मैंने उनको बताया कि नहीं, अब आप मार्विन के यूनिवर्स में आओ, देखो हमारी तरफ आओ, बैठो, अब मैं बता रहा हूँ, रोजी पहले इसलिए आती है क्योंकि रोजी कभी कभी आती है, बहुत अच्छा लगता है। रेडियो यार आपके फिर पीछे खिड़कियों, क्या कहाँ, कौन सी फैक्ट्री में भाई? अच्छा रेनिंग है, मैंने कहा पता नहीं कौन सी फैक्ट्री से बंदा कॉल कर रहा है, इतनी लेबर का काम करता हुआ बेचारा मस्कीन होगा। कौन बोल रही है? कौन सी दीता? निवेदिता। कैसी हो निवेदिता? ये ओशो वाला स्टाइल कैसा लगा पहले ये बताओ।
3: ओशो वाला स्टाइल, तुम्हारा तो स्टाइल बहुत ही अच्छा है, स्टाइल बदलते रहते हैं।
1: कभी कभी ऊपर से आमद हो जाती है। आप बताओ क्या कहना।
3: How are you?
1: मैं अच्छा हूँ, जो मन से लगन okay. लगा लेता है उस ऊपर वाले से वो अच्छा ही होता है। आप बताओ।
3: सही है। अच्छा मुझे जो लगता है
1: आपको ये जो क्या? रोजी रोटी नहीं, नहीं एक मिनट, आपको क्या? क्या आपको क्या लगता है, कुछ जोर से मार रहा है कुछ, लगता है
3: नहीं, नहीं,
1: अच्छा अच्छा अच्छा वो वाला लगता है। अच्छा मैम जस्ट चेकिंग, अच्छा अच्छा जस्ट चेकिंग, अच्छा निवेदिता तो आपको बिना लगे हुए क्या लगता है?
3: अच्छा जो है कि रोजी रोटी जो है ये जो जो जी आता है ना रात को बहुत थक के काम करके तो वो रोते हुए आते हैं, तो उसको रोटी बहुत प्यारा सा मीठा सा रोटी खिला के उसको खुश कर देते हैं, तो इसीलिए रोजी रोटी है।
1: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे लगता है क्योंकि रोजी एक ही बार मुझे लाइफ में मिली थी उसके बाद चली गई, इसलिए रोजी की इम्पोर्टेंस ज्यादा हो गई।
3: वाले रोजी इतनी है।
1: चलो कोई बात नहीं, देखो आपको लगता है, हमें भी लगता है, दिल को लगा है हमारे। खैर मैं गाना सुनाता हूँ आपको बढ़िया, इससे पहले कि लोग मारें जूतियाँ। गुड इवनिंग फनेशिया, एक ही कॉलर लूंगा क्योंकि इसके बाद गाना भी तो लगाना है। कौन बोल रहा है?
4: हेलो मार्विन, हाउ आर यू? आदाब सर,
1: धीरे से बात करो, कैसे हो?
4: मैं बस ठीक हूँ, दुआएं आपकी।
1: बड़ा मजा आया मुझे। चार फटाफट बताओ सर आपका नाम और रोजी रोटी क्यों?
4: मेरा नाम कलीम है सर। रोजी मतलब रोज, और डेली रोजी रोटी मतलब रोटी, तो अच्छा, इसलिए उसको कहते हैं रोज की रोटी, यानी रोजी मतलब रोज डेली ब्रेड है।
1: क्या बात है, क्या बात है सरकार। बात पता क्या है
4: जी,
1: रोजी पहले क्यों आती है मैं बताऊं? पब्लिक सुन लो, रोजी पहले आप भी सुन रहे हो, पब्लिक भी सुनती है, पब्लिक सुनो और साथ में आप सुनो। रोजी पहले इसलिए आती है क्योंकि आपकी बीवी ने आपको कई बार बोला है रोजी रोटी, रोजी रोटी, कभी चावल भी खा लिया अगर।

Beautiful track. I love this song, यार. मतलब जितनी बार भी सुनता हूँ उतनी बार इतना fresh लगता है. ये कमाल है. शान, आपकी शान हमेशा बरकरार रहे. For now, it is to give you the answer. कौन जीता ये contest? कौन जीतेगा? खैर, जिंदगी में हार जीत जो है वो चलती रहती है. पर हमने पूछा था सवाल ये पूछा था मैंने. कहाँ जा रहे हो? चलो आज वापस आ जाओ. ओशो भैया बाद में बात करेंगे. ओके. अच्छा, सवाल मैंने पूछा था कि रोजी रोटी, ये रोजी पहले क्यों आती है. तो एक लेडी ने मुझे बड़ा ज़बरदस्त जवाब दिया. उसका नाम है सोनल. सोनल, अगर आप कॉल मतलब आप मेरे को सुन रही हैं तो आप मुझे कॉल करेंगी ताकि मैं आपकी इन्फॉर्मेशन लेके आपको दे दूँ विशाल और शेखर की एक टिकट जो 12 जुलाई को शो है कर्टिस कलवेल सेंटर में है. सोनल जी ने कहा कि भैया बात ऐसी है कि रोटी खाओगे पहले तो फिर रोजी पे कहाँ जाओगे, थक जाओगे, थक जाता है इंसान. तो इसलिए उनका आंसर मुझे बहुत अच्छा लगा. बट मैं आपको ये बता रहा था कि रोजी रोटी में जो रोजी पहले आती है इसलिए क्योंकि आपकी बीवी ने आपको कई बार बोला रोजी रोटी खाता है, रोजी रोटी खाता है, कभी चावल भी खा लिया कर. तो मुबारक हो सोनल, गिव मी अ कॉल, आई विल टेक योर इन्फॉर्मेशन ऑफ द ईयर. दिस पार्ट ऑफ द शो इज ब्रॉट यू बाय एजी फिनटैक्स. अगर अभी तक आपने टैक्सेस नहीं करवाए हैं, आपने एक्सटेंशन ले रखी है मेरी तरह, तो फटाफट एजी फिनटैक्स के पास जाइए भैया. दे विल मेक श्योर दैट योर टैक्स लाइबिलिटीज आर लिमिटेड एंड योर बेनिफिट्स आर मैक्सिमाइज्ड. फॉर दैट agfintax.com. For now, it's ayayara lai maskara.

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Don ko pakadna mushkil hi nahi, namumkin.
4: Lekin aapke doctor ka appointment milna, usse bhi mushkil hai. Ek hafta, 10 din, agle Tuesday.
5: Tarikh par tarikh.
2: Passion Health Primary Care gives you doc appointments on the same day visit. Aaj bukhar, aaj doctor. Aaj infection, aaj doctor. Aaj annual checkup, aaj doctor. Plus 30 minutes of dedicated appointment time. Passion Health Primary Care in Irving, Plano, Frisco, McKinney, Aubrey.
4: Visit passionhealthphysicians.com or call 214-666-6259.
6: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
7: It's true. हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, बट समटाइम्स इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस। विद ओवर 400 इयर्स ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू हिज एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड पाम रीडिंग, पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ, फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल। कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी, 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com।
8: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
2: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
9: हेलो, एक्सीडेंट क्लेम? ओके, नेम ऑफ द लॉयर? उमर ख्वाजा।
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम, तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में, क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल। कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com।
10: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
11: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
12: हाँ।
11: घर रिलोकेट करनी है?
12: हाँ।
11: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
12: हाँ भाई हाँ।
11: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
13: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट sflworldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
14: अजी सुनते हो, सोच रही थी बेटे की शादी इंडिया में करे।
15: इंडिया में तो यहाँ जो फ्रेंड्स और रिलेटिव्स हैं वो कैसे अटेंड करेंगे?
14: पर यहाँ सारे अरेंजमेंट्स मैनेज करना भी तो कितना मुश्किल होगा।
15: हेलो, तुम डैलस में हो, यहाँ कोई भी इवेंट करना सुपर इजी है, स्पेशली जब वैनेसा इवेंट्स का साथ हो।
14: सच में सब संभाल लेंगे?
15: अरे सब कुछ, वेडिंग हो, हाउस वार्मिंग, ग्रेजुएशन, यू नेम इट दे डिलीवर। वेन्यू, फोटोग्राफी, हॉस्पिटैलिटी, सब कुछ एक ही जगह। सिग्नेचर इवेंट्स का डेकोर और खाना बाय द रेनॉल्ड बसेरा ग्रैंड ओनली।
2: कॉल हरी बसेरा ऑन 469-442-8770. Vanessa Events, your celebration partner.

तुम तो चांद हो मेरे बगैर भी चमकोगे, तुम तो चांद हो मेरे बगैर भी चमकोगे, मैं वो आसमान हूं जो तेरे बगैर बिल्कुल तन्हा है। हर बड़ी मजाक थोड़ी होता है, कोई बंदे लाइफ में कोई सीरियस काम भी कर लो। बंदा ये बिंदास है जी, नाम मारविन दास है, क्या हाल चाल है जी। 6:25 हो चुके हैं स्टूडियो की घड़ी में, बड़े दिनों से 25 नहीं बोला था यार, मतलब अंदर से खुजली हो रही थी, निकाल ली भड़ास। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक। शाम का वक्त हो चुका है, आपको जो शाम को करना है वो मैं नहीं पूछूंगा, मर्जी आपकी यार, इट्स योर लाइफ। बट आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं केविन हार्ट का बर्थडे। जी हाँ, द कमेडियन एक्टर नोन फॉर हिज स्टैंड अप स्पेशल्स, आई एम अ ग्रोन लिटिल मैन, सीरियसली फनी एंड लाफ एट माय पेन, रियल हस्बैंड्स ऑफ हॉलीवुड के शो में आ चुके हैं एंड प्रीमियर्ड ऑन BET एंड स्टार्ड इन द फिल्म्स लाइक राइड अलोंग टू एन आइस क्यूब। दिस इज हिज बर्थडे टुडे, 6th of July, फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया। ही वाज बोर्न टुडे, मार्क्स हिज 47th बर्थडे। अ वेरी हैप्पी बर्थडे टू दिस लिटिल गाय Kevin Hart. Here we go with the next track lined up just for you. This is another lovely, lovely number. Suniye aur aaya main wapas.

0: Wonderful, wonderful track, that one, which was Bahome Chale Aao. Beautiful, beautiful number. And I think this is from the album that was called Dance Masti. This was way back, I think, early 2000s, maybe late 90s, 97, 98, I think was the time when this album came out. And then it was Dance Masti 2 also that came out. Usse pehle maine gaana lagaya tha, which was Dil Kya Kare Jab Kisi Se. And that was also from the same album, which was Dance Masti Forever. This is your Evening Drive Time Show, the one and only Fanesia Radio. And this is the Bindas Show with your very own Banda Bindas, Mark Bindas. Today also marks the birthday of Frida Kahlo. Kahlo bolenge, Frida Kahlo. You've seen her pictures, you've seen her images. Mexican painter associated with surrealism and magic realism, and best known for her 55 self-portraits. She was inspired by the indigenous Mexican culture and Mexican mythology. Today was the day when she was born, 6th of July 1907. She passed away in 1954 at the age of 47, born in Coyoacán, Mexico. For now, it is going to be a short commercial break. You guys don't go anywhere, because I'm coming back, and I'm coming back with a giveaway. $20 off your $50 bill at Majestic Hookah Lounge. How to get that? Stay tuned and I'll tell you.
1: The Texas Super Kings are here and the action is absolutely heating up. Don't miss a single thrilling moment. Secure your seats now to watch the Texas Super Kings live at Grand Prairie Stadium.
2: We have got electrifying matches on July 11th Saturday and July 12th Sunday,
1: all starting from 4:30 p.m. onwards. Experience the intensity and the unforgettable atmosphere of live Super Kings cricket. Tickets are selling fast. Visit tickets.majorleaguecricket.com and get your tickets today.
3: Aaja meri gaadi mein baith ja.
4: Baith jaun? Pakka? Kal hi to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
5: Wo थोड़ा ओवरहीटिंग था।
4: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
6: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
7: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो।
3: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
8: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
9: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
8: कैसे?
9: पेज 3 ईटरी?
8: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
9: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
8: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
10: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
11: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
12: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
11: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
12: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
1: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को, प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट और हर बच्चे के लिए कम्पेटिटिव एज। ट्राई लुमिटी, यू सी द डिफरेंस। किड्स एजेस 5 to 13, कॉइट एंड पैंथर क्रीक इन फ्रिस्को। कॉल 972-666-1181। मेंशन फन एशिया, गेट $100 ऑफ योर फर्स्ट मंथ।
13: यार, बॉस ने फिर से डांट दिया। ट्रैफिक अलग और ऊपर से ये स्ट्रेस।
14: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
13: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
14: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
13: ये क्या होता?
14: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
15: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस। फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नू'स किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
1: एंड नाउ एट अ बिगर लोकेशन जस्ट 3 डोर्स डाउन विद लिमिटेड रिजर्वेशन।
16: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
17: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
1: विजिट psychicramnath.com। कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
18: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन रिसर्च में वेरी।
19: फिल्मों का मजा एक्शन, ड्रामा और रोमांस में है, और खाने का मजा हर फ्लेवर के जबरदस्त परफॉर्मेंस में।
5: कभी चटपटा सा ट्विस्ट, कभी तीखा सा किक, कभी मीठा सा सुकून।
19: जहां हर फ्लेवर करे फुल ऑन एंटरटेन, द फ्लेवर लाउंज।
5: पापड़ी चाट से मालपुआ रबड़ी तक, हर डिश में मिले जिंदगी के फ्लेवर्स का असली स्वाद। विजिट देयर न्यू वेबसाइट और डाउनलोड द फ्लेवर लाउंज ऐप फॉर एक्सक्लूसिव डील्स। द फ्लेवर
20: लाउंज, हर बाई सुपर हिट।
21: मामू देखो क्या हो गया।
22: ओ क्या हो गया?
21: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
22: ओए जर्मन का कमाल है।
21: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
22: ओ नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा यार।
23: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
24: ये तेरा घर, ये मेरा घर।
25: बाइंग और सेलिंग अ होम इजंट जस्ट अ ट्रांजैक्शन, इट्स वन ऑफ लाइफ्स बिगेस्ट डिसीजंस एंड इट डिजर्व्स द राइट गाइडेंस। आई एम नवनीता, योर ट्रस्टेड रियल्टर विद केलर विलियम्स रियल्टी। I believe every home journey should feel exciting, stress-free and truly special. Whether you're buying your first home, upgrading, relocating or preparing to sell, I'm with you every step of the way. Kyunki har ghar ki ek kahani hoti hai. Let's create yours.
26: Call Navneeta Khemka today at 347-449-4242.
27: Hi, this is Kunal Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.
28: लेग पीस नहीं है?
29: चीपड़ा।
30: आइए सब लोग सेंटर में आ जाइए। चलो चलो चलो चलो। So let's the संगीत begin। इस म्यूजिकल नाइट में खाली सॉन्ग नहीं होंगे, डांसिंग भी होगी और होगा कंपटीशन। अब ब्राइड की टीम जीतेगी या दूल्हे की, ये तो तभी पता चलेगा जब दुल्हन और दूल्हे के रिश्तेदार यहाँ पे आके डांस करेंगे। अंकित जी आइए ना, आपके शक्ल देख के लगता है बहुत जबरदस्त डांस करते होंगे।

0: This part of the show is brought to you by PMJ Jewels. They are now open in Frisco. If you are in Dallas and if you haven't been to that store, I recommend that you go check it out because they are bringing 60 years of jewelry excellence and timeless craftsmanship when it comes to Indian jewelry. Aap wahan jayenge to bahut sare aapko mazedar matlab aankhon ko bhane wale gold, diamond and bridal collections will be available for you to see and of course decide if you want to customize your jewelry. If you want to customize your jewelry, they do that as well. Proudly associated with Mahesh Babu and Sitara Gattamaneni, PMJ is a name trusted by generations. Visit PMJ Jewels Frisco on Main Street and discover jewelry that tells your story. Yaar ek request hai mujhe South Indian bhai bhaino se, yaar naam itne mushkil mushkil kyun rakhte ho aap? Jaise Gattamam, matlab bolte hue Gattamaneni. Idhar dekho Sharma, Vipul Chaudhary, khatam, hai na? Bansal, jaar se yaar. Aap log matlab कमाल है कई कई जगह तो मतलब ऐसा है कि जुबान आपकी मतलब क्या बताऊं कितने ट्विस्ट लेके वो नाम लेना पड़ता है तो यार थोड़ी सी रिक्वेस्ट कि आगे जाने वाली जनरेशन में नाम सिंपल कर दीजिए अच्छा रहेगा खैर आपने ये गाना जो अभी सुना दिस वाज फ्रॉम द मूवी कॉल्ड बैंड बाजा बरात अब मैं लगाने लगा अगला गाना और अगला गाना जो है उसका बैंड बाजा बरात से कोई रिलेशन है अगर आप मुझे बताएंगे कि इन दोनों में क्या रिलेशन है तो आप जीतेंगे मेरी तरफ से $20 ऑफ फ्रॉम $50 बिल At Majestic Hookah Lounge, which is right here on McKinney Parkway. Okay, McKinney is located. And they are giving you $20 off your $50 order. Kuch bhi le, chahe hookah le, chahe khana khaye. They are available for you Monday to Thursday, 11 a.m. to 6 p.m. And that is just the happy hour. They are open for longer hours. But subah 11 baje se 6 baje tak, Monday to Thursday, they have a happy hour. And us happy hour mein, aapko jo hookah hai, uske outside will be $24.99. Shots are only $4.99. Make sure to join their ladies' night and college night, which they host. McKinney Ranch Parkway mein ye naya hookah lounge slash restaurant is open for you. You've got to answer one question. Question is, ki jo maine pehle gana lagaya, pangda ta sajda ye wala, kaun sa wala? Ye wala, dobara sun lo.
1: Please, nahi hai.
2: Cheap.
3: और दूल्हे के रिश्तेदार यहाँ पे आके डांस करेंगे
0: ठीक है जी ये वाला गाना आपने सुन लिया अब मैं लगा रहा हूँ अगला गाना आपने मुझे बताना दोनों गानों में क्या कॉमन है और उसी कॉमनता के साथ आज एक जन्मदिन है जिसके बारे में हम करेंगे बात क्योंकि आप मुझे बताएंगे सुनिए वन लकी विनर गेट्स $20 ऑफ दिस इज वंस अगेन इन McKinney तो अगर सवाल का जवाब दे रहे हैं तो McKinney जाने के लिए तैयार हो जाइए Here we go.

0: क्या है और जो मुझे कॉलर नंबर 3 न देगा सही जवाब. 3 क्यों ये मत पूछा करो यार, वो इतने सवाल करती है, आप भी सवाल करोगे. गुड इवनिंग फनेजिया, हुज दिस कॉलर नंबर 1, अपना नाम बताइए.
1: भावेश।
0: भावेश भाई कैसे हैं?
1: बस मस्त है सर, आप कैसे हो?
0: ऊपर वाला मेहरबान है सर, बस बंद होने वाली दुकान है फिलहाल. आप बताइए कि दोनों गानों में क्या कॉमन है, क्या कॉमन है?
1: रणवीर सिंह, उनका बर्थडे आज है।
0: कौन किसका बर्थडे है?
1: रणवीर सिंह का।
0: और आपका नाम भावेश है,
1: यस।
0: क्या बात है, बाद में आता हूँ आपके पास दोबारा, बहुत शुक्रिया. मैंने पूछा आप लोगों से कि दोनों में क्या सिमिलैरिटी है. भाई कॉलें कहाँ गई मेरी, कहाँ रह गए लोग? गाड़ी चला रहे हो, आराम से चलाते जाओ, क्योंकि ज़्यादा अगर तेज चलाओगे तो पुलिस आ जाती है. अब आ गया है मेरे पास दूसरे नंबर का कॉलर. कौन है ये? गुड मॉर्निंग, नहीं गुड इवनिंग, फनेसिया कौन बोल रहा है?
1: गुड इवनिंग, माय नेम इज ऋषि।
0: ऋषि कैसे हैं? ऋषि, ऋषि तो हम ओसो ओसो से बात कर रहे हैं. ऋषि क्या बात है, ऋषि कैसे हैं? ऋषि
1: ऑल गुड, आप कैसे हैं?
0: बहुत बढ़िया है, मन लगन है मेरा ऊपर वाले के साथ, लीन हूँ. अच्छा ऋषि भैया, आपको दोनों गानों में सिमिलैरिटी पता है?
1: दोनों गानों में एक्टर रणवीर सिंह है।
0: दोनों गानों में रणवीर सिंह है. और आपको एक और बात पता, एक और,
1: बताइए।
0: दोनों गानों में म्यूजिक है मेरे भाई. ऋषि बहुत बहुत शुक्रिया. तीसरे नंबर पे कहाँ गया मेरा खिलाड़ी, जीतने वाला कहाँ है? कॉल करो, बताता हूँ क्या सिमिलैरिटी है. क्या आपके पास है सही जवाब? तो कॉल कीजिएगा मुझे, 972-235-5555 नंबर है स्टूडियो का यार.

0: लो जी, टू टू टू टू, कौन है तीसरा नक्की विनर हो सकता है ये? नमस्कार, कौन बोल रहे हैं?
1: नमस्कार, मैं उर्वशी बोल रही हूँ।
0: उर्वशी, कैसी है उर्वशी? उर्वशी उर्वशी, यार गाना आपने अच्छा याद कराया उर्वशी। और
1: सही
0: आप
1: में सर जी आपके बहुत बड़े फैन हैं,
0: सच्ची बताओ दिल से,
1: एकदम दिल से।
0: आज ओशो कैसा लगा तुम्हें बालिका?
1: बहुत अच्छा लगा,
0: बहुत बहुत
1: बहुत
0: अच्छा,
1: ज्यादा।
0: बहुत अच्छा।
1: यू आर वेरी एंगेजिंग एंड आपका
0: बस बस मेरी
1: सिमिलैरिटी बिटवीन द,
0: मेरी
1: बोलिए।
0: मेरी एंगेजमेंट और शादी हो गई है, ऑल्दो आई एम वेरी एंगेज।
1: क्या करे सर, बस वही तो मसला गए।
0: यही मसला है और कोई मसला नहीं। खैर बालिका, बताओ क्या सिमिलरिटी है दोनों गानों में?
1: रणवीर सिंह,
0: रणवीर सिंह, बिल्कुल सही जवाब। ले गई इनको वो कौन, दीपिका।
1: जी
0: कोई बात नहीं,
1: यस
0: बहुत बहुत
1: सर,
0: मुबारक हो, मिकिनी जा सकती हो।
1: हाँ जी बिल्कुल।
0: अरे वेरी गुड, फिर पार्टी शार्टी करेंगे, हुक्का शुक्का, खाना पीना, $20 ऑफ योर $50 बिल, ठीक है? और मुझे होल्ड द
1: बिल्कुल
0: लाइन
1: सर
0: फॉर मी,
1: जी,
0: होल्ड द ड्रिंक, जैसे वो कहते हैं ना, होल्ड होल्ड द लाइन फॉर मी, मैं आपका गाना लगा के आया वापस।

0: हर तारा। अरे अरे अरे, दर्ज के आसमान में इतने सारे तारा नहीं, बिजनेस ओनर्स के लिए तो सिर्फ एक ही तारा काफी है, तारा कमर्शियल एनर्जी। 2002 से टेक्सास के हजारों बिजनेसेस का ट्रस्टेड एनर्जी पार्टनर, होटल्स, गैस स्टेशंस, वेयरहाउसेस, मेडिकल फैसिलिटीज, रिटेल स्टोर्स और ऑफिस बिल्डिंग्स, कॉम्पिटेटिव प्राइसिंग, पर्सनलाइज्ड एनर्जी सॉल्यूशंस और एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। तारा कमर्शियल एनर्जी, पावरिंग टेक्सास बिजनेसेस फॉर ओवर 2 decades। कॉल 844-428-2808 और विजिट taraenergy.com टुडे। तारा कमर्शियल एनर्जी, जो आपके बिजनेस को रोशन रखे।
1: ब्रेकिंग न्यूज, होम लोन या रिफाइनेंस अब और